सुप्रभात दोस्तों, योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से योगनी सप्ताह स्वागत करती है। आज शिविर का दूसरा दिन, जिसमें हमने पहले दिन में जो बताया यानी कि प्रवाह के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, और आज शिविर का दूसरा दिन है संतुलन। संतुलन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये मान लें और ये जान लें कि संतुलन है क्या। संतुलन का हमारे वास्तविक जीवन में, वास्तविक सामंजस्य में, वास्तविक और सामाजिक पारिवारिक सभी के संतुलन को बनाए रखने का नाम ही संतुलन है। कहते हैं मनुष्य के जीवन में यदि संतुलन बिगड़ जाए तो वह एक पशु की भांति हो जाता है। मानसिक स्थिति बहुत सारी ऐसी होती है कुछ लोगों की कि उसे संतुलन बिगड़ जाने का नाम भी दिया जाता है। आपने देखा होगा जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है उन्हें यह कह कर के टाल दिया जाता है कि यह पागल की स्थिति में है, इसे वह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप से, अपने शरीर से संतुलन बनाना जरूरी होता है। योग शिविर में जो कि 30 दिवसीय चल रही है, इसमें पहला दिन जो हमने किया वो था प्रवाह, और प्रवाह का मतलब बहना। हम इस शिविर में बह तो चुके ही हैं, अब हमें संतुलित रहना है यानी कि हमें अपना संतुलन बना के रखना है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं आज का प्राणायाम जो कि संतुलन से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले आप अपनी मुद्रा में बैठे किसी साफ और स्वच्छ स्थान पर, कोई मैट या चद्दर पे। वातावरण को सुगंधित करने के लिए आप अगरबत्ती या धूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके चेहरे पर, आपके मुखमंडल पर एक प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि योग में यह कहा जाता है कि जो हम आंतरिक क्रियाओं को सोचते हैं वही हमारे चेहरे पर और हमारे शरीर पर असर करती है। तो सबसे पहले हम योग करेंगे और योग के माध्यम से सबसे पहले हम ध्यान योग में जाएंगे, क्योंकि ध्यान योग एक ऐसी मुद्रा है जो हमें आने वाले समय के लिए तैयार करती है। अभी आने वाला समय हमारा एक दूसरा प्राणायाम है, तो अगले प्राणायाम को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन, अपने इंद्रियों को वश में रखना है, उन्हें एकाग्रचित करना है, उन्हें स्थिर करना है, उन्हें संतुलित करना है। तो आइए हम एक मिनट का ध्यान करते हुए अपने प्राणायाम की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आप पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करते हुए बिना किसी विचार के, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, किसी भी विचार को अपने मन में न लाते हुए आंखों को बंद कर लें और मध्यम गति से श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार कुछ इस तरह।

अब हम ध्यान मुद्रा में धीरे धीरे जा रहे हैं, यानी कि हम अपने आने वाले अगले प्राणायाम के लिए खुद को

तैयार कर रहे हैं, अपने मन और चित्त की सारी वृत्तियों को एकाग्र करते हुए शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देना है। जैसे हमारे आसपास की वस्तुओं का, हमारे आसपास के जन जीवन का, हमारे आसपास के मनुष्यों का अपने ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम अपने त्रिनेत्र की ओर ध्यान लगाते हुए एकाग्रचित अपने ईश्वर को याद करते हुए एकाग्रचित होकर के बैठ जाएंगे। इसी तरह श्वास की गति को आते जाते महसूस करते हुए मौन की अवस्था में जाते हुए हम साथ साथ में इस ध्यान योग को पूर्ण करेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही होता है कि जब हम सब लोग मिलकर के एक साथ योग प्राणायाम करते हैं तो मन की चित्तियों को, मन की सारी वृत्तियों को प्रसन्न रखना है। इसी तरह ध्यान का समय पूर्ण होते ही हम अपने हाथों की हथेलियों में घर्षण करते हुए अपनी आंखों पे, अपने मुखमंडल पे लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और फिर हम तैयार हो चुके होंगे अपने प्राणायाम को करने के लिए। प्राणायाम पूर्ति पर एक बार ओम का उच्चारण कुछ इस तरह।

हाथों के हथेलों में घर्षण करते हुए आंखों पे और चेहरे पे लगाते हुए प्रसन्नचित होकर के अपनी आंखें खोलेंगे। तो आइए अब हम संतुलन के साथ में अपने प्राणायाम की ओर चलते हैं, क्योंकि यही वो अवस्था है जिसमें हम पूर्ण रूप से तैयार हैं अपने प्राणायाम को करने के लिए। किसी भी प्राणायाम को करने से पहले दोस्तों, हमें 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट ध्यान योग जरूर से कर लेना चाहिए, क्योंकि ध्यान योग

बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। संतुलन के कितने प्रकार होते हैं? औपचारिकता संतुलन और अनौपचारिकता संतुलन। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले संतुलन शब्द का अर्थ क्या है। संतुलन का अर्थ बहुत ही सरल है। संतुलन की स्थिति, वजन, मात्रा आदि का सामान वितरण संतुलन उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रति संतुलन। यानी कि अगर हम योग की स्थिति से जाने कि संतुलन का अर्थ क्या है, तो हम पांच शक्ति संतुलन क्या है सबसे पहले हम ये जानेंगे। शक्ति संतुलन वह अवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक में यह विश्वास बनाए रखने का एक सतत प्रयत्न है। यदि हम किसी पर अगर कोई आक्रमण का आरोप लगा देते हैं या हम यह कर देते हैं कि हमें ये चीज करनी है और यह चीज होनी ही चाहिए, तो हम समझ जाते हैं कि वह अपने आप में संतुलित नहीं है। संतुलन को दूसरी भाषा में अगर हम देखें तो संतुलन हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। संवेदी प्रणालियों में से एक है जो कि मस्तिष्क को आपके परिवेश के संबंध में संतुलन, गति और आपके सिर, शरीर के स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आपके आंतरिक कान में तीन लूप होते हैं जिन्हें अर्धवृत्ताकार नहरें कहा जाता है। संतुलन का अर्थ अगर हम जान जाएं कि संतुलन हमारे किसी भी प्राणायाम को एक साथ बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो संतुलन में सबसे पहला प्राणायाम आता है हमारा कपालभाति।

नमस्कार श्रोताओं, सुबह के आध्यात्मिक शो में आप सभी का स्वागत करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हम हर सुबह को एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जीने का तरीका सिखाते हैं, सीखते हैं और कुछ नए प्रयास से उन्हें ढूंढते हैं। और आज का विषय है मोरपंख। क्या कभी आपने गौर किया है उस मोरपंख के बारे में, जिसे हम किताबों में रखते हैं, मंदिरों में सजाते हैं या श्री कृष्ण के मुकुट में देखते हैं? वो सिर्फ एक सुंदर पंख नहीं, एक आध्यात्मिक संकेत है, एक संदेश है प्रकृति की ओर से अपने जीवन को हर रंग से सजाने के लिए।

मोर पंख, मयूर, पिकॉक, मोर, कितने खूबसूरत नाम हैं इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत ये दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को ये अत्यंत प्रिय हैं। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, सभी को मोर पंख किसी ना किसी रूप में प्रिय है। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख के कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि ये पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचा कर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग हमारे अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोर पंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोर पंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आज हम बात कर रहे हैं मोर पंख की। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आगर्स, जिसकी 100 आंखें थी, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की। यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती हैं। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। एशिया के बहुत देशों में मोर के पंखों को आध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्वान यिन, जो कि एक आध्यात्म का प्रतीक है, का मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वान यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोर पंख से नजदीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता मानी गई है। मोर पंख के विषय में और मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा भजन।

आज हम चर्चा कर रहे हैं मोर पंख पर। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माना जाता है। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित हैं। इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माना जाता है। और हाँ, एक बात और आपने गौर भी किया होगा कि घरों में मोर पंख रखने से कीड़े मकौड़े घर में दाखिल नहीं होते, यानी इसके बारे में जितनी भी चर्चाएं हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, बिल्कुल सही है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हर सुबह एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ आपका स्वागत करती है। आज की सुबह हम एक ऐसे पंख की बात कर रहे हैं जो ना तो उड़ता है ना ही बोलता है, फिर भी हजारों दिल में रंग भर देता है। जी हाँ, मोर पंख, जिसमें इंद्रधनुष छुपा है, शांति छुपी है और एक पूरी आध्यात्मिक दुनिया बसी है। कभी श्री कृष्ण के सिर का ताज बनता है तो कभी किसी संत की पिछी, कभी आंखों को सुकून देता है तो कभी मन को गहराई देता है। मोर पंख हमें सिखाता है, चुप रहो फिर भी चमको, झुको फिर भी मुकुट बनो, त्याग करो फिर भी सबसे सुंदर दिखो। तो चलिए, आज की पहली किरण के साथ हम जीवन के उन रंगों को अपनाएं जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को सजाते हैं। आप तैयार हो जाएं एक ऐसी उड़ान के लिए जो पंखों से नहीं सोच से भरी है, मोर पंख जैसी, बिल्कुल हर रंग से भरी हुई सोच। चलिए अब आपको एक और कहानी की ओर लेके चलते हैं, एक मोर पंख और भगवान। एक बार एक छोटा बच्चा था, नाम था आरव। बहुत चंचल, बहुत जिज्ञासु, लेकिन मन बेचैन रहता था। वो रोज भगवान से सवाल करता, भगवान आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, कहाँ हो आप, क्यों मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ। एक दिन वो पास के जंगल में गया और रास्ते में उसे एक चमत्कारी मोर पंख मिला और रास्ते में उसे एक चमकदार मोर पंख मिला। उसने उसे उठाया और अपने बैग में रख लिया। रात को सपना आया, एक तेज प्रकाश हुआ और उसी मोर पंख से भगवान की आवाज आई, बेटा जिस मोर पंख को तू सिर्फ एक सुंदर चीज मानकर बैग में रख लाया है, उसी में तुझे तेरे सारे सवालों के उत्तर मिल सकते हैं। आरव चौंका, सुबह उठते ही वो ध्यान में बैठ गया और मोर पंख को निहारने लगा। वो सोचने लगा, हर रंग है पर कोई शोर नहीं, मतलब बिना बोले भी अपनी उपस्थिति का प्रमाण दो, मौन में भी प्रभाव होता है। दूसरी बात आरव के जहन में आई, पंख झड़ता है पर मोर रोता नहीं, मतलब जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, त्याग के बाद भी सुंदरता बनी रह सकती है। फिर आरव ने सोचा, सभी रंग मिलकर ही बनते हैं सुंदर, कोई एक नहीं चमकता, मतलब सामूहिकता, सहयोग और संतुलन, यही जीवन का मूल है। श्री कृष्ण ने मुकुट पर उसे जगह दी क्योंकि वो हल्का था, सुंदर था और अहंकारी नहीं था, यानी ईश्वर उन्हीं को सिर पर बिठाते हैं जो सरल और समर्पित होते हैं। आरव ने उस दिन के बाद से ईश्वर से सवाल पूछना बंद कर दिया। अब वो मोर पंख को देखता और मुस्कुरा देता क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, ईश्वर किसी रूप में नहीं पर हर रंग, हर पंख, हर मौन में मिलते हैं। जैसे मोर पंख सिर झुकाकर मुकुट बनता है, वैसे ही जीवन में नम्रता और समर्पण ही असली शोभा है।

सुन रहे हैं अपना सुबह का आध्यात्मिक शो पहली किरण, जिसमें आज मैं बात कर रही हूँ आपसे मोर पंख की। तो चलिए मोर पंख के और भी गुणों से आपको रूबरू कराते हैं इस प्यारी सी कहानी के माध्यम से। हिंदू धर्म में मोर के पंख का विशेष महत्व है। मयूर पंख से माना जाता है कि नवग्रह की विपत्तियां जो होती सारी दूर हो जाती हैं। मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी नवग्रहों का वास होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे धर्म ग्रंथों में इससे संबंधित कथा है। वो कथा ये है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया और कहा कि प्राचीन काल में संध्या नामक एक असुर हुआ था। वह बहुत शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप कर शिवजी और ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी और शिवजी ने प्रसन्न होकर असुर को कई सारी वरदानी शक्ति प्रदान की। शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लगा था। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था। देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी नौ ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। अब वह मोर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। तो ये तो थी नौ ग्रहों की कहानी। अब चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा भजन। अब चलते हैं मोर पंख के उन सभी रंगों की ओर जो अपने अंदर जीवन के हर एक सार को समेटे हैं। सबसे पहला रंग नीला, जो है शांति और भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक, और इससे ये समझ आता है कि ये रंग सत्य, असीमता और भक्ति का प्रतीक है। मोर का मुख्य रंग नीला श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। फिर आता है हरा, जो कि प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक है। ये रंग जीवन संतुलन और करुणा को दर्शाता है। दिल के चक्र यानी हार्ट चक्र से जुड़ाव रखता है हरा रंग। बैगनी रंग यानी आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्य का प्रतीक। ये ध्यान, अंतर्ज्ञान और आत्मिक ऊंचाइयों का प्रतीक माना जाता है। सुनहरा यानी गोल्डन रंग दिव्यता और जागरूकता का प्रतीक। ये ब्रह्म ज्ञान, तेज और दिव्यता का प्रतीक है। आत्म प्रकाश की अनुभूति कराता है सुनहरा रंग। पीला रंग बुद्धि और ऊर्जा का प्रतीक। मानसिक स्पष्टता, सूर्य की तरह आशावाद और आत्मबल का रंग माना जाता है पीला रंग। भूरा व ताम्र रंग स्थिरता और धरती से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। ये संतुलन और वास्तविकता को दर्शाता है। रूट यानी जड़ चक्र से जुड़ाव रखता है। अब आते हैं काले रंग की ओर। इसको गहरा नीला रंग भी बोला जाता है। रहस्य, शक्ति और मौन का प्रतीक। ये आत्मनिरीक्षण और गहराई का प्रतीक है। अज्ञात की सुंदरता है। तो कितने सारे रंगों को अपने एक छोटे से, हल्के से और सुंदर से पंख में समाहित करता है मोर। अब जान लेते हैं कि इन सभी रंगों का हमारे किन चक्रों से जुड़ाव है। मूलाधार चक्र, जो भूरे रंग या ताम्र रंग से संबंधित है। स्वाधिष्ठान चक्र, जो नारंगी रंग से संबंधित है। मणिपुर चक्र, जो पीले रंग से संबंधित है। अनाहत चक्र, जो हरे रंग से संबंधित है। विशुद्ध चक्र, जो नीले रंग से संबंधित है। और आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, जो कि संबंधित है बैगनी रंग से। सहस्त्रार चक्र, जो सुनहरे या फिर उज्ज्वल प्रकाश से संबंधित है। तो इस तरह से हमारी पूरे जीवन को, पूरे ब्रह्मांड को और हर एक रंग को अपने आप में समाहित करके रखता है मोर पंख, जो देखने में तो एक साधारण सी वस्तु जैसा है, पर ये जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के रंगों का अद्भुत संगम है। इसमें हर रंग छिपा है और हर रंग हमें एक नई दिशा देता है।

मोर पंख। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मोर पंख को भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ, पवित्र और आध्यात्मिक प्रतीक माना गया है। अलग अलग धर्मों और परंपराओं में इसका अलग अलग महत्व भी है। हिंदू धर्म में मोर पंख भगवान कृष्ण का आभूषण है। कृष्ण के मुकुट में मोर पंख होता है, जो प्रेम, करुणा और सौंदर्य का प्रतीक है। इसे पहनकर वे प्रकृति और जीवन से जुड़ाव दिखाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाशक माना गया है मोर पंख। मोर पंख को घर में रखने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। वास्तु दोष निवारक है मोर पंख। वास्तु शास्त्र में मोर पंख का प्रयोग दोषों को दूर करने में होता है। विशेषतः मुख्य दरवाजे पर मोर पंख लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है मोर पंख। सरस्वती माता के वाहन मोर को कई किंवदंतियों में माना जाता है कि सरस्वती माता का वाहन हंस के अलावा मोर भी है। इसलिए मोर पंख ज्ञान और कला का प्रतीक भी माना गया है। बौद्ध धर्म में मोर पंख का महत्व बुद्धि और करुणा का प्रतीक माना गया है मोर पंख। जी हाँ, बौद्ध धर्म के अनुसार मोर को करुणा और ज्ञान का प्रतिरूप माना जाता है। इसका पंख सज्जनता और विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। विष को अमृत में बदलने की शक्ति रखता है मोर पंख। बौद्ध धर्म में ये भी कहा गया है कि मोर सांप यानी विष को खा जाता है और फिर भी सुंदरता में रहता है। ये बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार नकारात्मकता और सकारात्मकता के अनुसार नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रतीक है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में मोर पंख का महत्व अहिंसा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। जैन संत मोर पंख से बनी पिच्छी यानी झाड़ू का प्रयोग करते हैं ताकि किसी भी छोटे जीव को हानि न पहुंचे। ये करुणा और जीव दया का प्रतीक माना गया है। सिख धर्म में प्राकृतिक सौंदर्य और संतुलन का संकेत माना गया है मोर पंख। सिख धर्म में मोर पंख का कोई विशेष धार्मिक विधान नहीं है, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक और शस्त्र सज्जा में कभी कभी मोर पंख दिखते हैं, जो सौंदर्य और वीरता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो अगर इन सभी के सारांश के रूप में जानेंगे तो हिंदू धर्म में श्री कृष्ण नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा और वास्तु उपायों के लिए अपनाया जाता है मोर पंख, जिसको आध्यात्मिकता, प्रेम और सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार करुणा विषहरण क्षमता रखता है मोर पंख, जिसे विवेक और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। जैन धर्म में पिच्छी यानी अहिंसा उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो करुणा और जीव दया का प्रतीक माना जाता है। सिख धर्म के अनुसार इसका प्रयोग बहुत ही सीमित माना गया है, परंतु सौंदर्य और वीरता का प्रतीक माना गया है मोर पंख। तो मोर पंख हर एक धर्म के अनुसार बहुत ही उपयोगी माना गया है। आपने देखा होगा कि इस्लाम धर्म में मुहर्रम के पहले या दौरान कुछ लोग मोर पंख को कपड़ों के साथ पहनते हैं। आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मेरे भी जहन में ऐसा ही कुछ आया और फिर मैंने खोजबीन की, जिसपे मुझे निष्कर्ष रूप में ये पता चला कि ये परंपरा विशेषकर सिया मुस्लिम समुदाय और भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय सांस्कृतिक आस्था से जुड़ी है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस्लाम धर्म और मुहर्रम की पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। मुहर्रम इस्लामी वर्ष का पहला महीना है, लेकिन सिया मुस्लिमों के लिए ये शोक का महीना होता है। 10वीं तारीख को यौम आशूरा आता है, जिस दिन हजरत इमाम हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे, करबला के मैदान में शहीद हुए थे। ये दिन त्याग, बलिदान, सत्य और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की मिसाल है। अब मोर पंख का इससे क्या संबंध है? मोर पंख करबला के प्रतीक के रूप

शान को मोर पंख से सजाया जाता है, जो बहादुरी, वफादारी और इज्जत का प्रतीक है। इसलिए मुहर्रम के पहले लोग मोर पंख को कपड़े या टोपी के साथ पहनते हैं, जो श्रद्धा, शोक और प्रतीकात्मक इज्जत के रूप से जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं कि मोर पंख पहनने के भावार्थ क्या हैं। मोर पंख शांति, साहस, सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है। काले या हरे रंग के कपड़े के साथ में इसको धारण करने से माना जाता है कि ये शोक यानी काला, इमामों की विरासत यानी हरा, इस रूप में दिखाया जाता है। पहनना या लगाना, इसको धारण करना एक श्रद्धांजलि और कर्बला के बलिदान की याद माना जाता है। पर गौर करने की बात यह है कि इस्लाम में मोर पंख पहनने की कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। ये अधिकतर स्थानीय संस्कृति, सिया परंपरा और इज्जत की निशानी के रूप में उपयोग किया जाता है। मुहर्रम में मोर पंख का पहनना एक सांस्कृतिक श्रद्धांजलि है, हजरत अब्बास की बहादुरी और कर्बला की पवित्रता को सम्मान देने के प्रतीक के रूप में।

भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी, जिसे आप अपने रेडियो पर सुनने वाले हैं उसी शो में जो आपका पसंदीदा है। जी हाँ, भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, मेरे यानी आरजे आकांक्षा के संग। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। कहानी का नाम है मोर पंख वाला उपहार। सादगी, श्रद्धा और ईश्वर से जुड़ाव दिखेंगे हम इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन के एक छोटे से गांव से, जहां एक नन्हा बालक कृष्ण प्रेम में डूबा रहता था। उसका नाम था नंदू। नंदू बहुत गरीब था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना खिलौने, लेकिन उसके पास था एक मोर पंख। हर दिन वो पंख अपने माथे पे लगाकर खुद को कान्हा समझकर नाचता, मुस्कुराता और मंदिर जाकर कृष्ण भगवान से ढेरों बातें करता। लोग कहते पागल हो गया है, पर नंदू कहता, मोर पंख वाला कन्हैया मेरा दोस्त है और दोस्त से तो बात होती है ना। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार आया जिसका नाम है जन्माष्टमी। सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर मंदिर में पहुंचे। नंदू के पास कुछ नहीं था, बस वही पुराना पंख। उसने उसे सजाया, साफ किया और भगवान के चरणों में रख दिया। वो बोला, कान्हा, सब लोग तुम्हें सोना चांदी चढ़ाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये पंख है, लेकिन ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सिर से मुकुट गिर गया था और वहाँ वो नंदू वाला पंख खुद ब खुद उड़कर जाकर टिक गया। लोग चकित रह गए। पुजारी बोले, ये चमत्कार नहीं, श्रद्धा का प्रताप है। उस दिन से मंदिर में हर साल उसी मोर पंख की प्रतिकृति भगवान को पहनाई जाने लगी। नंदू अब भी वैसे ही है, सादा, मासूम, पर भगवान के सबसे करीब। ईश्वर को चढ़ावा नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी, उन्हें चाहिए भक्ति भाव और सच्चा प्रेम, और मोर पंख उसका प्रतीक है। तो चलिए फिर बांके बिहारी लाल को याद करते हैं और सुनते हैं ये बांके बिहारी वाला भजन।

जरा जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मोर पंख का क्या महत्व है। वैज्ञानिक कारण है कि मोर पंख के रंग वास्तव में रंग द्रव्य यानी पिगमेंट के कारण नहीं होते, बल्कि एक विशेष तकनीक से बनते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कलरिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मोर के पंखों की सतह पर माइक्रोस्कोपिंग स्ट्रक्चर सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जो प्रकाश को परिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट और अपवर्तित यानी रिफ्रैक्ट करती हैं। जब सूर्य की किरणें इन सतहों पर गिरती हैं, तो अलग अलग कोणों से अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जैसे नीला, हरा, सुनहरा, बैंगनी आदि। इसलिए जब आप मोर पंख को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो रंग बदलते हैं, और ये इंद्रधनुषी प्रभाव कहलाता है। अब चलते हैं प्रकृति की दृष्टि से जानते हैं मोर पंख का महत्व। मोर पंख रंग बिरंगे इसलिए होते हैं क्योंकि ये मोर की पहचान और आकर्षण का माध्यम है, खासकर जब वह नाचता हो। नर मोर अपने रंग बिरंगे पंखों से मादा मोर यानी मोरनी को आकर्षित करता है। ये एक प्राकृतिक चयन का हिस्सा है। ये रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव और संदेश देने के लिए भी होते हैं, जैसे जानवरों में ताकत, सुंदरता या उपस्थिति दिखाना। अब चलते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर और जानते हैं कि मोर पंख का क्या महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार मोर पंख के ये विविध रंग जीवन के हर भाव का प्रतीक है, जैसे नीला रंग शांत व कृष्ण का प्रेम, हरा रंग समृद्धि व प्रकृति का प्रतीक, सुनहरा रंग दिव्यता व ज्ञान देने वाला, बैंगनी रंग रहस्य और ध्यान में गूढ़ता लाने वाला। कहा जाता है कि मोर पंख में सातों चक्रों यानी एनर्जी चक्रास के रंग समाहित हैं, जिससे ये संपूर्ण ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने सिर पर सजाया। ये सौंदर्य विनम्रता ज्ञान और प्रकृति से एकता का प्रतीक है। तो इस प्रकार विज्ञान के तौर पे अगर हम देखें तो मोर पंख स्ट्रक्चरल कलरिंग से प्रकाश का खेल है। प्राकृतिक रूप से देखें तो आकर्षण और संकेत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और आध्यात्मिक रूप से देखें तो सातों चक्रों और जीवन के रंगों साथ ही साथ में आत्मिक संतुलन बनाने में पूरी तरह से उपयोगी है मोर पंख।

अभी हमने बात की मोर पंख की, अब थोड़ी और गहराई में उतरेंगे और मंथन करेंगे। मोर पंख हमें सिखाता है कि जीवन के हर रंग को अपनाओ, चाहे वह सुख का हो या संघर्ष का, क्योंकि जब सभी रंग एक होते हैं तभी आत्मा इंद्रधनुष बनती है। कभी आपने मोर पंख को गौर से देखा है? उसमें कोई एक रंग नहीं, दर्जनों रंग होते हैं, नीला, हरा, सुनहरा, बैंगनी और जाने कितने। पर क्या ये सब रंग रंगों की दवात से आए हैं? नहीं, ये रंग आते हैं प्रकाश के खेल से, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली रंग हमारी दृष्टि में होता है। विज्ञान कहता है ये स्ट्रक्चरल कलरिंग है, बिना रंग लगाए भी ये प्रकृति की ऐसी पेंटिंग है जो हर कोण से नया रूप दिखाती है। प्रकृति कहती है ये एक संदेश है, आकर्षण का, चयन का, जीवन का। मोर इन रंगों से न केवल खुद को सुंदर बनाता है बल्कि प्रकृति के साथ संवाद करता है। आध्यात्म कहता है मोर पंख वो है जिसमें सभी चक्रों के रंग छुपे हैं। ये नृत्य करता है तो लगता है ब्रह्मांड की ऊर्जा बोल रही है, इसलिए श्री कृष्ण ने इसे अपने मुकुट पर सजाया, क्योंकि ये सिर झुकाकर सिर सजाता है। क्या हम भी अपने जीवन को ऐसे ही नहीं जी सकते? सोचने वाली बात है। रंगों की कहानी है, पंखों की जुबानी है, ये मोर का उपहार नहीं, खुद ईश्वर की निशानी है। ना रोशनाई ना कूची, ना रंग की पहचान, फिर भी हर रंग बोले मैं हूँ इस जीवन का ज्ञान। कभी नीला बनकर शांति दे, कभी हरा बनकर संजीवनी, कभी सुनहरा बनकर जगाए प्रकाश की प्रेरणा। ये पंख नहीं जीवन के रंग हैं, जो हमें हर रूप में अपनाना सिखाते हैं। तो चलिए अपने जीवन को इन सभी रंगों से भरते हैं, एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं और आगाज करते हैं एक नई सुबह का। तो आइए अब इस मोर पंख से मंथन की ओर चलें, एक ऊर्जावान विचार और एक ऊर्जावान संदेश की ओर, जो सुनने वाले के दिल दिमाग को झकझोर देने वाला है और उसमें भर देने वाला है रोशनी। किस तरह की? कई सारे रंगों की, जो आपके जीवन में हर तरह से होती ही है। कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी प्रेम, कभी नाराजगी, कभी मुस्कुराहट और कभी आंसू के रूप में। तो ये सारे रंग जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वो क्या हो जाता है? सदाबहार रूप में महक उठता है। शायद आपको ये जानकर झटका लगेगा कि जिस मोर पंख को हम इतनी श्रद्धा से सिर पर सजाते हैं, वो पंख खुद मोर के लिए दर्द का प्रतीक होता है। जी हाँ, हर साल जब पंख झड़ते हैं तो मोर चुपचाप उस बिच्छोह को सहता है। किसी से शिकायत नहीं, कोई चीख नहीं, क्योंकि वो जानता है जिसे आज मैं छोड़ रहा हूँ वो कल किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। क्या हम भी उस मोर की तरह त्याग कर सकते हैं? क्या हम भी अपने दुख को किसी और की ताकत में बदल सकते हैं? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। कभी कभी तुम्हारा सबसे सुंदर रूप तुम्हारे सबसे कठिन त्याग के बाद सामने आता है ना? तो आज का मंथन बस इतना कहता है, जीवन को रंग दो मगर अहंकार से नहीं, विनम्रता से। दिखो सबसे सुंदर मगर सबसे शांत रहकर, और जब समय आए त्याग का तो मोर की तरह मुस्कुराकर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा त्याग किसी और के मुकुट की शोभा बन सकता है। तो किसी की मुस्कान बने, किसी के मुकुट की शोभा बने, किसी के जीवन को आसान करें। अभी आप सुन रहे थे अपना रेडियो आध्यात्मिक कार्यक्रम जिसका नाम था पहली किरण। मैं थी आपकी रेडियो साथी आरजे आकांक्षा। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में। आज का विषय था मोर पंख, जो हमें सिखाता है बहुत सारे रंगों को अपने जीवन में आत्मसात करना। इन सभी रंगों के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे आज्ञा दें। राधे राधे, अल्लाह हाफिज, रब रखा।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9260 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9260 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

हाँ जी, हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं आपका अपना मॉर्निंग वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोड अप विद राज युनती, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 एफएम आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल के लिए मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग बेहद खूबसूरत हुई है। मॉर्निंग की शुरुआत आज बारिश से नहीं भैया, धूप से हुई है। आज सूरज दादा को देख के हम बड़े खुश हो गए हैं, और आइए इसी मुलाकात को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं इस प्यारी सी सुबह के साथ। और हम चलते हैं आज की पोइट्री ऑफ द डे की तरफ, कि आज की पोइट्री आपसे क्या कुछ कहना चाहती है। भाई आज की पोइट्री आईना और अक्स है, और बताती है कि हम रोज नए चेहरे ओढ़कर निकलते तो हैं पर आईने से आंखें मिला नहीं पाते। दुनिया को जीतने की जल्दबाजी में हम खुद से मिलना ही भूल जाते। क्यों ढूंढते हैं हम बाहर वो ठंडक जो अंदर की आग बुझा सके। हर जख्म जो मिला है सफ़र में वो दर्द नहीं जिंदा होने का निशान है। कामयाबी की दौड़ भी अजीब है मेरे दोस्त, पहुंच जाओ तो सुकून नहीं, पीछे छूट जाए तो भी सुकून नहीं। असली सुकून तो बस रुक कर खुद को सुनने में है। चलो आज सुबह कुछ हासिल करने की जिद को छोड़ते हैं, जो बचा है खुद में उसकी हिफाजत करते हैं। ज़िंदगी जीतने का नाम नहीं है, ज़िंदगी तो बस खुद को ना खोने का इनाम है। जी हाँ भाई, आज का पोइट्री ऑफ द डे का थॉट बहुत ही क्लियर है, और वो कुछ इस तरह से कि हम दुनिया से तो हर वक्त जीत जाते हैं पर अक्सर खुद से ही हार मान जाते हैं। आज के दिन किसी और के लिए नहीं, खुद को दोबारा से खड़ा करना है, दोबारा से पाने की कोशिश करनी है। हर वक्त हम हर दिन किसी ना किसी कंपटीशन के अंदर होते हैं। कभी ना कभी ऐसा लगता है कि बस जीतना है, जीतना है, जीतना है। पहले क्लास में थे तो क्लासरूम में जीतना है, कंपटीशन में थे तो कंपटीशन में जीतना है, अब करियर में है तो वहाँ पर जीतना है, रिश्तों में जीतना है। बस हर जगह हम जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि इस जीतने की राह में कहीं ना कहीं हम खुद को और अपने खुद के अक्स को खोते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ठहर के सोचना है कि ज़िंदगी में जो हम ये पाने की, जीतने की जो हमने एक चाहत रखी हुई है, जो ज़िद पाली हुई है, क्या ये ज़िद हमारे लिए बेहतर भी है? क्या ये हमें वो चीज़ें मुकम्मल दे रही हैं जिनकी ज़रूरत हमें है, या इस दौड़ भाग में, इस कश्मकश में हम खुद को खोते जा रहे हैं? आईने में जब भी खड़े होकर देखते हैं तो क्या दिखता है? एक सुकून या फिर एक बिछड़ा हुआ, एक खोया हुआ अक्स, जिसको हमने बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया था, जिसका साथ हमने छोड़ दिया था। बस यही कहता है आज का पोइट्री ऑफ द डे, कि इस भीड़ भाड़ में, इस कश्मकश में खुद को दोबारा पाने की कोशिश कीजिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आई नो, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, आई नो, बट इस कंपटीशन और स्ट्रगल में खुद को ना होने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ आइए लेते छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, मिलते हैं इस गाने के उस पार। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग गोंडा।

0: हाँ जी, तो आप एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग गोरा में बहुत ही जबरदस्त वाली प्लेलिस्ट। लेकिन एक बार वापस से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो। एंड आपने ट्यून कर लिया है गोरा का अपना एफएम रेडियो क्यानसली 29.6 एफएम, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी मॉर्निंग रेडियो चौक की उन्नति, मौजूद हूँ आप सभी के साथ। और ऑफकोर्स हमने बात की थी एक छोटी सी पोइट्री के ऊपर जो आपको आई थिंक पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए आपसे एक सवाल किया जाए तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा? फिलहाल सवाल बस इतना सा है कि आप लोगों को ताने मारते हैं कि तुम्हारे दो चेहरे हैं। लोगों के आजकल बहुत दुनिया में दो चेहरे हैं। एंड सोचिए, अगर यही ताना किसी के लिए सच साबित हो जाए तो, नहीं, दिखने वाले दो चेहरे हो जाए तो, जी हाँ, एक पीछे एक आगे, तो कैसा होगा? हमने मूवीज में अक्सर ये देखा है कि कोई मॉन्स्टर दिखाया गया है, कोई भूत दिखाया गया है, तो उसके दो चेहरे होते हैं, दो, एक आगे होता है और एक उसके सर के पीछे होता है। या फिर हम असल जिंदगी में ताने देते रहते हैं कि तुम्हारे तो दो चेहरे हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और। बट क्या हो अगर ये सच साबित हो जाए, अगर किसी के सच में दो चेहरे हो जाए और उसका जन्म ही दो चेहरों के साथ हुआ हो? ना, बिल्कुल भी नहीं, वो ट्विन नहीं है, यानी कि वो जुड़वा भाई बहन नहीं है, वो एक ही बॉडी से जुड़े हुए लोग नहीं है, वो एक ही इंसान है जिसके पास दो चेहरे हैं। तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा फील करेंगे अगर वो जनाब आपके सामने आ जाए और आप उनसे कहें कि ये कैसे हो सकता है? मूवीज में देख देख कर हमारे दिमाग में इतना तो बैठ चुका है कि किसी के दो चेहरे होते हैं मतलब वो कहीं ना कहीं एक डिमोनिक पावर के साथ आता है। बट रियल में ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है और कौन है ये जनाब, हम आपको बताएंगे जरूर। लेकिन तब तक के लिए आप अपनी क्यूरियोसिटी को चैट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आपने देखे हैं किसी के दो चेहरे। फिलहाल सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस छोटे से ब्रेक के उस पार बताते हैं कि वो कौन है जिनके पास एक नहीं दो चेहरे हैं। फिलहाल Stay tuned.
1: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
2: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
1: सच में, क्या खास है वहाँ?
2: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
2: सब कुछ टॉप क्लास था, फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कम्प्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
2: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
2: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

हाँ जी, तो आप इंजॉय कर रहे हैं आयुष्मान खुराना की आवाज में एक बारी हाँ कर दे, और इसी के साथ आपका स्वागत करते हैं, वापस से वेलकम करते हैं आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी अपनी आरजुनति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और हमने जाने से पहले बात किया था कि कोई ऐसा भी हो सकता है क्या किसी के दो चेहरे हों। तानों में तो हमने कई दफा कहा है कि आपके तो दो चेहरे हैं, आगे कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है, हमारे सामने आप कुछ और होते हैं, हमारे पीछे कुछ और होते हैं। और ये बात हमने कह कह कर न जाने कितनी दफ़ा किसी को परेशान भी किया होगा, वो शायद आपको साबित भी करता रहता होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट कई बार ऐसा होता भी है। बट क्या हो अगर सही में किसी के दो चेहरे हों, और इतिहास आपके साथ कैसे खेल खेलता है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं वो असल में कभी होती नहीं, और जो हम कभी देखते नहीं वो ऑफ कोर्स होती हैं। बट ऐसा मैं कह क्यों रही हूँ, आइए बताते हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोडा में।

18 दिसंबर 1895 को एक दिन अखबार में खबर छपती है। खबर बोस्टन संडे पोस्ट अखबार की थी और उसके अंदर एक लेखक है जिन्होंने एक इंसान का जिक्र किया था। अब जिक्र में क्या था चलिए वो बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा इंसान है इस पूरी दुनिया में जिसके पास दो चेहरे हैं, एक सामने एक पीछे, और ये उस चेहरा जो है जो पीछे है उसके, ये उससे बातें करता है रात में जब सब सो जाते हैं, तो पीछे वाला चेहरा बोलना शुरू कर देता है कि हाय दोस्त कैसे हाल है तुम्हारे, तुम ठीक ठाक हो, तुमने खाना वाना खाया, तुम्हारी जिंदगी कुछ खराब चल रही है और बताओ क्या चल रहा है, तुम्हें किसी ने कुछ बोला था, तुमने उसको पलट के जवाब क्यों नहीं दिया, और ऐसी सारी बातें, मतलब भड़काने वाला काम वो पीछे वाला सर करता था। अब उल्टी खोपड़ी है यानी कि पीछे वाली सर है तो ऑफकोर्स वो आपको उल्टी ही बातें सिखाएगा। ये कहानी अखबार के अंदर जैसे ही छपी लोगों की तो कतार लग गई और लोगों ने सोचा ये पक्का किसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है। जैसे कि हम आज भी जानते हैं जब भी कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है जो असल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती या थोड़ी हमारी इमेजिनेशन के परे होती है तो हम उसको कहीं ना कहीं डार्क वेब और सीक्रेट सोसाइटी का नाम छाप देते हैं, पकड़ा देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं कि ये असल में तो हो नहीं सकता, ये हमसे छुपा कर कहीं दूर दराज कोने में किया जा रहा है। और यही हाल 8 दिसंबर 1895 को भी हो रहा था। लोगों को जैसे ही इसके बारे में पता चला लोगों ने तुरंत सोच लिया कि ये किसी सीक्रेट सोसाइटी का कोई रिसर्च है, किसी ने बनाया होगा क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब हम आपको बता दें कि इस कहानी के अकॉर्डिंग एक बहुत ही रईस परिवार में जन्मा एडवर्ड नाम था इस इंसान का जिसके पास दो चेहरे थे। दूसरा चेहरा हमेशा उनसे बुरी बातें करता था, हमेशा उसको भड़काने का काम करता था। अब आप सोचिए आपके पास दो चेहरे हैं, एक आपको अच्छा खासा आपका मूड सेट कर रहा है, दूसरा पीछे से आके कह रहा है ओहो तुमको किसी ने कुछ बोला तुमने जवाब नहीं दिया, ऐसे कैसे हो सकते, पलट के जवाब देना था। आप लड़ाई में हो और आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके अंदर एक आवाज़ आती है कि या इसका अभी मुंह तोड़ दूं या बाद में तोड़ूं, और आप सोचते हो कि नहीं गुस्सा तो हर मुसीबत की जड़ होती है, चलो गुस्सा नहीं करते। फिर अंदर से आवाज़ आती है बाथरूम में कि तुमने बोला क्यों नहीं, इस आर्ग्यूमेंट को तो तुम्हें ही जीतना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि हर लड़ाई के बाद जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, जो अच्छे अच्छे डायलॉग्स होते हैं, वो हमेशा हमें तब याद आते हैं जब हम बाथरूम के अंदर शावर ले रहे होते हैं। यही हाल इन जनाब का भी चल रहा था। एडवर्ड नाम 23 साल की उम्र, और ये 23 साल तक अपने उस पीछे वाली खोपड़ी से सिर्फ यही सुन रहे थे कि आदतें कैसे बदली जाए, लोगों को मुंह कैसे तोड़ा जाए, कैसे उन्हें जवाब दिया जाए, कैसे उन्हें परेशान किया जाए। और इस बात से परेशान होकर वो सामने वाला चेहरा यानी कि वो एडवर्ड, उसने आत्महत्या कर ली। अब इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता होगा कि बहुत दुखद घटना है, ये तो बहुत ख़राब हुआ है, बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी, वो क्या ही कर सकता था अगर वो हमेशा से दो फेस के साथ उसका जन्म हुआ, उसका बर्थ उस दो चेहरों के साथ हुआ है कि नहीं। लेकिन यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। जी हाँ, अब ट्विस्ट ये आता है कि पता चलता है भैया कुछ सालों के बाद कि ये जो कहानी लोगों को इतनी हार्ट टचिंग लग रही थी, इतना लोगों का दिल छू रही थी, लोगों को उस पर हमदर्दी आ रही थी कि बेचारे के पास दो चेहरे थे और एक तो हमेशा उससे उल्टी बातें करता था और एक तो हमेशा अच्छी बातें करता था, और उस चेहरे से परेशान होकर एक इंसान, एक अच्छे खासे जवान इंसान ने आत्महत्या कर ली, ये न्यूज़ फेक है। जी हाँ, और ये कमाल की बात ये है कि आज भी लोग इस न्यूज़ पे ट्रस्ट उतनी ही तेज़ी से करते हैं जितना उस ज़माने में करते थे। अब ये बात पता कैसे चलती है, ये बात पता चलती है सरकारी रिकॉर्ड के ज़रिए। ब्रिटेन के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ना तो किसी का ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट मिला ना डेथ सर्टिफिकेट मिला, ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं था जहां पर किसी एडवर्ड नाम के इंसान का जन्म हुआ हो, जहां पर किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र हुआ हो कि भैया उसके पास दो चेहरे हैं, उसका एक चेहरा नहीं है, वो हमेशा से एक अलग जेनेटिक के साथ पैदा हुआ, एक अलग जीन के साथ पैदा हुआ। लेकिन इस इंसान की कहानी आज तक हमारे वेबसाइट पे बहुत अच्छे से पड़ी हुई है, लोग आज भी इसकी कहानी सुना सुना कर लोगों की हमदर्दियां लूट रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे यूजर्स मिल जाएंगे, इवन आपको यूट्यूब पर गूगल की हज़ारों वेबसाइट इस नाम से मिल जाएंगी कि दो चेहरे वाला इंसान जिसका नाम है एडवर्ड, उसके पास दो चेहरे हैं, इवन
उसके मरने के बाद उसकी जो मम्मी होती है यानी जो कंकाल होता है उसकी तस्वीर तक आपको दिखा दी जाएगी और आपको यकीन करने में मजबूर कर दिया जाएगा कि देखो बात तो हमने सच कही थी, बात तो यही है कि उसका दो चेहरे थे, वो हमेशा से ऐसा ही था, उसका तो जन्म हुआ था। लेकिन आप जब इसको और ठीक से पढ़ेंगे, एक दूसरे नजरिए से देखेंगे और जाकर कहीं सर्च करेंगे कि ये रियल है कि ये फेक है, तब आपको समझ में आएगा कि ये पूरी कहानी फेक है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो एक राइटर का है और वो राइटर ऐसी वैसी कहानी लिखा भी नहीं करते थे। उनका नाम था हिल्ड्रेथ और वो एक काल्पनिक लेखक थे, यानी कि वो फिक्शन के लेखक थे। वो चीजें सोचा करते थे जो शायद असल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती और उन्होंने लोगों की बातों को या तानों को थोड़ा सीरियसली ले लिया होगा और जिसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि कोई इंसान जिसके दो चेहरे हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ चीज़ें आपको बहुत तेज़ी से गुमराह करती हैं, फिर चाहे वो किसी तरह की न्यूज़ हो, कोई आपकी ज़िंदगी से जुड़ा असल किस्सा क्यों ना हो। हमेशा कुछ बातें आपके साथ ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करती हैं, आपके अंदर सवाल पैदा करती हैं और आपको सच की जगह पर झूठ मानने के लिए मजबूर कर ही देती हैं। इसको कहते हैं कि हमारे रिश्तों में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हो रही हैं। जी हाँ, आपने भी देखा होगा कि हम देखते कुछ और हैं और असल में निकलता कुछ और है, सुनते कुछ और हैं और पता चलता है बहुत देर बाद कि इसका मतलब तो कुछ और ही था यार, हमने जो सोचा था वो तो था ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई बात हो, अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो, किसी चीज़ से आप परेशान हो, कोई ऐसी बात जो आपको लगती हो कि यार ऐसा सामने वाला तो नहीं कर सकता, तो उससे खुलकर बात करो, नहीं तो इतिहास के पन्नों में ये चीज़ लिखी हुई है कि भैया जहाँ जहाँ लोगों को मौका मिलता है वहाँ वहाँ वो झूठी खबरों को भी इस कदर सच्चाई के साथ बताते हैं कि आगे आने वाली कई जनरेशन तक वो बात हमेशा सच ही लगती रहती है। अब सोचिए ज़रा 1895 की एक कहानी 2026 में आज भी लोग यकीन कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि सच में कोई एडवर्ड नाम का इंसान था और सच में उसके दो चेहरे थे, सच में उसकी फ़ोटो आज भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी और उसके कंकाल की भी फ़ोटो मिल जाएगी और आपको यकीन करने पे मजबूर कर दिया जाएगा कि ऐसा होता है, इतिहास में ऐसा हुआ है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आंखों का देखा हर वक्त सच नहीं होता, कभी कभी कानों का सुना भी सच नहीं होता। इसीलिए बहुत सोच समझ कर अपने सिचुएशंस को परखिए, समझिए और जानिए। फिलहाल कैसी लगी आपको ये ट्विस्ट वाली कहानी जो मैं इतिहास के पन्नों से बड़ी दूर दराज से निकाल के लेकर आई थी, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि भैया मुझे देना था आपको एक लाइफ लेसन। फिलहाल चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा किस एक्साइटमेंट के साथ आप इसको एंजॉय कर रहे थे और जब पता चला कि ये फेक है तो कैसे आपको हंसी आ रही है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी आई थी, क्योंकि जितना सीरियसली हम इसको रीड आउट कर रहे थे उतने बाद में पता चलता है कि ओ ये तो फेक है यार। लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक और आपको एंजॉय कराते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में राबता फिल्म से एक बारी आ भी जाए यारा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं आपका अपना मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग हो जाए विद राजे उन्नति।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260 9761 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी, तो भैया आपने बचपन से अपनी मम्मियों को, अपनी दादी को, नानी को और सभी को ये कहते सुना होगा कि गाजर खाया करो, आंखें तेज हो जाएंगी। सुना है कि नहीं सुना है? डेफिनेटली सुना होगा। और बहुत सारे लोग आपको सलाह भी देते हैं कि गाजर खाओ, आंखें ठीक हो जाएंगी। हालांकि सच में गाजर में मौजूद कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो आपकी आंखों की स्पेशली नाइट ब्लाइंडनेस को हील करने में मदद कर सकते हैं। बट कम्प्लीटली कोई सुपर पावर नहीं देते हैं, कम्प्लीटली आपकी आंखों का चश्मा जो लगा हुआ है उसको उतार नहीं देते हैं, आपकी आंखें नॉर्मल नहीं कर देते और नॉर्मल को सुपर हीरो नहीं बना देते। बट ये डायलॉग हम बचपन से सुनते आए हैं कि गाजर खाने से आंखें तेज होती हैं, और न जाने कितनी गाजर मैंने यूं ही चबा डाली लेकिन आंखों पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। चलिए अब ये जानते हैं कि ये गाजर वाला किस्सा शुरू कहां से हुआ था। फिलहाल उससे पहले आप लोगों का स्वागत कर लेते हैं आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग गोटा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी मॉर्निंग जॉक युनति, मौजूद हूं आप सभी के साथ। और आप सुन रहे हैं गोटा का अपना एफएम रेडियो ख्यान असली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।

अगर आप भी उनमें से हैं ना जिन्होंने गाजर चबा चबा के अपने जबड़ों के अंदर दर्द करा लिया है, तो आइए आपको एक किस्सा सुनाते हैं। किस्सा आपकी आंखों से नहीं जुड़ा है, किस्सा जुड़ा है उस कहावत से जहां से ये निकल कर आया था कि गाजर खाओ आंखें तेज हो जाएंगी। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, सच बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि इसका किस्सा जुड़ता है सीधे यहां से निकलकर दूसरे यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने यानी कि अंग्रेजों की सरकार ने यह बात पूरे दुनिया को बताई थी कि गाजर खाने से हमारे कैप्टन की आंखें तेज हो गई हैं, तुम भी खाया करो। और इसके बाद कार्टून्स बने, इसके बाद अखबार छपाए गए, इसके बाद न जाने कितने मैगजीन्स बनाए गए, कितने बच्चों को बैठाकर उनकी मम्मी ने, उनकी दादी ने, उनकी नानी ने, चाचा ने, सब ने कि बेटा गाजर खाओ, गाजर खाने से आंखें तेज होती है, देखो कैप्टन साहब की आंखें कितनी तेज हैं, देखो कितने बढ़िया बढ़िया हैं। इवन द डॉक्टर कैरेट नाम का शो तक तैयार कर दिया गया था ताकि बच्चे इंस्पायर्ड हो सके गाजर खाने के लिए। हालांकि बहुत ही अच्छी चीज़ थी, सब्जियां खाना अच्छा होता है, गाजर में पानी मौजूद है जो हाइड्रेट करता है, फाइबर मौजूद है जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, विटामिन ए भी है जो सच में आंखों के लिए अच्छा होता है, बट आंखों को इससे कोई

सुपर पावर नहीं मिल रही। तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये इतनी जबरदस्त झूठ फैलाया तो फैलाया ही इसने। चलिए अब आपको बता देते हैं कि ऐसा क्यों था और दूसरे विश्व युद्ध से इसकी कहानी क्यों इतनी जुड़ी हुई है। एक मशहूर पायलट जिनका नाम था जॉन किनिंघम, किनिंघम नाम के जो पायलट थे, उन्होंने रात के अंधेरे में, जी हाँ रात के अंधेरे में, जर्मनी के 19 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था अकेले। अब क्योंकि रात का घना अंधेरा चल रहा था और उस वक्त इतने ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं होती थी कि हम यहाँ से बैठकर देख लें चीज़ें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। उस वक्त हमारे पास रडार सिस्टम भी नहीं हुआ करता था। जिस तरह से आज हमारे पास रडार है, हमको पता होता है कि इंडिया का रडार बहुत एडवांस है, अमेरिका का रडार बहुत एडवांस है, कोई भी चीज़ एंटर होती है तो तुरंत पता चल जाती है। और इसीलिए कई लोग ऐसे प्लेन, कोई ऐसे जेट की तैयारी करते हैं जो रडार सिस्टम से बाहर हो जाए, कभी वो उसके अंदर आए ना, कोई उन्हें पकड़ पाए ही ना। बट उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। जर्मनी को नहीं पता था, जर्मनी को क्या, पूरी दुनिया को नहीं पता था कि रडार नाम की कोई चीज़ होती है। और उस चीज़ की खबर ब्रिटिश सरकार को मिल चुकी थी, यानी कि अंग्रेज़ों को मिल चुकी थी और उनके पास ये टेक्निक आ चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने अपनी लड़ाई को जीतने के लिए रडार सिस्टम को कर दिया था फिट, और अब वो इसका इस्तेमाल करके जर्मनी की तरफ से आए हुए सारे लड़ाकू विमानों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। अब ये चीज कोई भी देश नहीं चाहेगा कि जो हमारी सुपर पावर हो वो किसी और की भी सुपर पावर बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मेरी कोई लकी चीज ये है जिससे मैं अपने दुश्मनों पर वार कर सकती हूँ, उन्हें हरा सकती हूँ, कॉम्पिटिशन में हरा सकती हूँ, सो ऑफकोर्स मैं नहीं चाहूंगी कि वो ये बात को जाने, वो पहचाने और इनके पास खुद भी वो चीज़ आ जाए। और इसी को तो चालाकी कहते हैं। ऑफ कोर्स तो ये भैया बात उन्हें पता चल चुकी थी कि जर्मनी को नहीं पता है, पूरी दुनिया को नहीं पता है, ये वाली सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। और इसका क्रेडिट दे दिया उन्होंने जॉन किनिंघम को। जॉन किनिंघम जो रात के अंधेरे में अपना प्लेन उड़ाया करते थे आराम से, और जितने भी लोग सामने से आते थे, 19 के 19 फाइटर प्लेन को उन्होंने वहीं पर धराशायी कर दिया, उन्होंने उसको तोड़ दिया, खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, शूट कर दिया। और ऑफ कोर्स अब इस लड़ाई को जब ब्रिटिश सरकार जीतने लगी तो लोगों को लगा कि भैया इनके पास कुछ तो पावर है। जब इंटरव्यू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी होशियारी दिखाते हुए कहा कि ये जो हमारे पायलट साहब हैं ना, इनकी आंखें हैं बिल्ली की तरह। बिल्ली की तरह यानी कि इनको टाइटल मिला कैट्स आई पायलट, यानी कि बिल्ली की आँखों वाला एक पायलट जिसकी आँखों से कोई बच नहीं सकता। अब आपको भी पता होगा बिल्ली की आँखें कितनी तेज़ होती हैं, रात में चमकती हैं, और बिल्ली से भी तेज़ आँखें होती हैं उल्लू की। फिलहाल इन्हें कैट्स आई का टाइटल भी मिल चुका था। अब क्योंकि जब आप कहीं इतने फेमस हो चुके हैं तो जरूर पूछा भी जाएगा कि भैया पीछे का राज क्या है, आपकी आंखों में इतना सुपर पावर आया तो आया कहां से। और इसी चीज को छुपाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हमारे ये कैट आई पायलट बहुत खाते हैं गाजर, जब देखो चबाते ही रहते हैं, और गाजर खाने से ही आपकी आंखों में ये सुपर पावर आया है कि आप दूर दराज से आया हुआ प्लेन आधी रात में जब चांद भी नजर नहीं आ रहा है वो भी आपको नजर आ जाता है। और जैसे ही ये बात लोगों को पता चली इंटरव्यू के दौरान, वैसे ही लोगों ने सोचा कि सच में गाजर खाने से ऐसा होता है, अगर वो 19 फाइटर प्लेन को गिरा सकते हैं नीचे, मतलब हम खाएंगे तो हमारी भी आंखें भी अच्छी हो जाएंगी। और यहीं से शुरू हो गया ये वाला फंडा कि गाजर खाओ आंखें अच्छी हो जाती। बच्चों को गाजर ज़बरदस्ती खिलाया जाने लगा, और आज भी बच्चे गाजर खा रहे होते हैं, जिनको नहीं खाना होता उनकी मम्मी उनसे आके कहती बेटा गाजर खाने से आंखें तेज होती हैं। अब ये बात जैसे ही सामने आई तो अखबारों में खबर छप गई, मैगजीन्स छप गए, डॉक्टर कैरेट नाम का शो तैयार कर दिया गया जिसमें एक गाजर डॉक्टर वाला कोट पहनकर आ रहा था और बच्चों को बता रहा था कि मुझे खाना क्यों ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो कुछ साल बाद ये बात सामने निकल कर आई कि भैया गाजर खाने से कुछ नहीं हुआ था, कैट आई वैट आई कुछ नहीं होता, ये तो रडार सिस्टम था जो पकड़ रहा था। और ये रडार सिस्टम उस वक्त सिर्फ अंग्रेज़ों के पास था, जर्मनी वालों से ये बात छुपाने के लिए, ताकि जर्मनी वालों को पता ना चले इनका राज क्या है, इस राज को दबाने के लिए गाजर का सहारा लिया गया था। अब सोचिए कहाँ गाजर कहाँ रडार,
कोई मैच नहीं है, बट ब्रिटिश सरकार है तो ऑफ कोर्स कुछ भी कर सकती है, कहीं भी कर सकती है। और उन्होंने एक बार फिर से साबित करके दिखा दिया कि बातें तो भैया हमसे अच्छा कोई बना नहीं सकता। और लोगों ने ये साबित करके दिखा दिया कि अगर अफवाह कहीं से उड़ गई है तो जब तक वो असल न्यूज़ बन नहीं जाती, अफवाह को एक जगह पर नहीं रोकेंगे। हम पूरी दुनिया में बताएंगे जा करके कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। भले ही उस इंसान को ही ना पता हो कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। कभी कभार होता है ना, आप अपने आप में खुद के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जो आपको भी नहीं पता होती है, सच में ये मेरे बारे में है, ओ माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतने स्पेशल हो चुके हैं। ये तो आपको दूसरों से पता चल रहा होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी पावर है, आप किसी को मैनिपुलेट कर लेते हैं, आप ब्लैकमेल कर लेते हैं, आपके पास कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के पास है ही नहीं। आपने चीटिंग की हुई है, जाने कितनी बातें की जाती हैं, बट ये होती है सिर्फ और सिर्फ अफवाह। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अफवाहों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। खुद को सोचिए ज़रा, कहाँ रडार सिस्टम, कहाँ गाजर का सिस्टम। हालांकि गाजर खाना अच्छी होती है, मैं नहीं कहती हूँ कि आज आप जान गए हैं कि गाजर खाने से आँखें तेज नहीं हो रही तो आप ना खाएं, ज़बरदस्त गाजर खाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आंखें तो नहीं आने वाली, मतलब कि सुपर पावर तो नहीं मिलने वाली। आप अंधेरे में तो गाजर खाने के बाद नहीं देख सकते, जैसे आज उठते हैं ना इधर उधर हाथ पैर मारते हुए लाइट जाने के बाद, किधर भी देख लें क्या है, उधर भी देख लें क्या है, छूते छाते इधर उधर जाते हैं, बस यही करना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि गाजर में मौजूद विटामिन ए आपकी आंखों को हील करने में मदद करे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिना दवाइयों के हो जाएगा। प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, और ऑफकोर्स गाजर अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, कि आँखों के लिए ना सही, पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल है। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में बताइएगा, और इसके बाद आते हैं आपके चैट बॉक्स में देखने के लिए आपके मैसेजेस को। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए, और आइए ट्यून कर लेते हैं हमारा अगला म्यूजिकल वाला ब्रेक। और पहला गाना आपके लिए पेश करते हैं हम, लकी बॉय, स्टे ट्यून्ड।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के बाद वापस से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग के शो गुड मॉर्निंग गोडा में। और वक्त हो चला है अब आपके अपने चैट बॉक्स की तरफ चलने का, क्योंकि हमारे चैट बॉक्स में आ चुके हैं बहुत सारे मैसेजेस। हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स ने अपने पैगाम हमें भेज दिए हैं, तो आइए उनको देख लेते हैं। और एप्लीकेशन पर मिलता है आपको चैट बॉक्स, और एप्लीकेशन आपको मिलता है प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर रेडियो 89.6 FM के नाम से। आज का जो सबसे पहले मैसेज आज के शो में आया है वो सबलू जी का आया था, और उन्होंने लिखा है विशिंग यू अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, होप यू स्लेप्ट वेल, थैंक यू सो मच। और मुझे भी उम्मीद है कि मैं अच्छा सोई होंगी, हालांकि मुझे याद है कि मैं 2:30 बजे तक सोई ही नहीं थी। फिलहाल थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सच में आज की सुबह बहुत खूबसूरत थी। नाजिया अंसारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो लिख रही हैं वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। इसके बाद महेंद्र दीपन जी फ्रॉम राजस्थान हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू। अरविंद जी फ्रॉम मनकापुर हमसे लिख रहे हैं कि भैया हेलो आरजे मैम या सर, सुप्रभात, राधे राधे, सुप्रभात आपको भी। और आज आरजे मैम मौजूद है तो गुड मॉर्निंग एंड ऑफकोर्स राधे राधे। इसके बाद लिखा है महेंद्र जी ने, उन्नति मैम मॉर्निंग वाले शो में, जी हाँ आज वेंसडे है तो आपकी उन्नति मैम मौजूद हैं आज मॉर्निंग वाले शो में। अरविंद जी लिख रहे हैं खुशियाँ भी चली आती हैं मेरे पास जब सुबह होती है मेरी आपके साथ। ओ माय गुडनेस कितना प्यारा लिखा है। फिलहाल के लिए आपका भी वेलकम है, और आप महेंद्र जी आपका भी स्वागत करते हैं हम आपके अपने शो गुड मॉर्निंग गोना में। इसके बाद हमारे साथ जुड़ी हैं रति सिंह, जो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू। सुजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग माय फेवरेट आरजे रति जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। एंड इसके बाद लिखा है क्या स्टाइल है आपकी, आप सुपर डुपर हो जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए, गाजर चबा चबा के दबा दबा के। जी हाँ भैया, गाजर चबा चबा के मेरा जबड़ा दर्द होने लगा था बचपन से सुन सुन के कि गाजर खाओगे तो आंखें तेज हो जाएंगी। इतना गाजर खाया लेकिन आंखें ही नहीं हुई मेरी। फिलहाल कोई बात नहीं, हो जाती है, गाजर आंखों के लिए ना सही लेकिन पेड़ के लिए तो अच्छा है ना, तो खाइए खाइए ज़रूर खाइए, वो अलग बात है कि आप इसको पका कर खाइए, कच्चा चबाने से ज़्यादा अच्छा आएगा। एंड इसके बाद सविता दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जिन्होंने हमें गाजर के साथ साथ बहुत सारी लाफिंग इमोजीज भेज दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं हम आपके अपने शो गुड मॉर्निंग गोना में। इरफान शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुंदर आवाज और बहुत सुंदर प्रस्तुति, आपके बोलने का अंदाज लाजवाब है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी इस्तकबाल करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। एंड वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन उन्नति गाजर एंड रडार, जी हाँ भैया आप देख लो अफवाहें कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती हैं, इसीलिए मैं तो कहती हूँ अफवाहों पर यकीन मत किया करो। एंड इसके बाद ओके इरफान जी का ही मैसेज है, बहुत सुंदर गुड मॉर्निंग कार्यक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी लिख रहे हैं अब गाजर नहीं खाऊंगा, इसका जिम्मेदार उन्नति मैम। अरे भाई मैंने कब कहा मत खाओ, मैं तो कह रही हूँ खाओ लेकिन सही जानकारी के साथ खाओ। इसके बाद लिखा है नाइस सॉन्ग मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। एंड उन्नति जी नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सविता जी लिख रही है झूठी मक्कार गाजर, जी नहीं भैया झूठी मक्कार गाजर नहीं थी, झूठा तो भैया हमारा ब्रिटिश सरकार था, यानी कि अंग्रेजों ने सिर्फ अफवाहें फैला रखी थी कि गाजर खाने से आंखें तेज होती। गाजर ने तो कुछ कभी कहा ही नहीं कि मुझे खाओ तो मैं आंखें तेज कर दूंगा, बेचारा गाजर की क्या गलती थी इसमें, उसने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। एंड इसके बाद मिस्टर ऑप्टिकल जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखा है गुड मॉर्निंग गोना एम एम एम डॉट ए डॉट एम, यानी कि मैम गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। एंड इससे पहले कि हम अपने इंस्पायरिंग सेगमेंट की तरफ चले, क्या बात है एक और कहानी सुना दी जाए आपको, क्या सोचते हैं? अगर आप कहते हैं सुना दें तो आइए सुना देते हैं, क्योंकि पिल्ली की स्टोरी एक मेरे पास है जो कुछ इस तरह से है। पिल्ली ने किसी ज़माने में 2000 साल पहले बैठ कर लिखा था एक कहानी, और कहानी के अंदर जिक्र थी एक ड्रैगन की और एक एलिफेंट की, और वो कहते हैं कि किसी दुनिया के दूर दराज कोने में एक रोज़ एक एलिफेंट यानी कि हाथी और एक ड्रैगन दोनों की लड़ाई हुई। अब ड्रैगन खून का प्यासा था, उसका खून ठंडा था, और दोनों यानी कि हाथी और ड्रैगन मारे गए। उन दोनों का खून ज़मीन पर गिरा और उस खून से निकला एक पेड़, वो पेड़ आज भी काटो तो उसमें खून निकलता है।
अब ये बात भले ही पूरी तरह से काल्पनिक थी, लोगों ने इसको पढ़ा, लोगों ने मजाक लिया और सोचा कि ड्रैगन और हाथी लड़े और दोनों ही हार गए, दोनों ही मर गए, और उनके मरने के बाद उनका खून जमीन पर गिरा और उस खून से एक पेड़ बना जो कि खूनिया है, ये क्या बात होती है। लेकिन ये बात सच है जनाब, यमन से बस कुछ ही दूर में एक आइसलैंड है जिसका नाम अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहां पर है। यमन से कुछ ही दूर नाम है सोकोट्रा द्वीप, यानी कि सोकोट्रा आइसलैंड, जो अपने बहुत ही विविध और बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ों के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध का मतलब वहाँ पर कोई बहुत बड़ी बड़ी इमारतें नहीं है, उसके अंदर मौजूद हैं कुछ ऐसे जीव जंतु जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाले हैं। वहीं पर एक ऐसा पेड़ है जो अपनी खासियत के लिए फेमस है, 2000 साल के बाद भी वहाँ पर एक ऐसा पेड़ मौजूद है जो उल्टे छाते की तरह नज़र आता है, और उस पेड़ को काटने पर एक लाल खून जैसा लिक्विड निकलता है। जी हाँ, उसको काटने पर ऐसा लगता है, सिर्फ एक कुल्हाड़ी मारो ऐसा लगता है कि पेड़ से खून निकल रहा है, जैसे कि किसी के इंसान को जब कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो उसके हाथ पैरों से खून निकल आता है, ऐसा ही कुछ उस पेड़ के साथ भी है। अब पिल्ले की कहानी से इसका लेना देना कुछ भी नहीं है, ना वहाँ पे कोई ड्रैगन था, ना वहाँ पे कोई हाथी था जिसका युद्ध हुआ, दोनों मर गए, उसके खून से वो पेड़ निकला, लेकिन इसके पीछे इंटरेस्टिंग सी कहानी ज़रूर है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि भैया इस पेड़ के अंदर मौजूद है एक रेड कलर का रेजिन, रेजिन जो कि ऑफ़ कोर्स केमिकल से बना हुआ है, और ये केमिकल ही एक सबसे बड़ा कारण है कि इस पेड़ को काटने पर इससे लाल रंग का लिक्विड निकलता है, लाल रंग का यानी कि खून की तरह दिखने वाला एक लिक्विड निकलता है। आपने बाकी भी पौधे देखे होंगे, बाकी भी पेड़ देखे होंगे, कुछ पेड़ों के काटने पर सफ़ेद रंग का लिक्विड निकलता है जिसको कई लोग दूध भी समझते हैं, और वो कहते हैं कि ये कटहल का दूध है, ये इसका है, ये कनेर का है, न जाने क्या क्या नाम दे दिए जाते हैं। वहीं इस पेड़ को काटने पर क्योंकि रेड कलर का लिक्विड निकलता है, यानी कि लाल रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है, तो इसको खून समझ लिया जाता है। अब इसके पीछे साइंस ने जब इस पर रिसर्च किया तो पाया कि भैया ये है एक केमिकल, केमिकल का नाम है ड्रैक्रोफिलेविलेम, कितना कठिन नाम है। फिलहाल ये मौजूद है, ये केमिकल मौजूद है इस पेड़ के अंदर, और यही केमिकल की वजह से इसके अंदर ये खून जैसा तरल पदार्थ निकल रहा है जो बैक्टीरिया से बचाने के लिए है, ताकि इस पेड़ को कोई भी कीड़ा मकौड़ा ना काटे, बाकी खून उनसे कोई लेना देना है नहीं। अब बात कर लेते हैं कि पिल्ली ने जो कहानी लिखी थी वो सच कैसे हो गई। तो भैया प्रकृति है, कुछ भी हो सकता है, और इसी आइसलैंड पे मौजूद हैं कुछ ऐसे जीव जंतु जो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलने वाले, फिर चाहे बात करें यहाँ मौजूद सांप की, या बात करें यहाँ के मौजूद कीड़े मकौड़ों की, बिच्छू की, मकड़ियों की, ये इतने डिफरेंट होते हैं कि बाकी कहीं भी आपको ऐसे मिलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका एवोल्यूशन बहुत अलग तरीके से हुआ है। जी हाँ, हमारी प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी अनोखी हैं, जिनको देखने पर लगता है कि यार कुछ तो अलग है, नेचर सच में अलग है। आइसलैंड पर, जहाँ इस आइसलैंड पर आपको खून वाला ड्रैगन ट्री मिलता है, ड्रैगन ब्लड ट्री बोला जाता है इसको, वो मिलता है, वहीं स्नेक आइसलैंड के स्नेक्स जो होते हैं वो इतने जहरीले होते हैं, उनका जहर आपके नॉर्मल किंग कोबरा से 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब आप सोच सकते हैं एवोल्यूशन किस तरह से काम करता है। हमें लगता है कि चीज़ें यूं ही नहीं बदलती, प्रकृति आपको हमेशा वही चीज़ देती है जिसकी ज़रूरत आपको होती है। अब सर्वाइवल के लिए किसी को जहर की ज़रूरत थी तो उसे जहर दिया गया, किसी को ज़रूरत थी खुद की प्रोटेक्शन के लिए क्योंकि वहाँ इंसान नहीं पहुँच रहा था, वहां दवाइयां डालने वाला कोई मनुष्य नहीं था, इसलिए प्रकृति ने खुद उसके अंदर एक ऐसा केमिकल डाला जो उसे बैक्टीरिया से, उसे कीड़ों से बचा कर रखता है। आज भी वो पेड़ यूं ही खड़ा रहता है, बहुत बड़ा पेड़, और एकदम उल्टे छाते की तरह। प्रकृति आपको वही चीजें देती है जिसकी जरूरत आपको होती है, बस हमारी ही खुराबात है कि हम प्रकृति को छेड़ते रहते हैं हमेशा। जिस पेड़ों को, प्रकृति को उगाने में सालों लग जाते हैं, 2000 साल तक वो उस पेड़ को सजो कर रखती है, बचा कर रखती है, और जैसे ही इंसान के कदम उस जमीन पर पड़ते हैं वो वैसे ही 2 घंटे के अंदर उस पेड़ को काट के गिरा देते हैं।
और कहते हैं कि लो भैया दुनिया का सबसे महंगा लकड़ी हम तुमको दे रहे हैं, चाहिए तो बताओ, और उसको लाखों में बेच भी दिया जाता है। और इसी वजह से हमारी प्रकृति को आजकल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम अपनी आदतों को नहीं बदल रहे हैं। हम नहीं समझ रहे हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारे ये कूड़ा कचरा फैलाने की आदत, पन्नियों को इस्तेमाल करने की आदत, पेड़ों को काटने की आदत, जानवरों को मारने की आदत, ये कहीं ना कहीं आगे जा करके हमारे लिए ही नुकसान होने वाला है। आप भी देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। साइंटिस्ट ने तो हाथ खड़ा करके बोल दिया है कि कुछ दिनों में आपकी धरती पिघलना भी शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, और यहाँ का तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ओशन का लेवल बढ़ेगा, ओशन का लेवल बढ़ेगा तो वाटर साइकिल यानी कि आपकी बारिश का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा, वो डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं आपके पहाड़ों में डिस्टर्बेंस आएगा, और आप जानते हैं जब पहाड़ों में डिस्टर्बेंस आता है तो तबाही आती है। अब ये चीज़ भैया साइंटिस्ट ने तो ऐलान कर दिया है, अब इसका जिम्मा कौन लेने वाला है, कौन उठाएगा इसकी जिम्मेदारी? कोई अलग से सरकार मंगानी पड़ेगी? नहीं, हम ही उठाने वाले हैं। अब पेड़ों को हमने काटा है तो पेड़ों को बचाने का काम भी तो हमारा ही हुआ ना जनाब, पेड़ों को लगाने का काम भी हमारा ही हुआ। तो इस बार अपने घर पे नकली पेड़ पौधे लगाने से अच्छा है दिवाली में आप नकली चीज़ें लेकर आएँ, पन्नियों से बनी चीज़ें लेकर आएँ, उससे अच्छा है कि आप अपने घर में थोड़े से पेड़ पौधे लगाएँ, आसपास पेड़ पौधे लगाएँ, अपने वातावरण को सुरक्षित बनाएँ, इससे पहले कि सूरज दादा और बौखला जाएँ और आपको कहें कि चलो तुम लोग को तंदूर में भून ही देते हैं, उससे पहले पेड़ लगा लेते हैं, क्या ख्याल है? बोला चैट बॉक्स से बताइएगा। और हम मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार, फिर आपको सुनाते हैं आज की इंस्पायरिंग स्टोरीज, यानी कि वो लोग जो आपको इंस्पायर्ड करते हैं। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए आपका अपना गुड मॉर्निंग गोंडा, गोंडा के अपने एफएम रेडियो ज्ञानस्थली पर विद योर आर्जी उन्नति।

0: हां जी, तो अगर आपने सोनू निगम साहब की आवाज में फलक को देख लिया हो तो वापस स्वागत कर लेते हैं आपके अपने गुड मॉर्निंग ओना में। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजी उन्नति, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, रेडियो के ज्ञानस्थली गोंडा शहर की धड़कन। और अब स्टार्ट हो चुका है हमारा इंस्पायरिंग वाला सेगमेंट, यानी कि वो कहानी किस्सों वाला सेगमेंट जो आपको इंस्पायर करता है, जिनकी कहानियां आप तक नहीं पहुंच पाती हैं उनकी कहानियां मैं लेकर आती हूं आपको सुनाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपके आसपास कितने महान पर्सनालिटी के लोग रहते हैं, कितने सारे लोग रहते हैं जो अपनी लाइफ को स्ट्रगल करते हुए एक मिसाल कायम कर रहे हैं, जो बताते हैं कि भैया जिंदगी में कितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं, कितने स्ट्रगल क्यों ना आ जाएं, क्या फर्क पड़ता है, जब दम है, जब हिम्मत है तो सब कुछ हो सकता है। और इसी में आज हम एक कहानी लेकर आए हैं आपके लिए, एक ऐसी महिला की जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 भी नहीं, 100 भी नहीं, 1400 बच्चों को पाला है। उन्हें प्यार से सब माई कहते हैं और कहना बनता भी है, लेकिन ऐसा क्यों है, उनकी कहानी कहां से शुरू होती है, और हर कहानी की तरह भैया इनकी कहानी में बड़ा तकलीफ, बहुत दर्द है। चलिए बात कर लेते हैं हम सिंधुताई की। सिंधुताई जिनका जन्म होता है 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के एक छोटे से जिले के एक छोटे से गरीब परिवार के अंदर एक अनचाही औलाद के रूप में। माता पिता उन्हें कभी चाहते ही नहीं थे, वह एक अनचाही औलाद थी, इसलिए परिवार वाले उन्हें कभी प्यार से नहीं बल्कि चिंदी नाम से बुलाते थे। चिंदी जिसका मतलब होता है फटे कपड़े का एक टुकड़ा, ये ना उनको नाम मिला था। उनके पिता उन्हें पढ़ाना चाहते थे लेकिन गरीबी बहुत ज़्यादा थी और सामाजिक बंधनों के कारण वे केवल चौथी कक्षा तक ही पढ़ी थी, बस फोर्थ क्लास तक वो पढ़ी। इसके बाद जब उनकी उम्र हुई लगभग 10 से 12 साल तभी उनका विवाह करा दिया गया खुद से 20 साल बड़े व्यक्ति के साथ, नाम था श्रीहरि सपकाल। उनका विवाह हो जाता है अपने से 20 साल बड़े इंसान, और जब उनकी उम्र खुद 10 से सिर्फ और सिर्फ 12 साल के बीच में थी, एक बच्ची और 20 साल बड़ा वो आदमी, सोचिए सोचिए किस तरह से ये रिश्ता निभाया जा रहा होगा। ससुराल में उन पर बहुत अत्याचार हुआ। जब वे 20 साल की हुई थी तब वो 9 महीने की गर्भवती थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। उस 9 महीने की गर्भवती महिला को घर से लात मार के निकाल दिया, उसके पति ने उसको मार मार के घर से बेघर कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनकी कोख में पल रहा बच्चा उनका अपना है, वो 9 महीने की गर्भवती हैं, अगर इस वक्त उन्हें घर से निकाला जाएगा तो वो कहाँ जाएंगी, किसी ने सोचा भी नहीं। उस 20 साल की लड़की को उसकी प्रेगनेंसी की उसी हालत में घर से निकाल दिया गया। वो अब जाकर एक गौशाला के अंदर रहती थी, गौशाला में वहां पर ही उन्होंने अपने बच्चे को अकेले जन्म दिया। वहीं पर पड़ा एक नुकीला पत्थर, उन्होंने उसी पत्थर के साथ अपने बच्चे की उस एम्बिकल कॉर्ड को काटा जो उन्हें उस बच्चे के साथ जोड़े रखता था। आपको भी पता होगा उस कॉर्ड के बारे में ऑफ कोर्स। एंड गायों की आड़ में तबेले के अंदर वो अपने बच्चे को, अपनी बेटी को जन्म देती हैं, उसका एम्बिकल कॉर्ड उसी पास में पड़े एक नुकीले पत्थर से काटती है, जहाँ पर हम इतना देखभाल करते हैं, इतना ज़्यादा संभालते हैं हर एक चीज़ को, एक छोटी छोटी सी चीज़ को, कि बच्चे के इन्फेक्शन ना हो पाए। अगर आपने किसी कैची से कटिंग की है उस एम्बिकल कॉर्ड की और वो कहीं से भी रस्टिंग है, या आपने उसको अच्छे से धोया नहीं है उस कैची को, तो बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। वहीं पर गौशाला में पड़ी एक नुकीला पत्थर, सोचिए साफ भी नहीं है, गंदा है, और उससे वो अपने बच्चे की एम्बिकल कॉर्ड को कट कर देती हैं। लोगों के ताने ना सुनने पड़े और आत्मसम्मान से भरी ये महिला रात में शमशान घाट में रहती थी, चिताओं के पास, वहीं पर रोटी सेक कर खाती थी, और सुबह स्टेशन पर जाकर लोगों से पैसे मांगती थी, भीख मांगती थी। ऐसे करके उन्हें स्टेशन पे कुछ बच्चे दिखे, वो बच्चे जिनके अपने माँ बाप नहीं थे, जिनका अपना कोई घर नहीं था। उन्होंने उस बच्चे को जैसे ही देखा उन्हें अपना बचपन याद आ गया, उन्हें याद आया किस तरह से वो अपने माँ की, अपने पिता की अनचाही औलाद थी, किस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया, किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुआ और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने स्टेशन के उन बच्चों को उठाया, उनको प्यार देना शुरू किया, उनको पालना पोसना शुरू किया, जो खुद पैसे मांग कर अपने बच्चे के लिए रोटी शमशान घाट की चिताओं पर सेक रही थी वो अब उन बच्चों की मदद कर रही थी। उन्होंने देखा कि बच्चों के अंदर वो एक हीन भावना आ जाती है जिसमें लोगों को लगता है कि शायद ये माई हमारे साथ भेदभाव कर रही है। कहानी में ऐसा ट्विस्ट कि अब उन्हें अपनी ही बच्ची खुद से दूर करनी पड़ रही थी। उन्होंने अपनी ही बच्ची को एक ट्रस्ट को सौंप दिया, उन्होंने अपने पास अपनी ही बच्ची नहीं रखी सिर्फ इसलिए ताकि वो बच्चे जो पाल रही हैं, जो अनाथ हैं, उन्हें ये ना लगे कि काश उनकी माँ होती तो इस माई से ज़्यादा वो मुझे प्यार करती, और इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की बच्ची को खुद से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। और धीरे धीरे करके उन्होंने एक दो नहीं, तीन चार, 30-40 भी नहीं, 50-60 भी नहीं, 500 भी नहीं, 1400 बच्चों को जिंदगी दी, 1400 बच्चों का पालन पोषण किया, उनका भरण पोषण किया। देखते देखते जिस 20 साल की लड़की को घर से लात मार के निकाल दिया गया था, घर से मार पीट करके उसको 9 महीने की गर्भवती को ऐसी छोड़ दिया गया था जिसके पास ना घर था, ना खाने के लिए पैसे थे, ना सहारा था, वो एक लड़की आगे जाकर न जाने कितने बच्चों की, अप्रॉक्स 1400 बच्चों की माँ बनती है, उनके लिए सहारा बनती है। और हम आपको बता दें, अब लोग उन्हें माई कहते हैं, माई का मतलब होता है माँ। लोग उनका नाम नहीं जानते, लोग उन्हें कभी भी नहीं कहते कि सिंधुताई, लोग हमेशा उन्हें माई कहते हैं, और जो लोग उनका नाम जानते भी हैं वो उन्हें सिंधुताई माई कहते हैं। हम आपको बता दें, उन्होंने इतने सारे बच्चों को पाला है और इसी में से लगभग उनके पास 300 से ज़्यादा दामाद और बहुएं भी हैं इस वक्त, कि उन्होंने बच्चों की शादी भी कर दी है अपने ही पैसों से। और इसी दौरान उनके इसी अच्छे काम के लिए भारत सरकार ने साल 2021 में उन्हें नागरिक सम्मान दिया, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। तो भैया, स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बचपन से भी हो सकता है, आगे भी जाके भी हो सकता है, बस बात इतनी सी है कि आप उन स्ट्रगल से हार ना माने तब कुछ हो सकता है। अगर आप अपनी परेशानी से हार मान जाते हैं, आप ये सोच लेते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, ज़िंदगी में हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सब कुछ ख़राब हो जाता है, कहीं भी कुछ भी करने जाता हूँ वो कहते हैं कि कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है, वो वाला अगर आपका हाल है, किसी भी चीज़ से आप परेशान हो जाते हैं, ज़रा सी इंटरव्यू कैंसिल हो गया, इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो आपको लगता है यार ज़िंदगी बर्बाद हो रखी है, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कभी कुछ था ही नहीं, ना माँ बाप का प्यार था, ना बचपन से सहारा था, ना खाने के लिए रोटी, ना पढ़ने के लिए स्कूल। 10 से 12 साल में उनकी शादी करा दी जाती है, वो भी ज़बरदस्ती एक 20 साल बड़े इंसान के साथ, और 20 साल बड़ा इंसान वो भी उनकी कद्र नहीं करता, उनके साथ अत्याचार करता है, मारपीट करता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, वो मरघट में यानी कि जहाँ पर लोगों की चिता जलाई जाती है वहाँ बैठ कर खाना पकाती हैं। सोचिए। फिलहाल लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, तब तक के लिए आप अपने थॉट्स जरूर बताइएगा चैट बॉक्स में, आपको इनकी कहानी कैसी लगी, दूसरी कहानी किसकी होने वाली है बताते हैं छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक की उस बात, तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग ओडा विद राजीव नदी, स्टे ट्यून्ड।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी। अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

एक बार वापस से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोजा में। मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञानसली, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और वक्त हो चला है हमारी दूसरी कहानी को सुनाने का। फिलहाल ये हमारे इंस्पायरिंग सेगमेंट में से जो कहानियाँ होती हैं ये एकदम सच होती हैं, और ये उन लोगों की कहानियाँ होती हैं जो समाज में कुछ हटकर करना पसंद कर रहे हैं या फिर कुछ हटकर कर रहे हैं। और इस वक्त की जो हमारी अगली कहानी है वो किसी इंसान की नहीं है, वो एक्चुअली एक स्कूल की है। अब आप सोच रहे हैं कि स्कूल में ऐसा कौन सा चीज़ खास हो गया है जिसकी कहानी मैम लेकर आ चुकी है। चलिए बता देते हैं कि भैया स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। एक ऐसा स्कूल जो बच्चों से पैसे नहीं लेता। अब आपने कहा होगा कि हाँ तो ऐसे तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है ना जो पैसे नहीं लेते हैं, बट बात ये नहीं है, ये पैसे के बदले में कुछ और लेते हैं। अब आप गेस भी नहीं कर सकते, अगर कर सकते हो तो बताइए पैसे के बदले में क्या ले रहे होंगे। नहीं लगा पाए ना, चलिए हम बताते हैं। पैसे के बदले में ये बच्चों से कहते हैं कि आपको हर हफ्ते यानी कि हर एक वीक में कम से कम 25 प्लास्टिक की चीज़ें लेकर आनी हैं, जिसमें आपकी खाली बोतलें हो सकती हैं, चिप्स के पैकेट हो सकते हैं, कुरकुरे के पैकेट हो सकते हैं, आपके घर में कोई सामान आया है वो हो सकता है, पॉलिथिन हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ आप लेकर आएंगे 25 आइटम्स, यानी कि 25 आइटम्स प्लास्टिक के। इसके बदले में आपको 1 रुपया फीस भी नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 25 पन्नियाँ बोतलें पैकेट रैपर यही सब लाके दे दो, यही तुम्हारी फीस भी हो जाएगी। और ये स्कूल है कहाँ, चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये अनोखा स्कूल जो प्लास्टिक का कचरा फीस समझकर ले रहा है रुपयों की जगह पर, ये स्कूल किसका है और इसकी शुरुआत आफ्टर ऑल हुई कहाँ थी। इस अनोखे स्कूल का नाम है अक्षर फॉर्म स्कूल, जो असम के गुवाहाटी के बाहरी इलाके में पड़ता है, एक छोटे से गांव में जिसका नाम है पामोही, उस गांव में स्थित है। इसकी शुरुआत 2016 में परमिता शर्मा और उनके पिता मैजिन मुखातर ने की थी, जो कि अमेरिका के एरोनॉटिक्स इंजीनियर थे और उन्होंने अमेरिका की इस जॉब को छोड़कर भारत में वापसी कर ली थी। अब वो भारत आ चुके थे तो उन्होंने देखा था भैया कि भारत में बहुत सारा कूड़ा कचरा जमा हो रहा है, इसीलिए उन्होंने एक स्कूल खोला। स्कूल 2016 में शुरू हो चुका था और हर छात्र को कहा गया कि हफ्ते में कम से कम 25 पीस प्लास्टिक का कचरा आप लेकर आएंगे, जिसमें खाली बोतलें होंगी, चिप्स के पैकेट होंगे, थैलियां होंगी, स्कूल में लाकर आपको ये जमा करना होगा। अब इसका आइडिया कहां से आता है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। पमोही गांव के लोग सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए घरों के आसपास प्लास्टिक जलाते थे, जिससे बहुत जहरीला धुआं फैलता था। इस प्रदूषण को रोकने के लिए और गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए इन्होंने कैश की जगह पर प्लास्टिक का सहारा बना लिया। ये चाहते थे कि भैया हमारा वातावरण भी साफ सुथरा रहे, बच्चों की पढ़ाई भी होती रहे। अब क्योंकि गांव में कोई स्कूल था नहीं और बहुत दूर स्कूल भेजने का मतलब है बहुत सारा पैसे का खर्चा करवाना। अब जिनकी स्थिति पहले से ही खराब है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि बच्चों को जब शिक्षा देनी ही है और समाज में भी कुछ भला करना है, पर्यावरण को बचाना है, तो क्यों ना प्लास्टिक से काम चला लिया जाए। प्लास्टिक को जलाएंगे नहीं क्योंकि प्लास्टिक मिलेगा नहीं, और जब प्लास्टिक जलेगा नहीं तो ऑफकोर्स पर्यावरण में धुआं उठेगा नहीं, वातावरण गंदा होगा नहीं, पॉल्यूशन होगा नहीं, गांव साफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, गांव की सफाई भी होगी। अब क्योंकि पैसों के बदले में प्लास्टिक मांगा जा रहा है तो घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उनको भी पता है कि प्लास्टिक तो कहीं भी मौजूद मिल जाता है। प्लास्टिक तो आए दिन हमारे घर पर आने वाले हर एक चीज़ में मौजूद होता है, फिर चाहे वो हम रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे हो या हमने शॉप पर जाके कोई कुरकुरे चिप्स के पैकेट खरीदे हो, इवन आपके टॉफी का छोटा छोटा रैपर भी प्लास्टिक में ही गिना जाता है। अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो वो भी आपको प्लास्टिक में ही मिलता है। और बस इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर उन्होंने सोचा कि एक ऐसे स्कूल की स्थापना की जाए जहां पर बच्चों से पैसे ना लिए जाएं, जहां पर बच्चों से प्लास्टिक इकट्ठी करवाई जाए। इससे उनका गांव भी साफ होगा, वातावरण भी साफ होगा और उन्हें ये भी नहीं लगेगा कि भैया उनको कोई बोझ बन रहा है पढ़ाने पर। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्थापना कर दी
अक्षर पब्लिक स्कूल की, यानी कि अक्षर फॉर्मर स्कूल की। अब आप बताइए ये आइडिया क्या बाकी स्कूल वालों को भी कहीं ना

सोचना चाहिए क्या? मतलब पैसों के साथ अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो भी क्या बच्चों से प्लास्टिक के बैग्स लेना, प्लास्टिक को कलेक्ट लेना और स्कूल में एज अ फीस या फिर एज अ करिकुलम एक्सेप्ट करवा लेना, ये अच्छा नहीं होगा। इससे हम अपने आसपास की कितनी सारी प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करके एक जगह पर डिस्पोज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप भी देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर इंसान मौजूद है वहाँ वहाँ पर कूड़ा कचरा है, और जहाँ जहाँ कूड़ा कचरा है उसमें से 90% जो कचरा होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक का होता है, जो कि कई सालों तक जाता ही नहीं। फिर चाहे वो समुद्र की बात की जाए, चाहे बात की जाए आपके ही बगल में बना छोटे से तालाब में, हर जगह प्लास्टिक मौजूद है। इवन प्लास्टिक आपके शरीर के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि जिस बॉटल से आप पानी पीते हैं वही बॉटल, वही खाने की प्लेटें आपके शरीर के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक ट्रांसफ़र कर रही हैं। अब आप बताइए ये आइडिया आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो चैट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार मिलेंगे आपके अपने चैट बॉक्स में देखने के लिए आपके मैसेजेस, पढ़ने के लिए आपके मैसेजेस, और इंतज़ार रहेगा मुझे आपके फीडबैक का। आज का शो आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

और हम भी आ चुके हैं भैया, हम तुरुरुरु करते हुए वापस से आ चुके हैं आपके अपने वाला शो गुड मॉर्निंग गोना में। आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं वापस से आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोना में। मैं हूं आपकी अपनी आज आपकी होस्ट एंड दोस्त मॉर्निंग चौक की नदी, मौजूद हूं आप सभी के साथ। और आइए चलते हैं क्योंकि वक्त हो चला है अब आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का। आपके कुछ मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, तो उन मैसेजेस को देख लेते हैं और पढ़ते हैं। भैया आपने क्या कुछ लिख के भेज दिया है।

और इसको कहते हैं अपने नाम पर बिल फाड़ना, जो हमने फाड़ा है ऑफ कोर्स, क्योंकि अरविंद जी का कहना है कि आज के बाद वो गाजर नहीं खाएंगे और जिम्मेदारी मैं लेने ली है। मैं क्यों लेने लगी भाई, मैंने थोड़ी कहा आप गाजर ना खाइए, खाइए, मैं कह रही हूँ खा लीजिए, नहीं तो आगे मम्मी मुझे आगे चिल्लाने लग जाएंगी कि ओ अच्छा आप ही ने गाजर के लिए मना किया है, इधर आइए आप। और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। मुझे मेरी मम्मी की डाइट सुनने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है फिलहाल अभी। एंड इसके बाद धर्मेंद्र लिख रहे हैं, एक बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करना ही सफलता का पहला मंत्र है। क्या बात है भैया, आपने वैसे एकदम बात सही तो कही है, चीज़ों की शुरुआत, स्पेशली जो आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर आप 100 सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आपको छोटी ही चढ़नी पड़ती है। और बिल्कुल सही कहा आपने। एंड अरविंद जी लिख रहे हैं, कहानियाँ हमेशा झूठी होती हैं, नानी की कहानी याद करो, सब लोग बात तो सही है लेकिन मेरी नानी कहानियाँ मुझे हमेशा हिस्ट्री की सुनाया करती थी, तो मेरी वाली तो असल होती थी, यानी कि हिस्ट्री का इंटरेस्ट जो मुझे इतना डेवलप है वो कहीं ना कहीं मेरी नानी की वजह से ही, वही मुझे इतिहास की पन्नों की ऐसी ऐसी दास्तान सुनाया करती थी जो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं थी, और उन्हीं की वजह से आज मुझे राजा रानी के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता होता है। इसके बाद सोनिया तिवारी हमारे साथ जुड़ी है, जो लिखनी हाय एवरीवन, हाय कैसी हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। अरविंद जी लिख रहे हैं, केवल बच्चों को डराने और सुलाने का यह तरीका था। जी नहीं, सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी कहानियों में बहुत इंटरेस्ट होता है, आपका दिमाग हमेशा कहानियों को पसंद करता है। एंड इसके बाद लगातार आप ही के मैसेजेस हैं। सोनिया तिवारी जी लिख रही हैं, हारुति मैम कैसी हो आप, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं सोनिया जी। सुजीत जी लिख रहे हैं, आपके एक्सप्लेन करने का अंदाज ही आपकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, यही हम सब श्रोताओं को आपके साथ पूरे प्रोग्राम से जोड़े रखती है। कीप इट अप उन्नति जी, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। एंड इसके बाद सोनिया जी लिख रही हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। एंड इसके बाद अगेन आप ही सबके बहुत सारे मैसेजेस के बीच में एक और मैसेज ढूंढते हुए हम पहुंच गए हैं अपनी शमा जी के पास, जिनका स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोडा में। नाजिया जी लिख रही हैं, ये तो हमारी रॉकिंग उन्नति मैम है। जी हाँ, आज सुबह सुबह हमारे दर्शन हो गए और हमको आपके दर्शन हो गए। इसी के साथ आई चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। लखनऊ से शमा जी लिख रही हैं, उन्नति मैम का जलवा है सोशल मीडिया पर देखिए। हमको ऐसे शर्म आ जाती है, ऐसी बातें करती हैं आप तो। फिलहाल आइए चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। कहानियां बहुत अच्छी लगती है उन्नति मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बहुत खूब उन्नति मैम लिखा है नाजिया अंसारी जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। सविता जी हमारे साथ वापस जुड़ी हैं, लिख रही हैं, उस माता को सलाम। जी भैया, हमने आपको बताया था एक ऐसी माँ के बारे में जिन्होंने 1400 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, 300 से ज्यादा उनके पास दामाद और बहू हो चुकी हैं और अभी तक वो बच्चों का ख्याल रखती हैं। सिंधुताई नाम है उनका। सोनिया जी ने इसके बाद मैसेज किया है कि बाय बाय, आपको जाना है क्योंकि भैया आज त्यौहार है और हमारी घर की जितनी भी महिलाएं हैं वो सब इस त्यौहार में जुटी हुई हैं, और हम जब कल रास्ते से निकल रहे थे तब हमको खबर पता चली है कि आज त्यौहार है, अदरवाइज हमको पता भी नहीं चलता। एंड इसके बाद सविता जी का ही मैसेज है, हार नहीं मानती मैं मैम, थोड़ा थोड़ा तो आप भी जानती हैं। जी हाँ, मैं आपको जानती हूँ और यही आपकी सबसे खूबसूरत बात है कि ना आप अपना अंदाज खोती हैं, ना आप खुद को खोती हैं और ना आप कभी हार मानती हैं, और इसीलिए मैं आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड रहती हूँ। आप हमेशा हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में मुस्कुराती रहती हैं और खिलखिलाती रहती हैं, और दुआ भी करेंगे कि आप हमेशा ऐसी ही रहे, आपकी ये प्यारी सी खूबसूरत सी हंसी यूं ही बरकरार रहे। एंड इसके बाद इसके बाद फिर हमें मिला है उस्मान खान जी का मैसेज, गुड मॉर्निंग आज मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी इस्तकबाल करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। एंड इसके बाद मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, मैं मोहम्मद कलीम कोंडा, आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। उस्मान खान जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस जानकारी आज मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सुजीत जी ने लिखा है, क्या बात है, आपकी सभी स्टोरी काबिल तारीफ है, रही शो की बात तो क्या कहें, कैसा लगा, जब से आप आई हो लगातार सुन रहा हूँ, अब आप खुद ही समझ लो शो कैसा लग रहा है मुझे, बाकी लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया। शमा जी ने लिखा है, गुड मॉर्निंग अति मैम जी, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड सनी पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनका मॉर्निंग में ही आफ्टरनून हो गया है, और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग टू यू। हालांकि आज सुबह की आवाज़ सुन के आप ये मत समझिएगा कि कॉल ट्यून गुना चल रहा है, बिकॉज अभी भी घड़ी में सिर्फ 10:55 हो रहे हैं मेरे दोस्त फिलहाल के लिए। अब क्योंकि घड़ी ने इशारा कर दिया कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो आपसे चाहूंगी इजाजत। मुलाकात होगी आपसे अपने कॉल ट्यून वाले गोंडा शो में, जिसमें आपकी फरमाइशें होती हैं, लेकिन तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहिए आपका अपना रेडियो 99.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर अगला कार्यक्रम गांव की गूंज। और छोड़कर जाती हूँ आपको हनी सिंह की आवाज में अंग्रेजी बीट पर गाने के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर A सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9286-9976-9216-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: अरे समता, क्या हुआ, क्यों इतना खांस रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, और ये थर्मामीटर ये क्यों रखा है? तुम्हें बुखार है क्या? अरे यार, कुछ तो बोलो सही।
7: हाँ दीदी, राधे राधे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल रात से मेरे गले में भी दर्द हो रहा है और खांसी भी आ रही है, लग रहा है थोड़ा बुखार भी है।
8: किरण दी, मैंने समता दीदी को काढ़ा भी पिलाया है और दवा भी दी है, अब शायद उनको आराम हो गया होगा।
9: अरे नन्ही।

0: अरे दीदी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे भी छींक आ रही है रात से और गले में दर्द भी है।
1: काढ़ा पियो काढ़ा। किरण दी, आज गांव नहीं चलेंगी क्या?
2: चलूंगी चलूंगी बाबा, पर समता और शिवानी को यहीं छोड़ दूंगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो परेशान भी हो जाएंगी।
3: नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी गांव। मैंने दवा भी खा ली है और काढ़ा भी पी लिया है।
4: देखा मेरे बनाए हुए काढ़े का असर? किरण दी, जरा आप इन लोग को बता दीजिए मैंने काढ़े में क्या क्या डाला है।

0: जया ने काढ़े में अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और अमरूद की पत्ती, सहजन की पत्ती, तुलसी की पत्ती, गुड़ और हल्दी, ये सारी चीजें पानी में डालकर थोड़ी देर पकाया है।
1: अरे वाह, अब तो मैं भी बनाकर अपनी नानी को पिलाऊंगी, उन्हें बहुत खांसी आ रही है।
2: हाँ हाँ रचना, क्यों नहीं, उनको भी दे दो। अरे किरण दी, एक बात बोलूं, आप क्यों ना यही गांव में ही छप्पर के नीचे किरण आयुर्वेदिक केंद्र खोल लीजिए, जिसमें आप अनेक बीमारियों से ठीक होने की घरेलू जानकारी और दवा दोनों ही दीजिए।
3: सवर रंग मोर पिया नीको न लागे। हे सवर

0: हाँ किरण दी, इससे गांव वालों को कुछ घरेलू दवाइयों के बारे में जानकारी भी होगी।
1: हाँ हाँ, और तो और रोज शहर भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
2: हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ कि तुम सब मिलकर मेरा शहर से पत्ता काटने में लगी हुई हो।
3: तो क्या दिक्कत है किरण दी, हम सब एक हफ्ते आकर आपसे मिल जाया करेंगे, क्यों जया?
0: हाँ बिल्कुल समता दी, क्यों नहीं।

0: बताइए किरण दी, आप अपना केंद्र कब खोल रही हैं?
1: हाँ हाँ शिवानी, बिल्कुल अपने नाम से ही खोलेंगे, किरण आयुर्वेदिक केंद्र। लेकिन थोड़ा सोच विचार भी कर लेने दो भाई।
2: हाँ हाँ, आप खूब सोच विचार कर लीजिए, आपको सोचने का पूरा मौका दिया जा रहा है। पर आपको कुछ तो करना होगा गांव वालों के लिए, क्यों दी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी, जो मुझे आता है और जो अपने लिए करती हूँ। देखो, घरेलू सामानों से अपनी परेशानी को कम किया जा सकता है। हमारे रसोई घर में तमाम ऐसे मसाले होते हैं जिनको हम सब्जी वगैरह में तो प्रयोग करते हैं, पर दरअसल सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करें ये पता नहीं होता है।
3: बिल्कुल सही कह रही हैं दी, अगर उसे हम सिस्टमैटिक ढंग से इस्तेमाल करें तो उसका कुछ और भी फायदा हो सकता है। तो अब आप बताइए कि हम लोग किस मसाले को कैसे इस्तेमाल करें, क्यों समता दी?

0: बताती हूँ, सुनो सब लोग गौर से। अरे अरे, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, बहुत सारी हमारी काकी जी आ गई हैं।
1: का बताई बहन जी, हमारे लोग तो बहुत परेशान हैं। पेटवा तो हमेशा बगद जात है और खोखी दिन रात आवत।
2: काकी जी इधर आके बैठ जाइए, काका आप भी आइए, आइए आइए, इधर बहुत जगह है, बहुत सारे लोग बैठे हैं इधर।
3: हाँ दी, बताइए क्या बताने जा रही हैं आप।
0: तो सुनिए, सब लोग आराम से पहले बैठ जाइए। देखिए, मेथी का उपयोग आप सभी लोग सब्जी बनाते समय पहले डालती हैं, फिर सब्जी छौंक लगाती हैं। तो वही मेथी दाना अगर रात में सोने से पहले 25 से 30 दाना फाँक कर पानी पी लीजिए, इससे आपका पेट तो साफ ही होगा और आपको ताकत भी मिलेगी।
1: हाँ बहने, हमार तो पेटवा नाय साफ होत है, दिनम कई बार सिवाने जायत है, का करी। अब सोवे से पहले मेथी खाए लेवा कर, अब तब देखी शायद फायदा कई जाए।
4: भाभी खोलो तिजोरी का ताला, आज जन्मा भतीजा हमारा।

0: किरण दी, एक बात मैं भी बता दूं कि अगर आपको सर्दी खांसी परेशान कर रही है, बार बार सर्दी जुखाम हो जाता है, तो अदरक घिसकर उसका रस निकाल लें और एक चम्मच शहद मिला लें और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर मिलाकर सुबह शाम उसे चाट लें तो बार बार सर्दी जुखाम नहीं होगा।
1: वाह संता दी, अब आप भी चप्पर छा लीजिए गाँव में।
0: अरे नई शिवानी, ये सब हमने किरण दी से ही सीखा है और अपने घर में इसे अप्लाई भी कर रही हूँ और इसका ज्यादा बहुत ज्यादा असर भी हुआ है।
2: अरे वाह समता दी, वेरी गुड।
1: बहिनी, अब हम सब है वही करबे जो नाप कही हो। बताओ, दिना रतिया चोकोम रहित है, लेकिन इन आय जानित है कि कौन मसलवा कब खाई की इतना फायदा कही जाए।
3: काकी जी, आप जब सुबह टहलने जाती है तो ब्रश करके जाती है ना, तो रास्ते में अगर अमरूद का पेड़ मिल जाए तो दो पत्ती अमरूद की, दो पत्ती पीपल की, थोड़ी सी करी पत्ती, सब मिलाकर कूच कूच कर खा लें। फिर घर आकर आधा ग्लास गुनगुना पानी पी लिया करिए। ऐसा 15 दिन लगातार करिए, फिर देखिए

0: किरण दी, ये तो हम लोग भी कर सकते हैं ना?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सबके लिए है, चाहे कोई गांव का रहने वाला हो या शहर का।
0: ओके ओके। किरण दी, घर भी चलना है, मुझे शादी में जाना है, जल्दी चलिए ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल जया, शीघ्र ही चलती हूँ।
2: बहने, और कुछ हो बताए दो हमें सबका।
3: काकी, इस बार जितना किरण दी ने बताया है उतना करिए, फिर अगले शिफ्ट में हम लोग आएंगे और बहुत कुछ बताया जाएगा।
2: ठीक है दीदी, चलिए, आपका ड्राइवर गाड़ी में हॉर्न बजा रहा है, चलिए आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ।
1: तो चलो चलते हैं, सभी को राम राम, राम।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही पसंदीदा शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए करते हैं शो की शुरुआत, करेंगे बहुत सारी बात, क्योंकि आज का जो दिन हमारा है उसे हमने एक टैग दिया हुआ है। आज का हमारा दिन है कि आज हम बात करते हैं हमारे यूथ्स, यानी कि यूथ की हेल्थ को लेकर। तो आज भी हमारे पास हेल्थ टॉपिक्स तो हैं, हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि किस तरीके से हम हमारी हेल्थ को अच्छा रखें। सो बताते हैं, थोड़ा सा करिए इंतज़ार, क्योंकि इंतज़ार का जो सब्र कहते हैं ना, कि सब्र का जो फल होता है वो बेहद मीठा होता है। तो इससे पहले कि हम चलें और हेल्थ पर बात करें, आज कुछ स्पेशल डेज भी हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए करते हैं चार लाइन से शुरुआत और बताते हैं कि क्या होने वाला है आज का स्पेशल डे, आप भी गेस करिए। तो आज मेरे पास कुछ लाइन्स हैं जो आपको ये गेस करवाएंगी कि आज का दिन स्पेशल क्यों है। सो डिजिटल के इस दौर में चलो फिर वही अंदाज अपनाते हैं, स्मार्टफोन को रख परे, कागज पर जज्बात सजाते हैं, स्याही से लिखकर दिल की बात, अपनों को भेजें पैगाम, खत की उस भीनी खुशबू से पुरानी यादें जगाते हैं। बिल्कुल, अब आप सोच रहे होंगे कि आज खत की बातें क्यों हो रही हैं। तो आज खत की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज है विश्व पत्र लेखन दिवस, यानी कि वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो डिजिटल दुनिया में भी हाथों से, जो एक पहले होता था ना कि हाथों से चिट्ठियां जो लिखी जाती थी, उस लिखने की कला को आज के दिन जीवित करता है, उसे मनाता है, और कहीं ना कहीं ये हमें याद दिलाता है कि कितनी भी जो हमारी लाइफ है वो डिजिटल क्यों ना हो जाए, पर कहीं ना कहीं जो खुशबू, जो प्यार, जो लगाव आपकी हाथों से लिखी हुई चिट्ठी में होता है, हमारी कागज़ पर उतारी हुई बातों में होता है, वो किसी और में कहाँ, वैसा एक प्यार, वैसा एक लगाव कहीं नहीं मिलता। इसलिए आज के दिन इस दिन को मनाया जाता है। और साथ ही साथ आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है जो कि है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। भारत में हर साल 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है, जिसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सही खान पान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही सुना आपने कि ये सप्ताह इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारी जो हेल्थ है ना, हम कहीं ना कहीं उसके प्रति अवेयर हों, ये जाने कि हमें क्या खाना पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हम सब कुछ तो सोचते हैं, सब कुछ तो करते हैं, बट अपनी हेल्थ को लेकर के कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एक ऐसा रूटीन अपनाते हैं जो बिल्कुल सही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को तो हमें अच्छा रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो आइए इसी बहुत ही प्यारी सी बात के साथ में करते हैं आपके अपने बहुत ही प्यारे वाले शो की शुरुआत, जो कि है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिक। तो शुरुआत तो भाई हो चुकी है जबरदस्त, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और इंजॉय करते हैं और मनाते हैं दोनों ही टॉपिक्स के साथ हमारे आज के दिन को मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव में मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: सो लिसनर्स, वापस आ गए हैं हम इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के बाद में फिर से आपसे बातें करने के लिए। सो आप सभी एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि आखिर आज का टॉपिक है क्या। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारी यूथ से, और कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ से भी और फिजिकल हेल्थ से भी, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने देखा होगा ना कि आजकल हमारे यूथ्स जो हैं उनकी मेंटल हेल्थ कैसी हो गई है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो चाहे वो टीनेजर हो या फिर उससे ज़्यादा एज के हों, कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा चीखना, चिल्लाना, अग्रेशन दिखाना, ये सब इसी की वजह से होता है। तो आज हमारे पास कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि हमारे पास है कि भरपूर पानी ज़रूर पीना चाहिए, यानी कि दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, ताकि जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं ना वो बाहर निकल जाएं। और दूसरी चीज़ होती है कि कभी भी ना भूलें प्रॉपर डाइट लेना। प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, नट्स, अखरोट, और हाँ, विटामिन सी से युक्त चीज़ें जैसे कि नींबू, संतरा, ये सारी चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए। हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के साथ साथ हमारी बॉडी को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा फिट डाइट लीजिए। दूसरा आता है कि भाई आजकल के यूथ्स को जो बहुत पसंद है ना खाने में, उससे दूरी रखनी चाहिए, यानी कि जंक फूड से दूरी रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं खानी चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। दूसरी चीज़ आती है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी अच्छी रहती है, यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार हम करते क्या हैं कि सब कुछ तो करते हैं बट बस अपनी मेंटल हेल्थ को ही हम प्रॉपर वे में इग्नोर करते हैं, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। सो मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं ख़राब करती हैं। यानी कि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो इससे भी आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर नींद लें और अपनी मेंटल हेल्थ का कहीं ना कहीं ख्याल रखें। तो आइए लिसनर्स, इसी बहुत ही प्यारी सी बातों के साथ चलते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग, इन्जॉय करते हैं। आती हूँ इस सॉन्ग के उस पार लेकर के एक और टॉपिक जो कि होने वाला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो सुनेंगे, इन्जॉय करेंगे, समझेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं, सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ गई हूँ मैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। भाई अभी तक तो हमने कर ली बहुत सारी बातें, मतलब बता दिया कि किस तरीके से यूथ्स हमारे जो हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या होने वाला है, चलिए बताते हैं कि नेक्स्ट वाला टॉपिक है क्या। हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो ये है कि किसी भी जॉब में आप जाएंगे या कहीं भी आप जाएंगे तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि आजकल यूथ्स में क्या हो रहा है ना, कि उनकी मेंटल हेल्थ में जो सबसे मेन प्रॉब्लम देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि वो दूसरों को सुनना नहीं चाहते हैं, बस कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी कहना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी बात होती है जो कि कहीं ना कहीं हमें परेशान करती है, क्योंकि कम्युनिकेट करना है, अगर आपको किसी से बात करनी है तो उसके लिए आपको सुनना होगा, सामने वाले को समझना होगा। सो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सामने वाले की बात जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, तो उसके लिए और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो दोनों के लिए, तो उसके लिए सुनना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ऐसे कहते हैं ना कि डिग्रियों से नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन आपके करियर में तरक्की भावनाओं को समझने और आपके अच्छे एटीट्यूड से, यानी कि अच्छे बिहेवियर से कहीं ना कहीं मिलती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि केवल बोलने के बजाय दूसरे की बातों को ध्यान से सुने और समझें भी। बिल्कुल, दूसरे की बातों को सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं हम कैसे सुने, हमें तो बस अपनी बात कहने की जल्दी होती है। तो इसके लिए टेक्निक ये है कि जब भी कोई आपसे बात करे तो शांत होकर उसकी बातों को सुने, समझें और फिर ही अपनी आप प्रतिक्रिया दीजिए, जैसा भी है उस बात को कहिए। और हाँ, दूसरी चीज़ होती है कि नेगेटिविटी को हमें कहीं ना कहीं स्वीकार करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी नेगेटिव साइड, जब हमें कोई कुछ कहता है, जैसे किसी ने आपसे कहा कि तुम्हारी ये गलती है, तुमने ये गलती की, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हमारी गलतियों को मानना ही नहीं चाहते, हम कहते हैं नहीं नहीं मैंने कोई गलती नहीं की। और फिर क्या होता है कि जब आप अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं तभी हम बहस करते हैं, और वो बहस धीरे धीरे बढ़ते हुए अग्रेशन में बदलती है, और फिर हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी अगर गलती है तो उसे एक्सेप्ट करें, और किसी की बातों के ऊपर अपनी बातों को रखने की कोशिश कभी ना करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ है कि जब भी अगर आप जॉब में हैं या वैसे भी आपके घर में भी आपका बड़ा कोई आपसे कुछ कहता है तो उस चीज़ को समझिए। तो आज ये बताने की वजह यह थी कि बोलने के बजाय सुनने और समझने की कोशिश करने से हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल आती है, हम समझते हैं कि किस तरह हमें चीज़ों को कम्युनिकेट करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए लिसनर्स, चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। बस यू गए और यू आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे

0: बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद प्यारा वाला शो ज्ञान स्थली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो भाई, अभी तक हमने बात की किस तरह से यूथ की मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, कौन कौन से आज दिन हैं जो कि स्पेशल हैं उस पर बात की, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी। अब बात आती है कि अभी तक हमने ये सिखा दिया आपको, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को, कि भाई किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और आप किस तरह अपनी जॉब में अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब करेंगे, ऐसा सोचिए कि मतलब अगर हम जॉब करते हैं और हमारे पास पैसे होते हैं तो फिर कहते हैं ना कि हम ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं, ज़्यादा खर्चा करते हैं। और कहते हैं ना, हाथों में जब अपनी मतलब जब आप जॉब करते हैं और आपको अपने पैसे मिलते हैं तो कुछ ज़्यादा ही हम खर्च करते हैं ना। लेकिन कहते हैं ना, ज़्यादा खर्चे नहीं करने चाहिए, थोड़ा सा बचाओ भी भाई। मम्मी कहती है ना, सब खर्च कर दो, तुम्हारे हाथ में तो पैसे मतलब खर्चा। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी मम्मी को एहसास दिलाइए कि नहीं नहीं मम्मी, हम भी समझदार हैं और हम भी पैसे बचाना जानते हैं, आप ऐसे मत समझिए। देखिए, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी पॉकेट मनी से बचा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, यानी कि पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और आपको सैलरी मिलती है, तो आप अपनी सैलरी से बचा सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि बचा कैसे सकते हैं। भाई, बचाने के लिए तो कुछ दिमाग लड़ाना पड़ेगा, कुछ टिप्स टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। तो चलिए हम बता देते हैं, आपका ये काम भी कर देते हैं, आपको टिप्स बता देते हैं कि किस तरीके से आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है कि वो ये है, पॉइंट जो है हमारे पास, कि हमेशा जब भी आपके पास सैलरी आती है या आपको पॉकेट मनी भी मिलती है, तो उसमें से आपको ये देखना है कि 50% आपको अपनी ज़रूरतों पे खर्च करना है, यानी कि 50% आपने जो भी अपने काम थे उन पे खर्च किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको अपनी सैलरी में से 30% या 20% बचाना भी है, बचाना बहुत ज़रूरी होता है। अब बचाएंगे कैसे, क्योंकि अगर हाथों में रहेगा तो खर्च हो जाएगा। तो उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं, या फिर कई बार होता है ना कि जब हम छोटे थे तो हम गुल्लक में पैसे रखा करते थे, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब तो ये हो गया है कि भाई डिजिटल है, सब कुछ डिजिटली होता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने दूसरे बैंक अकाउंट पे। यानी कि हमारे पास दो बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, एक जो हम डेली में यूज़ करते हैं और एक होना चाहिए आपका बचत खाता, जिसमें कि आप अपने बचाए हुए पैसों को धीरे धीरे सेव कर सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे सेव करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे। दूसरा आता है कि कहीं ना कहीं जब बात आती है बचाने की, तो हम ये सोचते हैं कि सारी तो चीज़ें खर्च हो जाती हैं, हमें लगता है कि सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं, क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए और कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप ये देखें कि आपको किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। जिन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हम उन्हीं पर खर्च करें, बाकी पर बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ आती है कि क्रेडिट कार्ड। भाई, कई बार होता है ना कि जब हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। जब भी आप शॉपिंग करने जाइए, मॉल में कहीं भी जाइए, तो कैश पैसे ले जाइए। कैश पैसों से क्या होता है ना कि हम उतना ही खर्च करते हैं जितने की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हमारे पास कार्ड होता है तो उसकी तो भाई लिमिट होती है, तो हम सोचते हैं चलो कार्ड तो है ही ना बगल में, अगर कैश पैसे कम भी पड़ गए तो चलो कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। उसमें कई बार हम उन चीज़ों को भी ले लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए बनिए समझदार, क्योंकि स्टूडेंट्स हों या हमारे यूथ्स हों बहुत समझदार होते हैं। सो ऐसा कहने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि भाई तुम समझदार नहीं हो, तुम्हें पैसों की समझ नहीं है। मम्मी से कहिए कि भाई मुझे बहुत समझ है। समझदार बनिए, और समझदार बनने के साथ साथ आइए चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग। मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार, क्योंकि अब हमारा टाइम भी हो गया आपको बाय करने का, लेकिन इस सॉन्ग के उस पार मिलते हैं और फिर आपको बाय करते हैं।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सो लिसनर्स, टाइम तो हो गया है, लेकिन चलते हैं एक प्यारे से मैजिकल वाली लाइन के साथ। आपसे बाय-बाय बोलते हैं। तो आज की हमारी जो मैजिकल लाइन है स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि मत कहो खराब है तकदीरें, खुद खींचो ना अपनी किस्मत की लकीरें। तो आज के लिए आप सभी के लिए यही मैसेज है कि कभी भी अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए, हमेशा अपनी किस्मत की जो लकीरें होती हैं उन्हें खुद खींचने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी प्यारे से मैसेज के साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, यानी कि अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को। फिर मिलती हूँ आपसे कल आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
3: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
2: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
3: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
2: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
4: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
5: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सेहत सही लाभ कई के नए एपिसोड में। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे।
6: अरे पहले आराम से बैठ तो जाओ, थोड़ा पानी पी लो। मगर आरजे दीदी, तुम्हें तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी बारिश और मुश्किल हालात में भी तुमने हमारे श्रोताओं से रूबरू होना नहीं छोड़ा।
5: अरे भाभी, यही तो हमारी सामुदायिक रेडियो की खासियत है, हम चाहे कैसी भी परिस्थिति हो अपने श्रोताओं को कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा उन्हें जानकारी और सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं।
6: बिल्कुल सही कहा। तो आज बताइए दीदी, आज किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे?
5: भाभी, आज इतनी बारिश और बाढ़ का माहौल है तो क्यों ना आज बाढ़ और उससे होने वाली बीमारियों पर ही बात की जाए। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, इसके साथ आती हैं कई तरह की फैलने वाली बीमारियाँ और साथ इन बीमारियों से बढ़ने वाले खर्चे, तो इसलिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है।
6: सही कहा दीदी, बाढ़ तो खैर बाढ़ है पर बाढ़ का पानी साफ नहीं होता, उसमें नालियों का गंदा पानी, कीचड़ और तरह तरह के कीटाणु भी मिल जाते हैं। यही गंदा पानी जब खाने पीने की चीजों या पीने के पानी में मिल जाता है तो लोगों को भी बहुत सी बीमारियां के लपेटे में ले लेती है। ऐसे में हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
5: हाँ, और जब पानी धीरे धीरे सूखता है तो जगह जगह गड्ढों में पानी जमा रह जाता है।
6: बिल्कुल, और वहीं सबसे तेज मच्छर पनपते हैं, फिर मच्छरों से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं दीदी।
5: जी भाभी, और आपने तो देखा ही होगा पिछले साल रामपुर गाँव में क्या हुआ था।
6: अरे कैसे भूल सकती हूँ, वहाँ बाढ़ आई थी दीदी, नालियों के गंदा पानी, खेतों की कीचड़ सब मिलकर कुएं और हैंडपंप तक चला गया था। लोग वही पानी पीने लगे, बस वहीं से बीमारियां फैल गई। यही हैजा का सबसे बड़ा कारण होता है, कई लोग बीमार पड़ गए। रमेश को गंदा पानी पीने से अचानक उल्टी दस्त होने लगा, बच्चा इतना कमजोर हो गया कि चल भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ बहुत घबरा गई, पहले तो सोचा कि घर पर ही कहीं इलाज कर ले, लेकिन हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई।
5: अच्छा भाभी, फिर क्या किया आपने?
6: रमेश को हम तुरंत गांव के हेल्थ सेंटर ले गए, डॉक्टर साहब ने जांच की और बोले रमेश को हैजा है, इस बीमारी से उसके शरीर का पानी बहुत कम हो गया था। डॉक्टर साहब ने उसे ORS का घोल पिलाया, दवा भी दी। अच्छा हुआ समय पर इलाज मिल गया, नहीं तो रमेश जल्दी ठीक ही नहीं हो पाता।
5: भाभी पता है आपको, बाढ़ के समय बहुत लोगों को पेट से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे दस्त, उल्टी और पेट दर्द। और ऐसा क्या होता है और इन सब से कैसे बचा जा सके?
6: बाढ़ के दौरान पानी गंदा तो हो जाता है, लोग वही पानी पी लेते हैं और उसी से खाना भी बनाते हैं दीदी। इससे पेट में इन्फेक्शन होता है, दस्त, उल्टी, पेट में मरोड़, शरीर में गड़बड़ी के लक्षण हैं।
5: तो भाभी प्राथमिक सावधानी क्या होनी चाहिए इसके लिए?
6: बचाव के लिए साफ पानी पीना चाहिए, ताज़ा खाना खाएं, हाथ धोना भी बहुत ज़रूरी है दीदी, खासकर खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ जरूर धोएं। अगर कोई ज्यादा बीमार लगे तो उसे डॉक्टर से अवश्य दिखाएं।
5: बिल्कुल भाभी, हैजा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है साफ पानी पीना और ताजा भोजन करना। वैसे आजकल गांव में बहुत लोग बुखार से भी परेशान हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि टाइफाइड फैल रहा है, आखिर ये टाइफाइड होता क्या है?
6: दीदी टाइफाइड बुखार साल्मोनेला नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका मुख्य कारण मल मुख मार्ग, यानी यह संक्रमण तब फैलता है जब दूषित भोजन या पानी के माध्यम से जीवाणु शरीर में पहुंच जाता है। यह दूषण संक्रमित व्यक्ति या बिना लक्षण वाले वाहक के मल से होता है। गंदगी, साफ पानी की कमी, बिना धोए फल सब्जियां या सड़क का खाना खाने से यह संक्रमण आमतौर पर फैलता है। खासकर बरसात या बाढ़ के बाद ये बीमारी तेजी से फैलती है दीदी।
5: अच्छा भाभी, तो इसके लक्षण कैसे पहचानेंगे?
6: इसके लक्षण बड़े साफ होते हैं, लगातार तेज बुखार आना, सिर दर्द, पेट में दर्द रहना, कमजोरी लगना, भूख ना लगना और कई बार उल्टी भी हो जाती है। ये सब दिखे तो समझ लीजिए कि टाइफाइड हो सकता है।
5: और बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए?
6: इस बीमारी से बचना है तो अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी दीदी।
5: अच्छा,
6: जैसे काम करके घर आने पर साबुन से हाथ धो लें, बच्चे खेल कर आए तो उनके हाथ पैर साफ करें, पानी चाहे कुएं का हो हैंडपंप का उबाल कर ही पिएं। कई बार साफ पानी दिखता है लेकिन अंदर की गंदगी नजर नहीं आती है।
5: सही कहा आपने।
6: खाना हमेशा ढककर रखें। बाढ़ के बाद तो ज्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हर तरफ कीटाणु फैले रहते हैं। अगर किसी को लगातार बुखार रहे, थकान लगे या पेट दर्द करे तो मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं दीदी।
5: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। दवा तो डॉक्टर देगा लेकिन समझदारी और सावधानी हमारे हाथ में है। तो सुन रहे हैं ना श्रोताओं, साफ सफाई से रहने से बीमारियां पास नहीं फटकेंगी।
6: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा दीदी।
5: भाभी, बाढ़ के बाद पड़ोस के गांव में कई लोग बुखार, थकान और पेट की शिकायत लेकर अस्पताल जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस है, ये बीमारी कैसे होती है भाभी?
6: हेपेटाइटिस ए और ई कोई साधारण बीमारी नहीं है दीदी, ये सीधे हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है। गंदे पानी, दूषित भोजन में मौजूद कीटाणु शरीर में जाकर लीवर को खराब कर देते हैं, यही हेपेटाइटिस का असली कारण है दीदी।
5: तो भाभी इसके लक्षण कैसे पहचानेंगे?
6: अगर किसी को लगातार थकान लगे, हल्का बुखार बना रहे, पेट भारी लगे और खासकर आंखें व पेशाब पीले रंग के दिखने लगे तो समझ लीजिए कि लीवर पर असर हो रहा है। ये हेपेटाइटिस के साफ संकेत हैं। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो हालत बहुत गंभीर हो सकती है दीदी।
5: अच्छा भाभी, क्या हमारे गांव में भी ऐसा कोई मामला हुआ है?
6: हाँ दीदी, पास के ही टोले में हन्नू काका के बेटे को बाढ़ के बाद यही दिक्कत हुई। उसे बार बार बुखार आ रहा था, शरीर में कमजोरी थी, धीरे धीरे उसकी आंखें पीली पड़ गई। पहले तो मामूली बुखार समझकर घर पर ही इलाज करने की कोशिश की गई थी लेकिन हालत बिगड़ती गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर साहब ने बताया कि मन्नू को हेपेटाइटिस ए है, समय पर इलाज मिला तो बच्चा बच गया, वरना मुश्किल हो सकती थी दीदी।
5: भाभी फिर तो आपको ये भी बताना चाहिए कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।
6: जी, सबसे पहले तो साफ पानी लीजिए। अगर किसी में ये लक्षण दिखे तो खुद इलाज करने की गलती कभी मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। याद रखिए कि देरी करना जानलेवा हो सकता है।
5: भाभी आपको पता है, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग बुखार और बदन दर्द की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये लेप्टोस्पाइरोसिस हो सकता है। लोग इसे आसान भाषा में जंगली बुखार भी कहते हैं। ये बीमारी कैसे होती है?
6: देखिए दीदी, ये बीमारी बाढ़ के गंदे पानी से फैलती है। उस पानी में जानवरों का मल मूत्र मिला होता है। अगर कोई गंदे पानी में जाता है और उसके शरीर पर कहीं चोट, खरोच, कटा फटा हिस्सा है, तो वहाँ से बीमारी अंदर चली जाती है, फिर बुखार, बदन दर्द जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
5: अच्छा भाभी, तो इसके लक्षण कैसे पहचानें?
6: इसके लक्षण बहुत साफ दिखते हैं। शुरुआत में तेज बुखार आता है, सिर में और मांसपेशियों में दर्द होता है, कई बार आंखें लाल भी हो जाती हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो जंगली बुखार लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है।
5: ओहो, इससे बचने का उपाय क्या है भाभी?
6: सबसे जरूरी है सावधानी दीदी। बाढ़ के पानी में नंगे पांव मत चलें। अगर जाना ही है तो रबड़ की चप्पल या बूट पहन कर जाएं। शरीर पर कहीं भी कट या चोट हो तो उसे अच्छी तरह से ढक कर रखिए। जंगली बुखार के लक्षण दिखे तो घर पर इलाज करने की जगह डॉक्टर के पास जरूर जाएं।
5: जी भाभी, बाढ़ के बाद गांव में जगह जगह पानी जमा हो गया है, मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, डर है कि कहीं डेंगू मलेरिया न फैल जाए।
6: देखिए, अब बाढ़ का पानी गड्ढों, पुराने डिब्बों, कूलर, टंकी में जमा रह जाता है
5: जी,
6: तो वहीं मच्छर अंडे देते हैं। ऐसे पानी में मच्छर बहुत जल्दी पनपते हैं। डेंगू और मलेरिया दोनों बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगू वाला मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है, जबकि मलेरिया वाला मच्छर रात में काटता है। ये बीमारी बहुत तकलीफ देह होती है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो जानलेवा भी साबित हो सकती है।
5: ओहो, तो भाभी इसके लक्षण कैसे पहचानेंगे?
6: डेंगू में तेज बुखार आता है दीदी, शरीर बहुत टूटता है, आँखों में दर्द और कई बार खून की कमी भी हो जाती है। मलेरिया में अचानक जोर की कपकपी लगती है, फिर तेज बुखार आता है, उसके बाद खूब पसीना छूटता है और मरीज बिल्कुल निढाल हो जाता है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो हालत और भी खराब हो सकती है।
5: भाभी, बचाव का सही तरीका क्या है इससे?
6: बचाव आसान है, थोड़ी सावधानी रखनी है। घर के आसपास पानी जमा होने मत दीजिए। टंकी, गमले, कूलर सब हफ्ते में एक बार साफ कीजिए। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, ढीले ढाले कपड़े पूरे दिन पहने रहिए ताकि मच्छर काट ही ना पाए।
5: अच्छा भाभी, आपने मच्छरों से तो बचाव के बारे में बता दिया, लेकिन बाढ़ के बाद गांव में कई लोग कह रहे हैं कि उनके शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकल रहे हैं, खुजली हो रही है, कुछ लोगों को तो फफोले भी पड़ गए हैं। क्या ये सब त्वचा की बीमारी है?
6: बिल्कुल, जब बाढ़ आती है तो कई लोग गंदे पानी में चलते हैं। उस पानी में कीचड़, नालियों का गंदा पानी और जानवरों का मलमूत्र तक मिला होता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी के हाथ या पैर पर कट या घाव है तो और वो गंदे पानी में चला जाए तो कीटाणु सीधे अंदर घुस जाते हैं, वहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है, फिर त्वचा पर तरह तरह के रोग हो जाते हैं।
5: ओह, तो इसके लक्षण क्या क्या हैं भाभी?
6: शुरुआत में तो हल्की सी खुजली होती है, फिर धीरे धीरे लाल दाने निकल आते हैं। अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया है तो फफोले पड़ जाते हैं, उससे पानी भी निकलने लगता है। कई बार जलन और दर्द इतना बढ़ जाता है कि आदमी चैन से बैठ ही नहीं पाता। अगर ध्यान ना दिया जाए ये शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाते हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए।
5: बिल्कुल सही कहा आपने भाभी की, लापरवाही तो बिल्कुल बरतने लायक नहीं है, लेकिन ये भी बता दीजिए कि इससे बचाव कैसे करें?
6: दीदी, सबसे पहले तो जितना हो सके गंदे पानी से बचिए। अगर बाहर जाना ही पड़े तो नंगे पांव मत जाइए। रबर की चप्पल या बूट पहन लीजिए। अगर गलती से भीग जाए तो आकर साबुन से हाथ पैर धो लीजिए। यदि खुजली, लाल चकत्ते या फफोले दिखें तो घरेलू नुस्खों में वक्त मत गवाइए, डॉक्टर को दिखाइए, तभी सही इलाज होगा।
5: अच्छा भाभी, बाढ़ के समय कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्या ये बीमारी का संकेत?
6: जी बिल्कुल दीदी, बाढ़ के दौरान जब लोग एक जगह जैसे स्कूल, पंचायत भवन में इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है। अगर किसी को खांसी, जुखाम या बुखार है तो बीमारी दूसरों तक भी पहुंच जाती है। ऊपर से गीले कपड़े, लगातार नमी और चारों तरफ गंदगी, ये सब फेफड़ों पर बुरा असर डालते हैं। इसी वजह से सांस की दिक्कतें बढ़ जाती है और श्वसन संक्रमण फैलने लगता है।
5: इसके लक्षण क्या होते हैं भाभी?
6: देखिए इसके लक्षण भी साफ हैं। अगर किसी को बार बार खांसी हो रही है, सांस में तकलीफ है, सीने में भारीपन लग रहा है या बुखार भी आ रहा है तो समझ लीजिए मामला हल्का नहीं है।
5: और इससे बचने का सही तरीका?
6: सबसे पहले तो साफ सफाई रखिए दीदी, गंदे और गीले कपड़े तुरंत बदल लीजिए, जहाँ रह रहे हो वहाँ खिड़की दरवाजे खोलकर हवा का रास्ता बनाइए, अगर भीड़ में हो तो मास्क जरूर पहनिए, खासकर जिनको खांसी जुखाम है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़ा पहनाइए, किसी को सांस लेने में जरा भी दिक्कत लगे तो डॉक्टर को अवश्य दिखाइए।
5: जी भाभी बिल्कुल सही कहा आपने, और मैंने सुना है कि बाढ़ के समय लोग सिर्फ पानी से नहीं कई और खतरों से भी जूझते हैं, कई बार लोग गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं या फिर किसी जहरीले जीव के काटने से बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे हालात में क्या करना चाहिए?
6: देखिए दीदी, बाढ़ का पानी बाहर से चाहे जितना शांत दिखे अंदर से उतना ही खतरनाक होता है
5: जी।
6: इसमें गड्ढे होते हैं, टूटी हुई तारे हो सकती है, फिसलन होती है और तेज बहाव से आदमी गिर भी सकता है। सबसे बड़ा डर तो जहरीले जीवों जैसे सांप, बिच्छू या कीड़े मकोड़ों का है, ये सब पानी के साथ बहकर घरों तक आ जाते हैं।
5: अच्छा भाभी, अगर किसी को सांप या बिच्छू काट ले तो कैसे पहचानेंगे कि ये सांप का या बिच्छू का काटा है?
6: सांप या बिच्छू काटने के साफ साफ लक्षण दिखते हैं दीदी, जैसे काटे गए हिस्से में तेज जलन, सूजन, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना और कई बार तो बेहोशी भी आ जाती है। अगर सांप जहरीला हो तो काटी हुई जगह नीली या काली भी पड़ सकती है, ऐसे हालात में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है।
5: सही कहा भाभी आपने, तो फिर भाभी ऐसे वक्त में सबसे पहले क्या करना चाहिए?
6: सबसे पहले तो घबराइए मत दीदी।
5: अच्छा,
6: घबराहट में ही लोग गलती कर बैठते हैं, काटे गए हिस्से को हिलाइए मत, हिलने से जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाइए, देसी इलाज, झाड़ फूक या नीम हकीम पर समय बिल्कुल मत गवाइए। जितने जल्दी डॉक्टर तक पहुंचेंगे उतने जल्दी इलाज होगा। और हाँ, बचाव के लिए आप कुछ बातें जरूर कीजिए, जैसे बाढ़ के पानी में नंगे पाँव मत चलिए, रबड़ की चप्पल या बूट पहन लीजिए, रात को सोते वक्त दरवाजे खिड़कियां बंद रखिए, घर के कोनों और बिस्तरों के नीचे सफाई जरूर कीजिए ताकि सांप बिच्छू छिप ना सके।
5: तो दोस्तों आपने सुना कि बाढ़ सिर्फ पानी ही नहीं कई खतरनाक बीमारियां भी लाती हैं। लेकिन अगर हम सतर्क रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें और समय पर इलाज करवाएं तो इन खतरों से बचा जा सकता है। पर जाने से पहले हम शपथ लेना नहीं भूलेंगे, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
6: अपने और अपने परिवार के
5: स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
6: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे
5: और अपने परिवार को भी
6: इसके लिए प्रेरित करेंगे।
5: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
6: तभी भारत समृद्ध बनेगा।
5: सेहत सही
6: तो लाभ कई।
5: श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई यही समाप्त होता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे सेहत संबंधित किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।
2: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। और इसका असर सालों तक रह सकता है।
3: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
2: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
3: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
2: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
4: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260-981-976, 9860-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप

0: हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
1: तो सुनना ना भूले 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
0: सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज हमारे फिर से हैं संध्या, क्योंकि आज भी अंशिका हमारे साथ नहीं है। बट कोई बात नहीं, जैसा कि कल हमारा शो हुआ था तो आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आए थे और काफी लोगों को मजा भी आया था, क्योंकि नई सहेली जब आती है तो एग्जैक्टली सबकी नई नई बातें होती हैं, नया अंदाज होता है। तो उसी अंदाज को हम आज फिर से लेकर के आए आपसे मिलने के लिए आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली। और सुन सहेली में मैं हूँ आपकी आज समता और साथ में हमारे हैं आज संध्या। तो आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम संध्या से बोलेंगे कि आए और अपना परिचय दें एंड साथ ही साथ में उन आप सभी का वेलकम भी करें।
5: हेलो मैम, हेलो लिसनर्स, मैं हूँ संध्या। थैंक यू मैम मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और मैम कैसी हैं आप?
0: बढ़िया। कल कैसा लगा आपको पहले मुझे ये बताएं।
5: मैम बहुत अच्छा लगा।
0: मतलब कैसे फील हुआ कि हाँ हम एक शो कर रहे हैं और मतलब सुन सहेली में हम बैठ करके बैठे हुए हैं साथ में, तो आपको कैसा लगा?
5: मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा।
0: मेरे साथ अच्छा लगा, डर तो नहीं लगा?
5: नहीं मैम, थोड़ा बहुत लगा था लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है।
0: ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम सेक्शन को। जैसा कि आप सभी को पता है
5: जी,
0: हमारा जो प्रोग्राम होता है उसकी सबसे पहली औपचारिकता क्या होती है? हमारी प्यारी सी
5: पोयम।
0: तो लेकिन एक साथ एक फ्रेम में हम शुभ दोपहरिया बोलेंगे, तो पहले आप बोल दीजिए शुभ दोपहरिया, ताकि फिर हमारा, क्योंकि ट्विनिंग मैच अभी नहीं हो रही है जिसकी वजह से फिर हमारे लिसनर्स सोचते हैं कि अरे संध्या पहले बोल गई, आज समता ने बाद में बोला।
5: okay,
0: तो पहले संध्या बोलेंगे आपको शुभ दोपहर, फिर मैं आपको बोलूंगी
5: शुभ दोपहर या लिसनर्स।
0: तो आप सभी को एक ही फ्रेम में अंशिका और हम, यानी कि अंशिका आज है नहीं लेकिन उसकी तरफ से भी दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में बोलेंगे शुभ दोपहरिया। और शुभ दोपहरिया आप सभी को, क्योंकि सुबह मौसम कुछ और था, अभी कुछ और है और शाम को कुछ और हो रहा है, क्योंकि मौसम ने ली है अंगड़ाई, यानी फिर से मौसम और कभी बारिश हो रही है तो कभी कुछ हो रहा है, तो ये वाला मौसम जो है ना, ये चलता फिरता वाला मौसम।
5: मैम अंगड़ाई से आप बोली तो मुझे भी अंगड़ाई आने लगी।
0: अंगड़ाई आने लगी ना?
5: Yes,
0: ये मौसम ऐसा है ना, ये टाइमिंग ऐसी होती है संध्या, कि इस समय ना अगर आप कुछ भी नहीं खाओगे ना, बस आप शांति में बैठे रहोगे ना, तब भी आपको नींद आएगी।
5: जी मैम,
0: मतलब ये सभी के साथ हो रहा है, ये थोड़ा सा आलस वाला होता है
5: मैम, कहीं ना कहीं इसकी वजह से हल्का बॉडी पेन भी बना रहा है।
0: बॉडी पेन बना हुआ क्योंकि मौसम ऐसा है ना, अभी किसी समय बहुत तेज धूप हो जा रही है, कभी किसी समय बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, फिर फैन बंद करने पड़ रहे हैं, तो ये जो मौसम है ये कहीं ना कहीं अंदर हमारी बॉडी में जैसे कहते हैं थकावट और हरारत जो है ये बैठ सी गई है, तो इसी वजह से कभी बॉडी आपको गर्म लगेगी, कभी बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, तो ये मौसम का फितूर है, ये आता
5: है। मैम इसमें क्या करें, कोई पेन किलर लें या फिर नॉर्मल?
0: पेन किलर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ठंडा पानी नहीं पीना है इस मौसम में, ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, साथ ही साथ में थोड़ा सा अवॉइड करना है कि हम एसी से थोड़ा बच सके, पर वो नहीं हो पाता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि लगता है कि यार गर्मी से जब पसीना बहुत आ रहा है तो हम लोग कूलर एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि वायरल फीवर है, अंदर फीवर जो बॉडी में रह जा रहा है, तो कारण मेन यही हो रहा है।
5: थैंक यू मैम हमें इतना एडवाइस देने के लिए, क्योंकि हम लोग ना थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, और ये जो बताइए आप कि कोल्ड ड्रिंक ना लो एसी वाला, तो अब थोड़ा समझ गए हैं।
0: चलो तो चले आज की पोयम को स्टार्ट करें।
5: बिल्कुल मैम।
0: चलिए, तो आज है हमारा वेनसडे, आप सभी को पता है

0: लेकर के आते हैं नारी सशक्तिकरण पर, यानी कि आज का दिन पूरा समर्पित करते हैं हम विमेन्स सेंट्रिक प्रोग्राम को। वैसे भी सुन सहेली हमारा जो प्रोग्राम है संध्या, तो ये पूरा हम लोग एक विमेन पे ही लेते हैं, मतलब महिलाओं को ही समर्पित है ये पूरा प्रोग्राम। लेकिन आज के दिन कुछ खासम खास हम लेकर के आते हैं महिलाओं के लिए।
1: क्या मैम?
0: वो अभी बारी बारी आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी सबसे पहले आइए नारी शक्ति एक नई उड़ान, ये हमारा टॉपिक है आज की पोयम का। नारी है शक्ति, नारी है सम्मान, नारी है शक्ति, नारी है सम्मान, उनके हौसलों से ऊंचा है आसमान। ममता की मूरत साहस की पहचान, हर रिश्ते को देती है अपना मान। मुश्किल राहों में भी कदम बढ़ाती है, गिरकर फिर उठती और मुस्कुराती है। अपने सपनों को देती है नई उड़ान, मेहनत से बनाती है अपनी पहचान। कभी बेटी बनकर घर को महकाती है, कभी बेटी बनकर घर को महकाती है, कभी बहन बनकर खुशियां लाती है। माँ बनकर जीवन को संस्कार देती है, माँ बनकर जीवन को संस्कार देती है, पत्नी बनकर हर कदम पर साथ देती है। अबला नहीं सबला है नारी, अबला नहीं सबला है नारी, हर क्षेत्र में है उसकी भागीदारी। ज्ञान कला विज्ञान और सम्मान, हर जगह बढ़ा रही अपनी पहचान। जिस घर में नारी का सम्मान होगा, वही खुशियों का सुंदर संसार होगा। नारी आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, उसके सपनों से नया भारत भी निखरेगा। आओ मिलकर इतना सम्मान करें, उनके हर सपने को एक आसमान दें। आओ मिलकर इतना सम्मान दें कि उनके हर सपने को एक आसमान दें। नारी की शक्ति को पहचाने हम, उनके हौसलों को सलाम करें हम।
1: मैम बहुत अच्छी आपका पोयम था, बहुत अच्छा
0: लगी।
1: यस मैम, मुझे तो बहुत पसंद है।
0: तो मैं
1: ये आपने जो बताया उसमें ये जो फीमेल का रोल है, वुमेन्स का, वीमेन्स का, बहुत अच्छा रोल है। मैम ये कितना आप खुद को कितने फॉर्म में चेंज कर लेते
0: हैं, कितने को कितनों को हम, मतलब एक जो एक औरत होती है वो वाकई में अपने आप को कितना चेंज करती है एक अलग अलग फॉर्म्स में। देखिए
1: सच में
0: जैसे बचपन में तो एक बच्ची के रूप में आती है, बेटी के रूप में आती है, बहन के रूप में आती है, बड़ी होती है तो वो एक बहू के रूप में आ जाती है, फिर वो धीरे धीरे एक माँ के रूप में आती है, एक दादी के रूप में आती है, चाची के रूप में आती है, भाभी के रूप में आती है। मतलब एक नारी कितने रूपों को लेकर के जन्म लेती है।
1: और मैम वो अपने जितने भी रोल होते हैं बहुत शिद्दत से निभाती है।
0: शिद्दत से निभाती है, एग्जैक्टली, बहुत ही शिद्दत से निभाती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक नारी जो है वो पूरे शिद्दत से निभाती है हर एक अपने रूप को, तो उसी रूप को आज हम बहुत ज्यादा क्लियर से लेने वाले हैं। तो चलिए आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ हम जानेंगे संध्या से।
1: जी मैम, ये मेरा ओनली वीमेन्स के लिए कहना है कि उनकी लाइफ यूँ शादी तक स्टे नहीं होती।
0: हाँ।
1: शादी के बाद भी वो अपना ससुराल का सपोर्ट करें, फैमिली की भी करें, लेकिन वो अपने लिए भी कुछ ज़्यादा ग्रो करें, खुद को थोड़ा मेंटेन रखें।
0: हाँ। तो अपने आप को मेंटेन, मैं आपसे इतना जानना चाहूँगी केवल दो लाइन में कि अपने आप को मेंटेन और कैसे कर सकते हैं।
1: मैम मेंटेन रखने का मतलब ये नहीं है कि
0: अपने आप को सुंदर बनाए।
1: यस मैम, वो आपको एजुकेशनल तरीके से भी खुद को मेंटेन रखना चाहिए,
0: अपनी ख्वाहिशों को मारना नहीं।
1: यस मैम, अपने सपनों को
0: हाँ पंख देना है,
1: पंख देना, उड़ान भरनी है।
0: हाँ जी बिल्कुल, अपने सपनों को पंख देने वाली बात बताई है अभी संध्या ने कि एक लड़की का सफर केवल मायके तक नहीं सीमित रहना चाहिए, ससुराल तक भी जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद भी अपने सपनों को पंख लगाने की आवश्यकता होती है। तो ये रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बहुत ही बेहतर था संध्या। तो संध्या चले एक ब्रेक की ओर।
1: यस मैम,
0: आई थिंक हम एक गाना सुना देंगे अभी लिसनर्स को और उसके बाद आएंगे आज के मेन टॉपिक की ओर। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सुनते रहना है हमारे साथ आपका पसंदीदा शो सुन सहेगी। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
9: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है संध्या। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज के दूसरे सेगमेंट में, यानी कि आज आपको संध्या कुछ खासम खास बताने वाली है। लेकिन मैंने भी पूछा ब्रेक में जाने के बाद कि ऐसी क्या है खासम महिलाओं के लिए, तो उसने बोला मैम आप खुद सुन लीजिएगा। तो भाई आइए सुनते हैं कि आज संध्या क्या लेकर के आई है कुछ खास।
10: मैम विमेंस के लिए ये नहीं है कि वो शादी के बाद ओनली घर पे बैठें या फिर वो ऑफिसली ही वर्क करें। मैम हम आपको ये बताना चाहते थे कि विमेंस शादी के बाद जरूरी नहीं कि ऑल टाइम वो घर ही पे रहें या फिर उनकी लाइफ वहीं तक रहे कि हाँ वो मॉर्निंग में खाना बना के दे दो, शाम को खाना बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे मैम तो फिर होमवर्क भी घर पे कर सकती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
9: जैसे उसमें क्या
10: मैम, जैसे
9: मतलब मैंने सुना है कि शादी हो जाती है तो उसके बाद में सारे सपने जो होते हैं महिलाओं के वो वही ना वही के वही ठप रह जाते हैं, चाहे वो जितनी भी पढ़ी लिखी क्यों नहीं।
10: हाँ मैम ये बात तो एकदम ट्रू है, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन उन बीवेंस के लिए है कि जो अपने सपनों को ऐसे रुकने नहीं देती। हाँ। अगर वो चाहे वो उड़ना चाहे तो उनकी फैमिली सपोर्ट करेगी, पर उसका थोड़ा तरीका सही होना चाहिए।
9: तरीका सही होना चाहिए।
10: हाँ अब ये नहीं कि तुम जबरदस्ती उनसे करने और करने का कहने का भी और फैमिली से परमिशन लेने का एक कैजुअल अपना एक अलग तरीका होता है। उस तरीके उस बिहेव से आप उनसे बात करिए, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि 50% लोग अलाउ करेंगे कि आप वर्क कर सकती हैं। और अगर वो ऑफिसली वर्क ज्वाइन करने के लिए नहीं एग्री हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो उसे होमवर्क भी कर सकते हैं। जैसे मैम क्या है कि अगर इंसान के अंदर कोई हॉबी है, उसकी कोई, जैसे किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। मैम मेरे यहाँ एक लड़की है निधि, उसको ना खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, इवन वो खाना बहुत अच्छा बनाती भी है। तो अगर उसकी फैमिली उसे ना मतलब जॉब करने के लिए सपोर्ट करे बाहर, तो चाहे तो खाना बना के टिफिन सर्विस करके बहुत अच्छा वर्क कर सकती, अच्छे पैसे भी कमा सकती है। और मैम टिफिन सर्विस करना, ऑनलाइन ट्यूशन देना और इंटर्नशाला में जैसी वेबसाइटों पर जाके डिजिटली वर्क भी कर सकती हैं वो। तो मेरा यही मानना है कि जो लोग अभी घर पर बैठे हैं उनके अंदर है मतलब कुछ चीज़ें वो खुद से निकाल नहीं पाती हैं, तो वो लोग घर पे अपनी हॉबीज़ को दबा के ना बैठें, वो बाहर निकलें, अपनी दिखाएं लोगों को कि मुझे ये आता है
9: जी जी।
10: फिर जरूरी नहीं है कि हाँ पहली बार में ही आप बहुत अच्छा कर लो, पर कोशिश ना करो ये भी गलत बात है। आप करेंगी तो होगा जरूर।
9: अच्छा,
10: तो मेरा मानना है कि होमवर्क भी आप ज्वाइन कर सकती हैं।
9: ओके, तो मतलब ये है कि हम होममेड कोई भी चीजें अपने हिसाब से हम उसको शुरू कर सकते हैं।
10: बिल्कुल मैम,
9: बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम घर बैठे उसको रेडी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मुझे लगता है कि मतलब हम ना कुछ क्रिएटिव माइंड में।
10: मैम देखो, बहुत लोग के अंदर आर्ट की बहुत ज्यादा अच्छी वो होती है।
9: हाँ।
10: लेकिन शादी के बाद लोग छोड़ देते हैं कि छोड़ो रहने दो। अगर उन्हें आर्ट आती है, ड्रॉइंग आती है, तो क्यों ना अपना इसके लिए तो कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आप घर पे भी टाइम रहता है, आप अपना ड्राइंग बनाइए डिजिटली। अब आजकल तो जनरेशन इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है, इतने सोशल मीडिया ऐप हैं, इंस्टाग्राम, ये सब तो इतनी जल्दी रीच गेन करवाता है कि क्या बताएं। उसके थ्रू तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा कर सकते हैं।
9: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अभी संध्या ने बताया कि घर बैठे हम काम कर सकते हैं, पर एक संध्या एक बात मुझे मतलब ऐसे नॉर्मली बात करनी है
10: जी मैम।
9: वो बात ये है कि जैसे जो लड़कियां पढ़ी लिखी, मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूं एज अ सिटी वुमेन्स की और एक क्या कहते हैं विलेज वुमेन्स की, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूं। बट ऐसा क्योंकि देखो आप तो थोड़ा सा गांव के टच में जाते हो
10: जी मैम,
9: तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि जैसे गांव की जो महिलाएं होती हैं, क्या उनके सपने भी ऐसे उड़ने वाले होते हैं कि वो अपने ही घर में बिल्कुल एडजस्ट हो जाती हैं? ये सिर्फ चीजें केवल शहर की औरतों में होता है?
10: मैम देखो, सिटी के लोग तो हाँ वैसे भी वो ज़्यादा अवेयर होते हैं, वो अपनी हक के लिए आवाज़ उठाते भी हैं। पर रही विलेज वाली बात पे, तो विलेज की वीमेन ऐसी होती हैं कि वो अपने सपनों के लिए उड़ना नहीं जानती। वो खुद को उन्हीं के लाइफ में एडजस्ट कर लेती हैं। और जब अपनी हॉबीज अपनी फैमिली से शेयर नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो फिर वो कैसे क्या होगा? इसीलिए सबसे पहले अपनी बातें फैमिली के सामने रखो। तो
9: ये अपने मतलब कहने का सेंस मेरा ये पूछना था कि क्या गांव की महिलाएं भी उतनी अवेयर होती हैं कि उनको काम करना है, कि वो गांव के ही माहौल में अपने घर के ही माहौल में एडजस्ट हो जाती हैं?
10: मैम वो अवेयर होती हैं,
9: पर वो एडजस्ट हो जाती
10: है, एडजस्ट हो जाती,
9: मतलब उन्हें ये डील नहीं होती है कि हम गांव से बाहर जाकर के काम करें।
10: मैम ये जो आपने पर लगा दिया, ये पर उन्हीं लोगों के लिए है कि हाँ वो जानती हैं लेकिन निकल नहीं पाती।
9: निकल नहीं पाती।
10: यस मैम।
9: ओके, मतलब हर एक काम में वो लोग निपुण होती हैं पर वो कर नहीं पाती।
10: वो कर नहीं पाती।
9: एग्जैक्टली, वो कर नहीं। जैसे घर बैठे ही क्या कहते हैं सिलाई का काम हो गया, बुनाई का काम हो गया, जो बेत से वो सब बनते हैं, मतलब जैसे वो पंखे वगैरह बनते हैं, बहुत सारे ऐसे शिल्पकार होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं।
10: यस मैम,
9: ऐसी कई चीजें होती हैं जो हम घर बैठ के कर सकते हैं, बट हम अपने माहौल को देख करके या हम अपने फैमिली को देख करके हम उन सारी चीजों को नहीं कर पाते।
10: यस मैम।
9: अगर हम अब बात करते हैं सिटी की, तो सिटी में तो अब तो शादियां ही इस कमिटमेंट पे होती हैं कि भाई आप जॉब करने देंगे हम
10: तभी मैं शादी करूंगी। यस मैम।
9: अच्छा, मतलब ये संध्या ने भी सुनी है ये बात।
10: यस मैम। बेन मैम, अगर मेरी शादी होगी तो मैं तो यही उनसे कंडीशन रख लूंगी, और वो इस बात पे एग्री करते हैं तब तो मैं करूंगी।
9: तो देखिए यही साफ बात हो गई ना, मैंने अभी कंपैरिजन की बात करी कि अगर आप एक विलेज वुमेन की बात करें और सिटी वुमेन की बात करें, तो देखो यही है ना कि ये सिटी वुमेन है तो इन्होंने क्या कहा कि पहले मैं वहाँ पर मतलब एक कंडीशन रख दूंगी कि मुझे जॉब करना है और उसके बाद मुझे शादी करनी है। एग्जैक्टली यस,
10: बिल्कुल मैम।
9: मुझे लग रहा है कि हाँ,
10: और मेरा मानना ये है मैम कि जो लोग घर तक ही ऐसे बंधे रहते हैं, उनकी मेंटली वो सोचने समझने की क्षमता और जो ये वर्क रहते हैं बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि ये जो वर्क करते हैं वो अपनी लाइफ, और मेरा मानना, मुझे मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर कोई वर्क कर रहा है तो उसकी लाइफ बहुत फन जाती है, अगर आप घर में रहोगे तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है।
9: बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि हम वो सारे काम भी जानेंगे कि कौन से काम ऐसे हैं जो हम घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम लेंगे एक ब्रेक।
10: यस मैम।
9: तो आप संध्या बोलेंगी ब्रेक के लिए? आज संध्या बोलेंगी ब्रेक के लिए।
10: हाँ, तब तक आप एक म्यूजिकल ब्रेक का एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं आपको ब्रेक के उस पार और उस सोल्यूशन, एक सोल्यूशन लेके साथ।
9: जी हाँ, तो बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है हमारे संध्या जी। तो अभी जिस टॉपिक पे बात हो रही थी कि घर बैठे ऐसा कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं और अपने सपनों को दे सकते हैं पंख, तो भाई शादी के बाद की बात हो चाहे पहले की बात हो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको हम कर सकते हैं, लेकिन वो कौन से काम है आज आपको बताएंगी संध्या जी।
3: जी मैम, तो हमने तो अभी आपको बताया ही था कि जैसे टिफिन सर्विस करना, ऑनलाइन ट्यूशन देना या फिर इंटर्न शाला वेबसाइट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप कमाई कर सकती हैं आसानी से। जैसे मैम क्या है कि अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आप घर का खाना बना कर टिफिन हो, या जैसे किसी को अचार बनाना पसंद होता है और बहुत एक्सपर्ट हो, उसके हाथों से अचार बहुत अच्छा बनता है, तो वो चाहे तो वो अचार बना ले या फिर पापड़ बनाकर बहुत अच्छी।
2: और आजकल तो ये सब इंसान जो भी मतलब जो भी मार्केटिंग होती है तो ये तब लगता है कि हम लोग कहीं मार्केट का ही खा लें, और क्योंकि हर किसी को टाइमिंग की बहुत शॉर्टेज है।
3: यस मैम,
2: हर कोई चाहता है कि भाई हमको बना बनाया
3: मिल जाए, भले दो पैसे ज्यादा लग जाए उसमें हम लोग सेटिस्फाइंग है, लेकिन बनाना ना पड़े क्योंकि उतना टाइम लगता है। तो और फिर अगर मुझे कोई चीज अच्छी चीज मिल रही है और दो पैसे ज्यादा में मिल रही है तो मेरे लिए बेहतर हुई
2: होगी, मिल रही है तो हाँ
3: तो मैं ले लूँ। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हम लोग के लिए, वीमेंस के लिए अच्छी बात है कि अगर हमारे अंदर कोई हुनर है तो उसे हम निकालें और अपना उससे अपना अच्छी कमाई भी हो सकती है।
2: बिल्कुल, और कौन कौन से काम है
3: मैम? और सिलाई भी करना बहुत अच्छी बात होती है, और मोस्टली लेडीजों को, वीमेंस को सिलाई करनी आती है। तो अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, सिलाई करिए, बूटिंग का काम करिए, घर बैठे आप कपड़ा सिल लिए, अगर आपको डिजाइन करना आता है तो सबसे अच्छी बात है आप डिजाइन करिए,
2: बूटिंग का काम।
3: यस मैम, डिजाइनिंग करिए और फिर वो वीडियो बना के इंस्टा पे डाल दीजिए, देखिए आप कितना जल्दी रीच पाते हैं।
2: एग्जैक्टली, और मतलब अपने आप को और फेमस अगर बनाना है तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं।
3: यस मैम,
2: साथ ही साथ में मेरे पास भी एक बहुत अच्छा सा एक ऑप्शन है कि आप महिलाएं वो भी कर सकती हैं, मतलब जैसे अगर जॉब किसी के पास नहीं है तो घर बैठे ही आप लोग ये काम को कर सकते हैं जो शिल्प कला का काम करते हैं।
3: मैम, और ये सिलाई तो चलो सूट है, साड़ी, ब्लाउज है, ये सिलना तो मान लिया किस तरह से टफ है, लेकिन सबसे हल्का काम उसमें फॉल पीको का है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, नथिंग के बराबर कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर आपको फॉल पीको करना आता है मैम, उसमें भी आप पैसे कमा सकते हैं।
2: और
3: अच्छा।
2: और मैं बताऊँ एक और काम मैंने देखा है कि हमारे घर के आसपास की महिलाएं जो है वो करती है,
3: क्या मैम?
2: कि थोक में स्कूल्स की जो शर्ट्स होती है ना, शर्ट्स लेके आती है, उसमें बटन लगाने का काम।
3: अरे मैम, वो तो बहुत इजी काम है,
2: और एक शर्ट के 5-5 रुपए, मतलब बहुत साल पहले मैंने पता किया था 5 रुपए, अब तो

0: उसका दाम बढ़ गया
1: अब है। तो बेसिकली मैम दाम बढ़ गया होगा,
0: अगर हो गया होगा
1: तो सोच लिए मैम अगर एक शर्ट का 20 रुपए है तो आप दिन में कम से कम 10 शर्ट कर लिए तो सोच लो कि आपके
0: नहीं 10 क्या बहुत ज्यादा हो गया भाई।
1: वही चीज़
0: मतलब 1000 रुपए अगर आपके अगर आपने 20 शर्ट कर लिए 50 कर लिए तो कितना ज्यादा उसका अमाउंट हो गया।
1: अरे मैम मैं मिनिमम बता रही हूँ कि अगर किसी ने 10 शर्ट भी कर ली तो उसका आराम से पैसे निकल आएंगे, तो इसमें ये बेस्ट है हम लोग के लिए। अगर नहीं निकल पाते हैं घर से तो
0: अगर मतलब बाहर जाने की परमिशन नहीं है, एक संयुक्त परिवार है, एकाकी परिवार है जिसको आजकल बहुत ज्यादा मॉडरेट किया कर दिया गया है कि हम एकाकी परिवार में रहते हैं, तो एकाकी परिवार में रहने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं और इफेक्ट्स तो पता नहीं मुझे नहीं पता लगता है, लेकिन भाई साइड इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं।
1: यस मैम, अगर आप रीसेलिंग कर सकती हैं मीशो या अन्य सोशल मीडिया एप्स का उपयोग करके, आप अगर कोई ज्यादा मतलब वो नहीं है कि बड़ा अमाउंट आपके पास नहीं है, छोटे अमाउंट में भी अगर आप ऑनलाइन सामान बेच सकती हैं अगर आपके पास है। अब जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट हो तभी आप स्टार्ट करें।
0: एग्जैक्टली, तो ये सारी चीजें आप लोग घर बैठे कर सकती हैं और आप कमा सकती हैं बहुत सारे पैसे।
1: और मैम यही नहीं, अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप ये कर सकती हैं ऑनलाइन ट्यूशन बच्चों को दे सकती।
0: अच्छा, हम पढ़े लिखे हैं
1: बेसिक मैम। अच्छा, अगर आप ऐसी
0: आप हमसे पूछ रहे थे कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो
1: मेरे लिसनर्स को मैं बता रही हूँ।
0: ओके, लिसनर्स से पूछ रहा
1: हूँ। हाँ, कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो फिर आराम से क्या है कि वो होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं घर पे बच्चों को। अगर बच्चे उनको नहीं मिल रहे हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना एक वीडियो बना के और डालें, उससे भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं।
0: एग्जैक्टली, और
1: किसी किसी के अंदर मैम एक यूनिक पावर होती है, अगर उनकी राइटिंग अच्छी होती है। अगर उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो वो अपना राइटिंग एक
0: राइटिंग स्किल को भी आप लोग आगे पढ़ा सकते
1: हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल राइटिंग स्किल से भी आप आगे बहुत जा सकते हैं, क्योंकि मैम मेरी राइटिंग ना तो एकदम बेकार सी है, तो मैं तो उन मामलों में थोड़ा पीछे रहूंगी, लेकिन अगर जिसकी है वो सच में बहुत अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ में।
0: एग्जैक्टली, और मैं हमेशा से अंशिका को एक चीज की बात कहती हूँ। संध्या,
1: क्या मैम
0: आपकी बात को रोक रही हूँ यहाँ पे, अभी फिर हम आपकी बात पे कंटिन्यू करेंगे।
1: यस मैम,
0: तो मैं अंशिका को हमेशा एक बात के लिए प्रेरित करती हूँ, वो ये है कि वो बहुत अच्छी पोयम लिखती है, शायरियाँ लिखती है, खुद लिखती है वो। तो अगर ये भी हुनर किसी के पास है तो आप सबसे अच्छा काम कि आप घर बैठिए, आपको जितना टाइम मिले आप बहुत सारी पोएम्स लिखिए और अपनी बुक को क्या कहते हैं पब्लिश कर सकते हैं।
1: मेरा मानना है, यस मैम बिल्कुल राइट आप कह रही हैं, अगर आपके पास आपकी कोई भी टैलेंट है तो उसे मतलब एकदम दबा के नहीं, उसे निखारिए, कम से कम ऊपर तो लाइए।
0: डांस है और कोई भी चीज में अगर आप कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन
1: डांस है, सिंगिंग है, कुछ सिंगिंग भी है, कर सकते
0: आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप आजकल बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अब तो ऑनलाइन बिजनेस भी इतने अच्छे अच्छे हो गए।
1: मैम मेहंदी लगाने वाला, उसमें तो टॉप नंबर की वो पैसे मिल जाएंगे, जितना आप डिमांड करेंगे ना उस हिसाब से आप पैसे कमा।
0: बिल्कुल, और उसमें तो आप और पता है संध्या, मैंने तो देखा है कि जब लगन होती है तो 10,000 की मेहंदी लगती है।
1: बिल्कुल मैम,
0: दोनों पैर में।
1: यस मैम बिल्कुल, आप सोचिए कि एक रात में अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क खुद के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि भाई आप मेहंदी लगाएंगे तो हाथ और ये नेक में तो पेन होना है भाई, 2-3 घंटे 4 घंटे कोई कंटिन्यूली मैम बैठ रहा है तो वो होना है, लेकिन वो दर्द आप कुछ देर के लिए थोड़ा सा आप वो एडजस्ट कर लीजिए,
0: बाकी पैसे मिले ना हाथ में तो वो जो पेन होता है, वो जो एक थकावट होती है, वो सब कुछ खत्म
1: मैम खत्म, वो हमारी स्टंट बन जाती है कि चलो कोई नहीं है। हाँ। पैसे मिल रहे हैं तो इतना तो नॉर्मल है, वो कर लेगा इंसान। हाँ,
0: वही है ना कि वो सारा पेन जो है वो ऐसे ही छूमंतर हो जाता है जब हमें हाथ में पैसे आते हैं।
1: और मैम मैंने तो देखा है आजकल लोगों को अच्छी अच्छी थेरेपी आती है कि अगर ऐसे ऐसे आपको छू लेंगी तो भी उनको बहुत अच्छा कर लेती है। तो वो भी अगर किसी को
0: यस मैम थेरेपी मतलब जैसे कि आप एक्सरसाइज या मसाज की थेरेपी जो होती है।
1: यस मैम बिल्कुल सही, तो अगर आप किसी को इसके अंदर वो टैलेंट है तो वो भी कर सकता है।
0: जी हाँ, तो यानी संध्या के कहने का मतलब ऑल टोटल यही है कि आप घर बैठे आपके पास कुछ भी हुनर है तो आप उसको ऑनलाइन स्टेज पे ला सकती हैं, या तो आपका कोई ऐसा खुद का प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पर उसको निखार सकती हैं।
1: यस मैम, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हाँ आफ्टर मैरिज कोई बाहर ही जाए, वो इंडिपेंडेंट है, खुद के लिए कुछ भी कर सकती है आफ्टर मैरिज भी।
0: जी जी जी जी जी बिल्कुल, तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आएंगे अपने अगले टॉपिक पर जो की है विमेंस के लिए स्पेशली उनकी डिजीज को लेकर के एक बात। तो भाई क्या है वो बात, लेकिन करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इंतजार, बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केएनवीयू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व केएनवीयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: Delicious.
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
8: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज हमारे हैं संध्या। और अभी हम बात कर रहे थे घर बैठी महिलाओं के लिए कुछ खास बातें, लेकिन अब आते हैं जो कि आज का स्पेशल एक डिजीज। हर एक महिला में ये चीज पाई जाती है, चाहे वो कितनी भी स्वस्थ क्यों ना हो। ये अपने आप को बाहर से फिट मानने वाली महिलाएं अंदर से एनेमिक जरूर होती है।
9: अरे मैम, मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ, तो क्या मुझ में भी ये दिक्कत हो सकती है?
8: वो एनीमिया

0: ना वो एनेमिक हर कोई होता है और खास करके महिलाएं। और आपको पता है कि महिलाओं में एनेमिक क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें खून की सख्त जरूरत होती है लेकिन उनको खून की ही कमी बताई जाती है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो सबसे पहला वो पर्चा यही लिखेंगे, खून की कमी।
1: यस मैम,
0: है ना?
1: जी मैम।
0: तो नाजिया अंसारी एंड समा फ्रॉम लखनऊ एंड प्रीति शुक्ला जी, तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपने शो सुन सहेली में। तो आइए अब जानेंगे कि एनेमिक आखिर है क्या, मतलब ये एनीमिया जो है ये होता क्या है और उसके लक्षण और उसके उपाय। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये होता कैसे है।
1: यस मैम, एनीमिया एक ऐसी बीमारी नहीं है जो अभी आपने बताया कि सब में हो, लेकिन मोस्टली लेडीजों में वीमेंस में होता ही होता है। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होना।
0: हाँ।
1: और मुझे लगता है कि इंडिया में आधे से ज्यादा जितनी भी वो
0: महिलाएं हैं ना, सबको है,
1: सबको है। ये अगर वो देखने में बेल लग रही हैं तो जरूरी नहीं है कोई अंदर से भी बेल
0: हो। बोला ना कि जैसे दिखने में लगता है कि हाँ बहुत फिट है, बहुत कूल है, बट अगर आप उसका ब्लड चेक करवाएंगे ना, हीमोग्लोबिन चेक करवाएंगे,
1: तो उनमें आयरन की कमी निकलेगी ही निकलेगी। यस मैम, तो अब मेरा तो मानना है कि अब हम तो खुद का बहुत ध्यान रखेंगे कि मुझमें आयरन की कमी ना होने पाए।
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ, क्योंकि मुझे ना कभी कभी मैम थकावट सी लगी रहती, मैं सच में बहुत परेशान, मैं आप मुझे भी जरा से भी डांट दें तो मैं तुरंत उलझन में आ जाती।
0: अच्छा।
1: हाँ, पता नहीं क्या दिक्कत है।
0: तो ये आयरन की कमी के कारण से होता है
1: बेसिकली मैम, हो सकता
0: है ज्यादा थकावट रहना।
1: यस मैम, मैं जरा सा अभी मुझसे बोल दो कि संध्या एक बार छत पे जाके नीचे आ जाओ, फिर मैम मुझे बहुत ज्यादा मतलब वीकनेस फील होने लगती है, और जबकि मुझे इस एज में तो ऐसा अभी
0: बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नो नो नो,
1: लेकिन मुझे मैम लगता है कि मुझे भी आयरन की कमी है, और जरूरी नहीं कि मैं दिखने में बेल हूँ तो अंदर से भी हूँ।
0: तो ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में, देखो आपकी बात सुनने से पहले मैंने आपको क्या बताया कि जरूरी नहीं, और यहाँ पर 100% महिलाओं को हीमोग्लोबिन की कमी और वो जो है ना वो पेशेंट होते ही होते हैं।
1: yes,
0: नहीं कि हर किसी को, बट हाँ 100 में से 90% तो कंपलसरी है।
1: yes, मैम
0: जी।
1: तो मैम ये एनीमिया होता कैसे है
0: आप बताए ना, कैसे होता है?
1: मैं बता दूं?
0: बिल्कुल,
1: मेरे लिसनर सुनना चाहेंगे?
0: हाँ जी, संध्या बताएंगी तो जरूर सुनेंगे।
1: मैम अब मैं तो बताई कि मुझमें तो बहुत दिक्कत दिख रही है क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ, और मैं एक ना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: क्योंकि मैं अगर आप जरा सा भी चलेंगी तो आपको थकान महसूस होगी।
0: हाँ।
1: अगर आप थोड़ा सा काम कर ली तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि आपने कितना काम कर लिया, वो एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी लगेगी।
0: हाँ।
1: और आप खुद से बहुत वीक महसूस करेंगे,
0: खुद से अंदर से लगेगा कि वीकनेस हो।
1: हाँ, कंटिन्यूली आप मतलब एकदम टायर्ड फील करेंगे, वीकनेस रहेगी, और फिर मतलब वो आँखों के नीचे
0: कालापन,
1: हाँ आपकी हथेली में, हाथों में एकदम वो मतलब जैसे लगता है जॉइंटिस हो गया होगा, पीलिया होने लगेगा, और जो और हम लोग के आँख में जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो भी हल्का पीला दिखने लगता
0: पीला
1: है। तो हमें लगता है भाई कहीं अब तो पक्का लग रहा है हमें पीलिया होने वाला है।
0: बहुत सारा फिर ना ये जब ऐसे सुनने लगो ना तो बहुत डर भी लगने लगता है,
1: डर भी लगने लगता है मैम। और फिर अब क्या होता है कि ना, अब चलो मैं तो अभी सही एज में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो धीरे धीरे
0: 35+ 40+ की होती है महिलाओं को, तो ये चीज और बढ़ने लगती है।
1: यस मैम, तो आप सुना होगा वो लोग कहने लगती है मेरा सांस फूलने लगा है।
0: हाँ,
1: चक्कर सी आने लगी। हाँ, है। इवन उनके घर वाले ये चीज समझते नहीं, उनको तो लगता है कि हाँ ये नखरे कर रही है, पर एक्चुअल में सच में उन्हें ऐसा होता है।
0: अच्छा, एक और सिम्टम्स होता है जिसमें होता है कि आपकी ना बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। एनेमिक जो होते हैं ना उन्हें पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। इट मींस ये 100% हो जाता है कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है।
1: यस मैम, सांस फूलना, चक्कर आना, ये सब वो उसी के करेक्टर सिम्टम्स हैं कि आप एनीमिया के मतलब उसमें आ गए
0: हैं।
1: हाँ, अब यहाँ अगर मैं तो बहुत लोग के मुंह से सुनती हूँ मैम कि उनका हाथ अगर मतलब नॉर्मल मौसम में तब भी उनका हाथ पर ठंडा रहता है।
0: हाँ।
1: तो वो ठंडा भी इसी के रीजन से रहता है कि हाँ आप में डिफिशियंसी है ब्लड की।
0: अच्छा,
1: आपको तो अपना वो सुधार करना चाहिए।
0: नाजिया जी लिख रही है कि मैम मेरे भी ऐसे ही है आँखों में।
1: तो नाजिया जी आपको भी अपना आयरन मेंटेन करना होगा।
0: हाँ, ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें आप अनार खूब खाएं। इस समय तो अनार मार्केट में बहुत अच्छे मिल भी रहे हैं। सेब और अनार एकमात्र स्रोत ऐसा है जिसको खाने से आपका जो आयरन है वो बढ़ेगा।
1: मैम, बालों का झड़ना भी हम वीमेंस की एक ये शिकायत होती सबसे, यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। और ये देखो कि नाखून जो होता है, एक होता है

0: संध्या कि पानी की अगर पर्याप्त मात्रा आपकी अगर बॉडी में बनी रहती है ना तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आपकी आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी।
1: यस मैम।
0: और पूरी आपकी बॉडी जो है वो मेंटेन रहती है।
1: यस मैम। हाँ, और तुरंत अगर हम तुरंत अब आयरन की चीज़, मान लिया अभी मुझे यहाँ तुरंत आयरन की चीजें नहीं मिल रही है, वो बात तो ठीक है कि मुझे मार्केट पे मार्केट से लाना होगा।
0: हाँ।
1: लेकिन पानी लाने तो मुझे मार्केट नहीं जाना
0: पड़ेगा ना। हाँ।
1: वो तो मुझे थोड़ा सा भाई खुद से कष्ट करना पड़ेगा। पानी पी लो, वो सबसे जितना पानी आप पियेंगी उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए।
0: बिल्कुल। तो पानी, और जो कि मैंने बताया अभी कि अगर आयरन की कमी है तो भरपूर मात्रा में आयरन जो होता है वो होता है अनार में।
1: मैम देखो, हम लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी दिक्कत होती है,
0: मतलब
1: ओनली हम लोग का ब्लड ही लॉस होता है।
0: हाँ,
1: तो कम से कम इंसान अपने बारे में खुद थोड़ा सा सोच ले तो फिर।
0: तो मुझे ये बताओ संध्या कि तुम जो इतना बड़ा उपदेश दे रही हो, तुम अनार एक दिन में कितनी बार खाती हो?
1: सॉरी मैम, हमारे लिसनर सुन रहे हैं, उनसे झूठ बोले तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नहीं खाते हैं सच में। सेब तो हाँ कभी कभार खा लेते हैं रेगुलर, वो भी नहीं। किशमिश तो नहीं मैम, लेकिन मैं सुबह बादाम और चना जरूर खाती हूँ।
0: तो वो तो कैल्शियम की डिफिशिएंसी को ठीक करता है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, तो आपने रात में 10 से 12 दाने किशमिश, और किशमिश चाहे आपको 2000 रुपए किलो अगर मार्केट में मिले ना तब भी आपको लेना है, लेकिन सबसे कम दाम में जो किशमिश होती है वो किशमिश ही मिलती है। आपने 10 से 12 दाने आपको गिन करके रात में उसको पहले धुल लेना है और फिर उसको भिगो देना है, ठीक है? फिर सुबह उठ करके खाली पेट आपको वही पानी पीना है और किशमिश चबा चबा के खाना है।
1: ओके मैम, अब मैं स्टार्ट
0: कम से कम आप ये एक दो महीना करेंगे तो आपके खुद नेल्स जो होते हैं ना वो रेडिश होने लगेंगे, लिप्स आपके बिल्कुल रेडिश होने लगेंगे, चीक्स के पास देखो अगर आपकी क्या कहते हैं रेडिश है, आंखों में देखो अगर है रेडिश, तो इट मींस आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं।
1: यस मैम। लेकिन मैम क्या है, अभी आप किशमिश का नाम ली तो मेरे अंदर से वो छोटा बचपन वाली संध्या निकल आती है और मेरा मन करता है कि मैं पूरा एक बार में ही खत्म कर दूं।
0: तो वो आप पता है, आप भले आप आधा किलो एक बार बैठ के खा लोगे ना तो वो कुछ नहीं असर करेगा।
1: यस मैम।
0: लेकिन अगर आप इसको भिगो के 12 से 15 दाने अगर आप रोज कंटिन्यूअसली बना लो ना तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन की एटलीस्ट कमी नहीं होगी।
1: यस मैम।
0: ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप सभी को भी ध्यान रखने वाली है।
1: हाँ, तो मैं तो फॉलो करूंगी पर हमारे लिसनर भी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: लिसनर्स तो करेंगे, लिसनर्स तो बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं।
1: Yes, ma'am.
0: मुझे चलते फिरते चक्कर आ जाता है। तो महेंद्र जी, ये भी कारण हो सकता है, ये आयरन की कमी के कारण ही होता है।
1: Yes, ma'am.
0: और एक कारण और हो सकता है जो कि जिसको हम लोग आजकल नाम देते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी भी जब सर पे चढ़ जाती है तो भी चक्कर आने जैसा फील होता है।
1: मैम एसिडिटी की तो बात बहुत बड़ी है, अब तो छोटे छोटे बच्चों में एसिडिटी देखने के मिलता है।
0: बिल्कुल। तो संध्या, हम इसके उपाय जानेंगे और उपाय जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम और इसके उपायों की तरफ आएंगे कि आप अगर एनीमिया को बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इसका उपाय और क्या हो सकता है।
1: ओके,
0: लेकिन उसके लिए हम जाएंगे एक ब्रेक की ओर।
1: लिसनर आप ब्रेक एंजॉय करिए, हम मिलते हैं आपको उस पार ब्रेक के।
2: कुछ साए कुछ परछाइयां, कुछ चाहत के सजदे, कुछ बहते बादलों पे रखी उम्मीदें बरसती रहीं तरसती रहीं, न थमे न रोका न पूछा।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: Delicious.
2: Hello, let's dine. Come and join. Let's dine restaurant, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबी, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है संध्या। तो आइए बचा हुआ आज एनीमिया के उपाय को हम बताएंगे एंड उसके बाद बताएंगे एक प्यारी सी मॉरल स्टोरी जो कि इंतजार कर रही है आपका।
4: यस मैम, अब मैं बताऊंगी अपने लिसनर को कि इसके सलूशन क्या है। अगर आप एनीमिया से परेशान हैं, अब डिफिशियंसी है ब्लड की, तो आप सबसे पहले अपना डाइट मेंटेन करिए। जैसे डाइट में आप पालक का साग, मेथी, बथुआ या चुकंदर का भी बहुत अच्छा, मतलब चुकंदर खाना मैम आपको पसंद है?
3: बहुत ज़्यादा वाला।
4: चलो अच्छा है मैम, आपने कहा कि आपको पसंद है। और मुझे तो मैम नहीं, अनार भी खा सकते हैं, खजूर, गुड़, चना, अंकुरित अनार। जैसे आप चना भिगो तो वो अंकुरित हो जाए, हाँ। तब खाओ तो वो बहुत अच्छा होता है। मैम विटामिन सी की जो चीज़ें होती हैं वो लेनी बहुत ज़रूरी है,
3: बिल्कुल,
4: क्योंकि आंवला, नींबू, अमरूद, संतरा, इन सब में विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आयरन को शरीर में एब्जर्ब करने के लिए विटामिन सी सबसे ज़्यादा मस्ट होता है।
3: ये तो बात है।
4: और मैम चाय काफ़ी से तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि कभी कभी होता नहीं खाना खाने से एक घंटे पहले हम खाना जब खा लेते हैं, वो चाय पी लेते हैं, तो फिर वो खाना में जो हमारी विटामिन सी होती है उसे डाइजेस्ट करने में ये बहुत ज़्यादा, मतलब वो डिस्टर्बेंस करता है,
3: हाँ,
4: चाय। तो मैम अब ये नहीं कि अब मुझे अभी एक घंटे बाद खाना है तो मैं अभी चाय पीऊँ। चाय को अवॉइड करो, अगर पीना है तो टाइम से पियो। और मैम मेडिकल ट्रीटमेंट लेना भी बहुत बेस्ट है। CBC टेस्ट करवा लीजिए अपना, क्योंकि हम वीमेंस में जो मतलब ब्लड होता है वो अगर एक नॉर्मल पर्सन है तो अराउंड 12 या 15 होना चाहिए। लेकिन मैम अगर इतना नहीं है फिर भी 12 तो होना ही होना
3: बिल्कुल,
4: चाहिए
3: बिल्कुल।
4: सप्लीमेंट ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स की टेबलेट आती है वो लीजिए। इस तरीके से आप अपना मेंटेन डाइट मेंटेन करिए और मेडिकल रिपोर्ट भी देखते रहिए अपना कि सही रहे। CBC साथ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपका कम्प्लीटली ब्लड टेस्ट होता है, तो वो उसमें आपको जो ब्लड के अलावा, मतलब आयरन के अलावा अगर और किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी तो आपको पता चल जाएगा।
3: ये तो है।
4: यस मैम।
3: तो भाई आपने सुना अभी कि अगर आपको वाकई में अगर आपको एनीमिया का अगर है तो ये सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल करें जो कि अभी संध्या ने बताया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक प्यारा सा सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे और उसके बाद आएंगे आपसे टाटा बाय बाय करने के लिए, नहीं एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि एक स्टोरी पहले बता देते हैं एंड देन हम ब्रेक लेंगे।
4: ओके मैम,
3: ठीक है। तो चलिए अब टाइम हो गया है मॉरल स्टोरी का। तो भाई
4: मैम मुझे जब स्टोरी सुनाती हो तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि मैम मुझे स्टोरी सुना रही है।
3: आपको नहीं सुना रही हूँ, मैं लिसनर्स को सुना रही हूँ।
4: अरे वाह मैम।
3: नहीं, मैं सभी को सुना रही हूँ।
4: यस मैम।
3: तो कहानी कुछ एक स्त्री की सूझबूझ की कहानी है, वो आपको मैं बताऊंगी।
4: यस मैम।
3: एक छोटे से गाँव में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था, उसके पास आमदनी का कोई बड़ा साधन नहीं था। गांव के लोग सोचते थे कि एक अकेली औरत अपना जीवन कैसे चलाएगी। सावित्री हताश नहीं हुई, उसने हार मानने के बजाय हिम्मत से काम लिया। उसके पास सिलाई की एक पुरानी मशीन थी, उसने उसी से कपड़े सिलना शुरू कर दिया। शुरुआत में बहुत कम लोग आए, लेकिन लोगों ने उसे ताने भी देने शुरू कर दिए थे। अकेले कुछ नहीं कर पाओगी, क्या कर पाओगी, ये वो सब कुछ।
4: मैम ये समाज वाले भी हद कर देते हैं।
3: हाँ, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी, बिल्कुल भी हार उसने नहीं मानी। सावित्री ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, वो मेहनत और ईमानदारी पर टिकी रही। वह समय पर कपड़े सी देती थी और कपड़ों की सिलाई जो होती थी वो अपनी रखती थी और बहुत ही साफ सफाई से काम करती थी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा, उसका काम और बढ़ गया। कुछ समय बाद सावित्री ने गांव की अन्य गरीब लड़कियों को और महिलाओं को भी सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, आत्मनिर्भर हुई और उसके बाद आज वही गांव वाले सावित्री का सम्मान करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कठिन समय में भी अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसीलिए एक नारी जब ठान ले कि वो सिर्फ अपना अपना नहीं बल्कि पूरे समाज और भविष्य को भी बदल सकती है एक कड़ी मेहनत से, तो उसके इस हौसले को कोई भी हिला नहीं सकता है।
4: जी मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही है। सही मैम, एक बात तो और है हम वीमेंस के लिए कि अगर प्रॉब्लम आती है तो आप डरिए मत, उससे फेस करिए, क्योंकि प्रॉब्लम आई है तो कन्फर्म में सलूशन भी साथ लाई होगी। हाँ। बस हम लोग को डरना नहीं है, सलूशन को ढूंढना है कि एक्चुअल में उस सलूशन है क्या।
3: बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए।
4: यस मैम,
3: क्योंकि आज के युग में ना ये सारी चीजें हैं कि अगर हम जिस पर अगर हमें हम आगे बढ़ते हैं तो भी हमें दुनिया और समाज वाले पीछे घसीटने की वो करते हैं, और अगर हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं
4: तो सपोर्ट भी करते हैं।
3: सपोर्ट भी नहीं, अगर हम पीछे रह जाते हैं तो वो सपोर्ट भी नहीं करेंगे लेकिन वो ताने भी देंगे।
4: यस मैम,
3: ऐसा होता है।
4: यस मैम,
3: तो कोई नहीं, ये तो समाज और दुनिया है, ये तो चलता ही रहता है। तो आइए हम चलते हैं आपसे आपको प्यारा सा गाना, जो कि हमारे जाने वाला गाना होता है, लेकिन हम आएंगे आपको जाते जाते टाटा बाय बाय करने के लिए। लेकिन अभी आइए सुना देती हूँ इस प्यारे से गाने को।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

हाँ जी, हेलो एंड नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 3:03 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM आपकी अपने गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आयुष्मती, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और वक्त हो गया है अब आपके फरमाइशों के कार्यक्रम कॉल ट्यून गोंडा का, यानी कि आपके डिमांडेड सॉन्ग्स वाला स्पेशल प्रोग्राम। तो क्या ख्याल है फरमाइशों की तरफ बढ़े? जी हाँ, फिलहाल फरमाइशें भेजने के लिए आपको करना है कॉल। कॉलिंग नंबर है 6393316429। आई रिपीट, 6393316429 दोनों, जिस पर आप अपनी फरमाइशें भेजने वाले हैं और ऑफ कोर्स हम करने वाले हैं उसे ट्यून। तो आज की पहली फरमाइश जो हमारे पास आई है वो किसी और की नहीं, हमारी देवी प्रसाद जी की आई है। तो आइए इंजॉय करते हैं, दिल तोड़ के मत जाइयो बरसात के मौसम में। बारिश वैसे हो तो नहीं रही है, लेकिन फिलहाल एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, और ये थी फरमाइश हमारी देवी प्रसाद जी की। फिलहाल अगली फरमाइश को ट्यून करने से पहले आइए चलते हैं आपके अपने चैट बॉक्स में, क्योंकि वक्त हो गया है आपके चैट बॉक्स को देखने का। एंड हमारे लिसनर्स के कुछ मैसेजेस, कुछ पैगाम आ चुके हैं। और हमारे पास जो सबसे पहले मैसेज आया है वो सोनिया तिवारी जी का आया है, जो लिख रही हैं, हाय एवरीवन, हाय, कैसी हैं आप, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून कोरा में। सुरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। साथ ही लिखा है, हाय मैम, कैसी हो, मैं बढ़िया चंगी मस्त बिंदास, आप बताइए आप कैसी हैं। किसी डिस्को में जाएं, ऑफकोर्स मैं आपका गाना प्ले कर दूंगी, लेकिन उससे पहले करना पड़ेगा आपको कॉल। कॉलिंग नंबर वही है 6393316429। एंड इसके बाद है भैया नागेश्वर धाकर जी का मैसेज जो लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून अति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं कॉलेज गोडा में। रिजु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र दीपन जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, नमस्ते आर्जुन अति मैम जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कॉलेज गोडा में। बुद्धि जी हमारे साथ जुड़े हैं और लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आई होप आप अच्छे होंगे। उस्मान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आज मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, आप सभी आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी पहली या फिर कहें तो दूसरी फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश जो आई थी वो थी देवी प्रसाद जी की, लेकिन जो दूसरी फरमाइश आई है वो आई है हमारी रिजु जी की। और आइए टाइम टेबल सुनना चाहते हैं कुलविंदर बिल्ला की आवाज़ में, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त पंजाबी सिंगर, इन्जॉय करते रहिए। कॉल ट्यून गोडा, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर। और आप सुन रहे हैं गोडा का अपना एफएम रेडियो 89.6 FM विद आरजे उनादी।

और ये थी फरमाइश हमारे रिजू जी की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, वो आई है सुरेंद्र यादव जी की। तो आइए सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश को ट्यून करते हैं और आपको हम बता दें आप सुन रहे हैं आपका अपना कॉल ट्यून गो रहा है आपके फरमाइशों वाला कार्यक्रम ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस 89.6 एफएम पर। अपनी होस्ट एंड दोस्त अपनी रेडियो जॉकी उन्नति के साथ अपनी फरमाइशें भेजने के लिए उठाइए अपना फोन, डायल कीजिए 6393316429 और भेज दीजिए फटाक से स्टे ट्यून्ड।

सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पे आप एंजॉय कर रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा भजन, और वक्त है अगली फरमाइश को ट्यून करने का। हमारे पास अगली फरमाइश आई है रमेश कुमार जी की फ्रॉम महाराष्ट्र, और वो सुनना चाहते हैं दिल आशिकाना। जी हाँ, ये दिल आशिकाना कुमार सानू अलका जी की आवाज, नदीम श्रवण का संगीत, 90s का बेहद ही रोमांटिक गाना। और हम आपको बता दें, ये वो एल्बम है जो बहुत ज्यादा हिट गई थी। इस एल्बम के सभी गाने हिट गए हैं, जिसमें से आज भी ये दिल आशिकाना पसंद किया जाता है। तो एंजॉय करते रहिए समीर साहब के बोल और हमारे रमेश कुमार जी की फरमाइश, सुनते रहिए।

अब भैया देखो, मोहब्बत में तो सारी बातें आंखों से हो जाती हैं, और हम जैसे अनाड़ी लोगों जिनको आंखें पढ़नी ही नहीं आती, हमारा क्या होगा। फिलहाल के लिए सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल मेरा ये था कि ये जो लोग कहते हैं कि फूलों का बिस्तर होना चाहिए, मैं सच में जानना चाहती हूँ क्या फूलों के बिस्तर पे नींद आती है? क्योंकि मुझे तो नींद रुई के गद्दे पे ही आ रही है, लेकिन क्या आपको आती है फूलों के बिस्तर पे नींद? एक तो वो ठंडा सा लगता है, गीला सा लगता है, और इधर उधर सा लगता है, जब तक वो फूल मेरे पूरे बेड से हटा नहीं देती तब तक मुझे नींद नहीं आती। क्या आपको आ सकती है? हाँ, AI वाला बेड होता है तो बात अलग है, लेकिन AI वाला बेड कहाँ मिलने वाला है। फिलहाल आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, एंड हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी जुड़े हैं आवाज विकास से, लिख रहे हैं उन्होंने जी नमस्ते, यू वेलकम, थैंक यू सो मच, एंड आपको भी नमस्ते, आपका स्वागत करते हैं कॉलोनी गोना में। एंड नाइस सॉन्ग लिखा है सोनिया तिवारी जी ने। इसके बाद भैया मैसेज है बहुत सारे डांसिंग वाले ढिंचिक, और साथ ही लिखा है ये दिल पागल। पागल वागल नहीं है यार, दिल कहाँ से पागल हो जाए, दिल में दिमाग थोड़ी ना होता है। वैसे दिमाग होता है, यानी मेमोरीज होती हैं आपके पास। फिलहाल आइए ट्यून कर लेते हैं अपना अगला गाना। ये फरमाइश थी हमारी रमेश कुमार जी की फ्रॉम महाराष्ट्र, और आप एंजॉय कर रहे थे कुमार सानू अलका जी की आवाज, नदीम श्रवण का म्यूजिक, और बोल लिखे थे हमारे समीर साहब ने। अगली फरमाइश थोड़ा सा दिल को छू जाने वाला, थोड़ा सा आपको रुलाने वाला, क्योंकि राजू सलमानी जी ने भेज दिया है, मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। किसी को ताना मारना हो तो यही गाना आप पकड़ा दीजिए उसे, और उसको लगेगा कि आपने बेइंतहा उसको ताने मारे हैं। फिलहाल एंजॉय करते रहिए, और हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के, अगली फरमाइश को लेकर के। तब तक के लिए आप भेजते रहिए अपनी फरमाइश 6393316429 पर।

हाँ जी भैया, तो आप एंजॉय कर रहे थे हमारे राजू सलमानी जी की फरमाइश, और हमको पीछे से काफी ज्यादा परेशान कर दिया गया ये बोल बोल कर, ताने मार मार के। हम तो दूसरों को तानू मारते हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी ताने झेलने पड़ जाते हैं बॉस। और इसी के साथ आइए ट्यून कर लेते हैं हमारे अगले गाने को, जो कि हमारे निब्बर जी की फरमाइश है, दिल ले गया। दिल क्या जाने कहाँ ले गया, लेकिन आपका दिल कोई। चलिए आप एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपके मैसेजेस की तरफ हम आते हैं कॉलर ट्यून कोना में।

निब्बा जी की फरमाइश को आप एंजॉय कर रहे हैं, दिल ले गया दिल क्या जाने। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आपके चैट बॉक्स में, और अगर चैट बॉक्स के मैसेजेस पढ़े जाएं तो हमारे अरविंद जी लिख रहे हैं फ्रॉम मनकापुर की, हु आर वी टू डिसाइड व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ योर एक्शन, इट इज गॉड्स डोमेन, वी आर जस्ट सिंपली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस। गुड आफ्टरनून आशी मैम एंड सर, मैम एंड सर, फिलहाल मैम मौजूद हैं, सर भी साइड में है कहीं, एंड ऑल राइट, आपने बहुत सही लिखा है कि हम डिसाइड करने वाले कोई भी नहीं होते हैं। फिलहाल आप एक्शंस को देखिए, उसके रिजल्ट ना देखिए, है कि नहीं, क्योंकि हमने हमेशा गीता में सुना है कि किसी भी चीज़ पर यानी कि रिजल्ट का इंतज़ार ना करते हुए एक्शंस को ध्यान दें, और अगर आप एक्शंस अच्छे करते हैं तो रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे। इसीलिए भले ही आप गॉड को कुछ भी समझें या फिर आप ये माने कि सब कुछ गॉड के अकॉर्डिंग चलने वाला है, सब भगवान करने वाले हैं, सब आपको नसीब में मिलने वाला, लेकिन एक चीज़ तो है, अगर आपके एक्शंस अच्छे होंगे, आप ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा शॉर्टकट लगाया बाबूचान, तो इतना जान लीजिए कि फिर शॉर्टकट का तो एक ही रास्ता होता है, छलावा, यानी कि कहीं ना कहीं धोखे की तरफ ही आपको लेकर जाएगा। सो नेवर डिसाइड योर आउटकम बिफोर यू डू एक्शंस। एंड इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून करने के लिए, लेकिन उससे पहले हमारे नागेश्वर जी लिख रहे हैं, मुझे तो कहीं पर भी नींद आ जाती है, हवा आनी चाहिए, पास में मोबाइल चार्ज करने का पॉइंट होना चाहिए। ऑल राइट, मतलब चार्जिंग केबल अगर आपके पास हो, चार्जिंग करने के लिए आपके पास पॉइंट हो, और कहीं भी आपका बिस्तर लगा दे, भले वो जंगल के अंदर ही

राम नरेश जी की फरमाइश आप एंजॉय कर रहे थे यशोदा का नंदलाला, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने पर। लेकिन ये क्या डिमांड आ रही है कि मैम आरजे मैम थोड़ा तेज बोलिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे समझ में नहीं आ रहा है? अभी आप हम कहते हैं कि हम तेज बोलते हैं तो आपको लगता है कि तब भी समझ में नहीं आ रहा है, हम स्लो बोलते तब भी समझ में नहीं आता है। ये तो बड़ा वाला सियाप्पा हो गया है मेरे साथ। अब मैं कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ फिलहाल आपके लिए? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी। वैसे अरबी आती भी नहीं है मुझे। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो हमारे पास आया है वो रीना जी का आया है, रीना शर्मा जी का, और उनका मैसेज भी हमें मिल चुका है। हेलो नंदी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू यू रीना जी, कैसी हैं आप? उत्तराखंड से आप हमें सुन रही हैं, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोना में। आपकी फरमाइश को करते हैं ट्यून, एंजॉय करते हैं और मिलते हैं अगले सॉन्ग अगली फरमाइश को लेकर के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

लगता है आज हमको सब लोग रुलाकर ही मानेंगे। वैसे भी मम्मी ने इतना सुना दिया है कि रोने का दिल कर रहा है, ऊपर से हमारे लिसनर्स ऐसे दिल तोड़ गाने भेज रहे हैं। भाई भाई दोस्तों क्यों, और ऐसे गाने जिनके हमें लिरिक्स भी नहीं याद आते हैं, क्योंकि हम लिरिक्स गाने में हमेशा ही उल्टे करते हैं। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं अगले गाने पर, और चैट बॉक्स में ये खाने पीने की चर्चा ना कीजिए, मुझे भूख लगाती है क्योंकि मम्मी ने खाना भी नहीं दिया है आज घर पे मुझे। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश पर। मेरा रोना धोना हो चुका है और हम ट्यून करेंगे रब्बा रब्बा, बिकॉज थोड़ा सा तड़कता भड़कता गाना आ चुका है हमारे पास। फरमाइश है हमारे रईस साहब की, तो क्यों ना इंजॉय किया।

जाए थोड़ी रईसियत के साथ, और आइए एंजॉय करते रहते हैं, सुनते रहते हैं कॉल ट्यून गोना। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM गोना शहर की धड़कन। मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि हमारे महेंद्र जी की होने वाली है। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो आप एंजॉय कर रहे हैं रईस साहब की फरमाइश, मुझे कुछ कहना है, और हमने बहुत कुछ कह भी दिया है। सोनू निगम साहब की आवाज है, अनु मलिक का म्यूजिक और समीर साहब के बोल से 90s का बहुत ही बेहतरीन गाना। एंड हमारा सॉन्ग प्ले नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, रोना नहीं, हम भी नहीं रोएंगे। चलिए आंसू पोंछ लेते हैं साथ में मिल करके, और अब बढ़ते हैं अगले गाने पर। और अगला सॉन्ग वन ऑफ माय फेवरेट, बिकॉज ये हमारी पसंदीदा नागिन के ऊपर बना है। हम उनको नागिन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इतनी खूबसूरत दिखती हैं नागिन के रोल में। नाम है श्रीदेवी। आइए एंजॉय करते हैं चांदनी फिल्म से।

0: नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।
1: सोनिया तिवारी जी, आपका मैसेज है कि भैया गाना प्ले करेंगे कॉल करने के बाद, बिल्कुल करेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन मैम यू विल हैव टू वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल आफ्टर कॉलिंग, यानी कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कॉल करने के बाद आपकी गाने को ट्यून करने के लिए।
0: यार मुझे तुम करते हो, फिर किस बात से डरते हो, फिर किस बात से डरते हो?
1: अब्बा नहीं मानेंगे।
0: बोलो, बोलो, बोलो ना।

और आप एंजॉय कर रहे हैं महेंद्र जी की फरमाइश चांदनी। हालांकि हम तो काफी ज्यादा एंजॉय कर लिया है। अगली फरमाइश थी हमारे जुबेरिया जी की, लेकिन माफी चाहेंगे, आपके गाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं या सुन रही हैं तो आप वापस से कॉल कर लीजिए। और आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया उस्मान खान जी का, रंग फिल्म से आप एंजॉय करने जा रहे हैं। सोनिया जी, मुझे पता है आपने कब कॉल किया है, एंड इसीलिए बस इंतजार कीजिए क्योंकि कुछ ही पल में आपका गाना हम आपको प्ले करने वाले हैं। धर्मेंद्र मोहन जी के बाद आप ही की फरमाइश है। लिटिल बिट थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि सब्र का फल कॉलोट्यून में ऑफ कोर्स गाने होते हैं।

कितना खूबसूरत और कितना रोमांटिक गाना आप एंजॉय कर रहे थे अलका जी कुमार सानू की आवाज में। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। इसी के बाद आइए बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए। हमारी सोनिया तिवारी जी की फरमाइश हमारे पास है, किसी होटल में जाएं, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, चलो इश्क लड़ाए। हाँ जी, क्या बात है। गोविंदा का गाना है और गोविंदा का सॉन्ग आते ही मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, तो हम अपनी एनर्जी को वाइव में कन्वर्ट करके आते हैं। तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून।

भैया भाई से डरता हूँ। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने को ट्यून करने के लिए। धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश हमारे पास आ चुकी है, पहली पहली बार मोहब्बत की है। बहुत ही प्यारा सा गाना है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फिल्म का है सिर्फ तुम फिल्म से आप एंजॉय करने जा रहे हैं कुमार सानू अलका जी की आवाज में। बहुत ही प्यारा सॉन्ग समीर के बोल है और ऑफकोर्स एंजॉय करते रहिए। कॉल ट्यून गोना मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के जो निशा जी की, अरविंद जी की, मोहम्मद रफीक जी की और जुबेरिया जी की होने वाली है। स्टे ट्यून्ड।

कमाल का दौर था वो भी, जब लोग एक दूसरे से खत लिख कर बात किया करते थे। अब तो मैसेजेस में भी रिप्लाई नहीं देते हैं। पता नहीं क्यों लोगों का लगने लगा है कि अगर हम किसी को देरी से रिप्लाई देंगे तो हमारी वैल्यू बनी रहेगी, और हम किसी को जल्दी जवाब दे देंगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। अब ये क्या बात होती है दोस्तों, आप बताइए, मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक ये। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने को ट्यून करने के लिए। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है निशा जी का, और निशा जी सुनना चाहती हैं सुन सोनियो सुन मेरे यार, खुद से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने को लेकर के, जो कि एक पंजाबी बीच होने वाला है हमारी अरविंद मौर्या जी की फरमाइश को।

इसी के साथ वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए चलते हैं हमारे अगले सॉन्ग को ट्यून करने के लिए। अगला सॉन्ग हमारे अरविंद जी की फरमाइश है, एक पंजाबी गाना, तो एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगली फरमाइश पर, जो कि हमारी मोहम्मद रफीक जी की है, और वो सुनना चाहते हैं तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। और हमारे सोनिया तिवारी जी के पैसे उड़े जा रहे हैं पंख लगा करके, कहाँ जा रहे हैं आपके पैसे, रुकिए रुकिए रुको।

बहुत ही प्यारा सॉन्ग था और ये गाना हम अपनी प्लेलिस्ट में जरूर शामिल करेंगे अरविंद जी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग दिल थाम के बैठिए क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं तो जो याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहें बताइए। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग है और उस वक्त इस गाने को सुन सुन के मैंने ताने बहुत लोगों को मारे हैं फिलहाल के लिए। और ये हमारी फरमाइश है मोहम्मद रफीक जी की, तो एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अपनी आखिरी फरमाइश को लेकर के जो कि होने वाली है जुबेरिया जी की। स्टे ट्यून्ड।

क्या कहना, और कुछ नहीं कहना है मुझे किसी से। आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका जी की आवाज में, प्लस मनप्रीत अख्तर की आवाज में, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। जतिन ललित का संगीत, समीर साहब के बोल थे। और आइए बढ़ते हैं हमारी आखिरी फरमाइश की ओर। जी हाँ महेंद्र जी, आखिरी फरमाइश हमारी ही होती थी, लेकिन तब जब हमारे पास होता है वक्त, जाते जाते हम आपको ये गाना डेडिकेट करके जाते हैं सभी लोगों के लिए, जो कि हमारी जुबेरिया जी की फरमाइश है। लेकिन ये गाना उन सभी के लिए है जिन्होंने आज अपनी फरमाइशें हम तक नहीं भेजी हैं। तो आप एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ऑफकोर्स आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आज की सबसे खूबसूरत फरमाइश किसकी लगी ये भी ज़रूर से बताइएगा। एंड अब चाहूँगी आपसे इजाज़त, अब मुलाकात होगी आपसे अपने फ्राइडे स्पेशल वाले शो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना FM रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9860 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9286-9860-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोड़ा शहर की धड़कन, आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके शाम के स्पेशल शो गोधूली में। आपको पता है कि जब भी हम गोधूली में आते हैं, गोंडा की एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को साथ में लेकर के आते हैं। आज जो पर्सनालिटी मौजूद है, दरअसल उनका नाम आपने कई बार सुना होगा और शायद कभी कभी तो देखा भी होगा, लेकिन आज हम उनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं, यानी काफी बातचीत हमारी होने वाली है उनके रिगार्डिंग और उनके काम के रिगार्डिंग। दरअसल आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, वो समाज के चौथे स्तंभ से आते हैं, यानी उसकी एक ईंट का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में आज मौजूद हैं मिस्टर दिवाकर प्रताप सिंह, रिपोर्टर एट दैनिक भास्कर। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं हमारे इस स्पेशल शो में।
2: थैंक यू बॉस,
1: थैंक यू सो मच। और जैसा कि हमारे श्रोताओं को हमने बोल दिया है कि भाई आज हमारे बीच दैनिक भास्कर के रिपोर्टर दिवाकर प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी को अंदाजा इस बात का है कि रिपोर्टर्स जो होते हैं वो सवाल करते हैं। आज एक ऐसी सीट पे हमने बैठाया जहां पे आज मैं सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे, और सबसे पहला सवाल मेरा आपके ही बारे में, चूंकि हमारे श्रोतागण आपके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जान जाए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और परिवार के बारे में आप बताएं।
2: जी, मेरा नाम दिवाकर प्रताप सिंह है। बेसिकली मुझे लोग जानते हैं पूरे जिले में तो पत्रकारिता बूते ही जानते हैं
1: जी।
2: तो पहचान जो मिली यहीं से मिली, इसलिए पत्रकारिता को मैं बहुत बहुत दिल से दुआएं देता हूं, बहुत ऊपर रखता हूं, और उसकी समझ ले पूजा मैं करता हूं, करना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा यहाँ से करीब 28 किलोमीटर दूर उमरी बेगमगंज गांव है
1: जी,
2: वहीं मेरी पैदाइश है, और घर में हमारे पिताजी, माताजी, हमारी पत्नी और दो बच्चे, इतने लोग हैं। मम्मी हमारी स्वास्थ्य विभाग में जॉब करती थी, बीते 2021 में रिटायर हुई हैं। पापा भी स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़े हुए थे, तो पूरा घर का जो एटमॉस्फेयर है वो स्वास्थ्य विभाग मेडिकल से ही जुड़ा रहा है। हम भी वहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब किस्मत कर करके कहां कहां से यहां ले आई।
1: एग्जैक्टली, तो स्वास्थ्य विभाग में मम्मी और पापा है, कहीं सुबह आपको गुनगुना पानी पीने के लिए मजबूर तो नहीं होना पड़ता है?
2: नहीं, लेकिन सेहत को लेकर काफी वो
1: हिदायतें दी जाती
2: exactly.
1: तो मुझे पहले ही लग गया था कि भाई मम्मी और पापा एक तो वैसे ही हिदायतें देते हैं, और स्पेशली जब स्वास्थ्य विभाग से हो तो हाथ साफ करते रहना है, टाइम से पूरी नींद लेना है, और खाने में क्या खाना है, स्पेशली ये चीजें बहुत होती हैं। चलिए, बहुत इंटरेस्ट आने वाला आपसे बातचीत करने में, चूंकि आप खुद एक रिपोर्टर हैं और आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिपोर्टिंग पे लगाया है, लेकिन उससे पहले चूंकि हम आते हैं आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, और उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, फिर आपकी हायर एजुकेशन की तरफ हम जानना चाहेंगे।
2: जी, प्रारंभिक शिक्षा हमारी हुई थी तुलसीपुर से, जो कि अब बलरामपुर जिले में है, पहले गोंडा में ही हुआ करता था, गोंडा बहुत बड़ा जिला था
1: जी।
2: तो हमारी माता जी की पहली पोस्टिंग वहीं पे हुई थी, स्वास्थ्य विभाग में ही, तुलसीपुर में। तो मैं क्लास फर्स्ट से लेके हाई स्कूल तक वहीं से पढ़ा हुआ। वहां के बाद मम्मी ट्रांसफर होके गोंडा आ गई, तो पहले गोंडा, अब ये समझ लीजिए गोंडा का नाम कैसा था, कि पापा हमारे राजी नहीं थे कि मैं गोंडा रुकूं। हाई स्कूल मैं वहां से निकला पास आउट करके, वो भी उस टाइम की बात है, उस दौर में जब नकल अध्यादेश हुआ करता था, 98 की बात है।
1: ओके,
2: तो 98 में 28% रिजल्ट था पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश का।
1: माय गॉड।
2: और हमारे यहाँ हमारे बैच में 232 लड़के थे, उसमें से शायद 34 या 36, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन 40 के अंदर ही थे, इतने पास हुए थे, बाकी सब फेल
1: हो गए थे। ओके,
2: उसमें से 5 लड़के फर्स्ट क्लास थे, जिसमें एक नाम हमारा भी था। और अच्छा लगता है अब सोच के कि पहले और अब में बहुत फर्क। तो वहां से फिर पिताजी ने कहा कि इनको गोंडा नहीं रुकना है, तो इंटरमीडिएट में दाखिला उन्होंने कराया हमारा फैजाबाद ननिहाल में।
1: ओके,
2: तो ननिहाल में ही मौसी जी का जो गार्जियनशिप थी वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, अब मैं तो सोचता हूँ कि होनी भी चाहिए कभी कभी। तो वहाँ से इंटरमीडिएट किया हमने, फिर वहाँ इंटरमीडिएट करके फिर उन्होंने फैजाबाद नहीं रोका पापा ने, क्योंकि फैजाबाद में एक ही डिग्री कॉलेज हुआ करता था उस टाइम पे, काम साकेत,
1: साकेत राइट,
2: जो बदनाम हुआ करता था पॉलिटिक्स के लिए। तो वहां से उठा के उन्होंने कहा कि ये पढ़ेंगे सुल्तानपुर के एनआई में, जहाँ का वो उसमें मशहूर था अपनी अनुशासनशीलता के लिए, डिसिप्लिन वहाँ का बहुत अच्छा था।
1: ओके,
2: वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होती थी। तो वहाँ पे दाखिला मिला, एंट्रेंस दिया हमने, बीएससी में दाखिला मिला। तो जेडबीसी मेरा ग्रुप था, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, लास्ट ईयर बॉटनी केमिस्ट्री से हमने फाइनल किया, बीएससी पास आउट किया। उसके बाद एक साल का थोड़ा टेस्टी था मेरे साथ, फिर आगे किस्मत चली, पीजी हमने बनारस से किया एमएससी में, वो एनवायरमेंटल साइंस से था।
1: ओके, तो चूंकि हम आपसे इसी बात के दौरान एक बात और जहन में आ रही है, क्योंकि कई बच्चे ऐसा होता है जो खुद ही चूज कर लेते हैं कि उनको करना क्या है, और ज्यादातर ऐसा भी देखा जाता है कि जो पेरेंट्स गाइड करते हैं उस अकॉर्डिंग वो करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कोई अपना एम्बिशन था और पिताजी का उसमें लेकर के उनका क्या मानना था।
2: ये बहुत अच्छी चीज आपने कही कि जैसे आप, हमने आपको बताया कि घर का पूरा माहौल स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा था।
1: Exactly.
2: तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अपने आप में हो ही जाता है
1: जी।
2: खुद भी आप देखते होंगे। तो मेरा भी मन था कि जैसे सब लोग अगर मेडिकल फील्ड में हैं तो हम भी उसी में जाएं, डॉक्टर बनने का मन था। तो इंटरमीडिएट के बाद माम ने पापा से कहा कि हमको एक साल दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हम तैयारी करेंगे। पापा भी वहाँ थोड़ा सा पहले का बैकग्राउंड था, क्योंकि मैं पहला बच्चा था, आप ये सबसे बड़ी चीज है, मैं अपने घर में पहला बच्चा था जो ग्रेजुएशन कर रहा था।
1: ओके,
2: ये सन 2000 की बात है। मैं अपने घर में पहला बच्चा था, जबकि हमारे घर में बहुत पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन सब इंटरमीडिएट के बाद छोड़ देते थे।
1: इवन
2: पापा हमारे भी, वो भी इंटरमीडिएट तक ही पढ़े थे। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। ग्रेजुएशन उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी
1: जी।
2: और बीएससी करना है, तो खैर साइंटिस्ट वो साइंस से ग्रुप से थे, तो बीएससी में हमारा खुद का इंटरेस्ट था, तो उसके चलते मैं बीएससी में चला गया। लेकिन हमारा मन था कि हम पहले मेडिकल की तैयारी करें, एक साल हम दें, मौका दें, तैयारी करें, उसके बाद फिर पढ़ते हुए फिर कंपटीशन में बैठेंगे। लेकिन मौका चूक गया, थोड़ी सी वो टीस अभी है।
1: वो टीस आज भी बाकी है थोड़ा सा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपने बताया, चूंकि हम भी मानते हैं जिस तरह के एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं वैसे ही आप बनने की सोचते हैं, घर में स्वास्थ्य विभाग में मम्मी पापा दोनों लोग, तो कहीं ना कहीं माहौल होता है। और मेरे ख्याल से उस वक्त सीपीएमटी हुआ करता रहा
2: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीपीएमटी होता था, एएफएमसी होता था और आपका पीएमटी होता था
1: जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपने बताया कि उसके बाद आपने ग्रेजुएशन अपना मुकम्मल किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या इरादा था, क्योंकि आपको आना तो था मेडिकल सेक्टर में बट मौका नहीं मिल पाया, देन फिर आपके जहन में क्या आया कि आपको क्या करना चाहिए।
2: ग्रेजुएशन करने के बाद, क्योंकि हमारा ग्रुप था जो फाइनल हमने किया था बीएससी, तो बॉटनी केमिस्ट्री से
1: जी,
2: तो फिर कहा कि अब हमने सोचा कि अब थोड़ी सी इससे ही इसी में आगे बढ़ते हैं, तो मेडिकल में नहीं जा पाए तो रिसर्च में चलते हैं।
1: क्या बात है, मिलती जुलती फील्ड।
2: तो फिर बायोकेमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी कैंपस में हमने एंट्रेंस डाला, 26 सीटें थी
1: जी
2: उस टाइम पे, 21वीं रैंक हमारी थी एंट्रेंस में, 7 या 8 हजार बच्चों ने एग्जाम दिया था उसके, और साथ में ही हमने कहा क्योंकि हाँ ये मैं अभी इस पे बाद में आऊंगा कि एक ऑप्शन हमने लेके चला था बाद में, कि अगर नहीं यहाँ होता है एमएससी में तो हमने यूपीएम कैट, उस समय होता था यूपीएम कैट से एमबीए होता था।
1: ओके,
2: कि अगर यहाँ नहीं सिलेक्शन होता है तो एमबीए करेंगे,
1: बैकअप प्लान।
2: उस समय एमबीए का बहुत ज्यादा क्रेज, तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से अब या क्या कहें, किस्मत को नहीं मंजूर था। तो एमएससी में भी एंट्रेंस में आ गया हमारा, क्लियरेंस आ गई, यूपीएम कैट में भी आ गया।
1: क्या बात है,
2: काउंसलिंग लेटर दोनों आ गया। उसी दौरान हमारे यहाँ, मतलब हमारे एक दोस्त थे, उनके भाई की शादी थी
1: जी,
2: तो वहाँ हम लोग गए थे, काफी इंजॉय किया। तो दोस्तों की शादी में नाचना गाना होता है।
1: Exactly.
2: तो नाचते गाते तो वहाँ से आए तब तक ठीक थे, लेटे रूम पे वहीं सुल्तानपुर में, शाम को उठे तो कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, पेन किलर लिया, फिर वो सुबह फिर दर्द फिर लिया, करते करते ये 2-3 दिन गुजर गए। तो पापा घर पे फोन करके पापा को बताया, तो वहाँ भी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर वो डायग्नोस नहीं कर पाए। तो फैजाबाद फिर नजदीक था, फैजाबाद भी दिखाया, यहाँ अपने यहाँ 2-3 डॉक्टर अच्छे थे लेकिन डायग्नोसिस सही नहीं हो पाई।
1: ओके,
2: तो ठीक उसी टाइम पे उसी साल एक डॉक्टर यहाँ, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा जिंदगी भर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अपने रिटायर हुए थे शायद उस साल या उसके एक साल पहले, डॉक्टर सी एम आर सिंह चौधरी।
1: ओके,
2: ऑर्थोपेडिक्स थे, वो लखनऊ से मंगलवार और शुक्रवार आते थे। तो ऐसे ही एक ने बताया, मेडिकल स्टोर वाले ने, जहाँ से दवा मिल रहा था। तो मैं दर्द से इतनी तकलीफ में करा रहा था कि मैं परेशान था, यहाँ तक कि कभी ख्याल आता कि मेरा होगा क्या। तो उसने बताया, तो हम लोग, पापा को पता चला तो पापा ने बताया हम क्या एक बार उनको भी दिखा लेते हैं। तो उन्होंने हमको देखा, पूरा 10 से 15 मिनट पूछताछ की, तो उनके दिमाग में कुछ आया तो उन्होंने खाली एक एक्सरे कराया, एक ब्लड टेस्ट कराया। 2 घंटे के बाद पूरी डायग्नोसिस उनकी आ गई। तो उन्होंने कहा पापा से कि ऐसा है कि बेटे को थोड़ा सा अब आपको रेस्ट कराना पड़ेगा। पूछे क्यों? क्योंकि बेटे की लंबर रीजन में, बैक में, इसको टीबी जनरेट हो गई, ट्यूबरकुलोसिस।
1: ओके।
2: L4 L5। तो उन्होंने कहा कि फिर ये कल आप शुक्रवार को, अगले मंगलवार को दिखाया, शुक्रवार को आइए, हम इनको प्लास्टर बांधेंगे। तो शुक्रवार को नहा के गए। मतलब इवन आप ये समझ लीजिए, रिक्शे पे अगर मैं बैठता था, रिक्शा अगर कहीं छोटे से गड्ढे से भी गुजरता था तो वो दर्द सहा नहीं जाता, तो वहां फिर उन्होंने प्लास्टर किया। 4 महीने में 2 बार, एक बार चढ़ाया 2 महीने के लिए, फिर 2 महीने के लिए, 4 महीने प्लास्टर रहा। लेकिन उन्हीं की उस डायग्नोसिस, उस ट्रीटमेंट से 4 महीने बाद प्लास्टर खुला और मैं बिल्कुल फिट था।
1: क्या बात है।
2: उस टाइम पे जब मैं बीमार था, मेरा वजन 54 हुआ करता था इसी हाइट पे, और जब प्लास्टर खुला तब 76 था। हाई प्रोटीन डाइट होती थी, क्योंकि उन दवाओं को हजम करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट ना खाओ तो दवाएं बहुत रिएक्शन करती थी।
1: एग्जैक्टली।
2: तो वो फिर जब इन्फेक्शन खत्म हो रहा था तो शरीर में भी, बॉडी में भी लग रहा था, तो फिर फिट हो गए धीरे धीरे। लेकिन फिर वो उस दौरान, उस इलाज के दौरान जो खोया हमने, वो शायद जिंदगी फिर दोबारा नहीं दे सकती। क्योंकि वो 2 अपॉर्चुनिटी में से कोई एक भी अगर मुझे मिल जाती तो शायद मैं यहाँ आपके सामने नहीं बैठा होता। फिर उस दौरान डिप्रेशन में भी रहा, मैं किसी को बोल नहीं पाता था क्योंकि पापा से डरता था, पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो थोड़ी बहुत अगर बात हो पाती थी ज्यादा तो मम्मी से हो पाती थी, पापा से खुल के बोल नहीं पाते थे। हाँ, ये थोड़ी तकलीफ है कि अगर उस टाइम पे थोड़ा सा सपोर्ट मिला होता तो और अच्छा होता।
1: मतलब ये कहीं ना कहीं लगा कि शायद कुछ गैप भी रहा है। क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो बहुत कुछ बेहतर तो था हमारी जनरेशन में, लेकिन एक जो गैप होता था वो डर शायद थोड़ा सा ज्यादा हुआ करता था,
2: ज्यादा हुआ
1: और अपनी बातों को कह नहीं पाते थे।
2: एग्जैक्टली।
1: और आज वो चीज हमें अच्छी लगती है कि जो पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं बहुत फ्रेंडली हो गए। इवन आप खुद अपने बच्चों के लिए हो गए।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: बेशक। तो ये कहीं ना कहीं आपने जिस तरह बताया कि एकदम पीक टाइम पे आपके साथ इस तरह का इंसिडेंट होना, वो 4 महीने का लॉस, वो सिर्फ 4 महीने का लॉस नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा लॉस,
2: बहुत बड़ा लॉस था
1: रहा आपके साथ में। लेकिन उसके बावजूद आपने जो अपॉर्चुनिटी मिस की उससे अलग फिर अलग काम किया। तो मैं अगर आपकी लाइफ को देखूं तो काफी राइट एंड लेफ्ट करके चल रही है अभी तक की जो जर्नी की बात हुई है, और मुझे ऐसा लगता है एक रियल लाइफ शायद ऐसी होती है, क्योंकि हम जो प्रेडिक्ट करते हैं वो हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल होती है लाइफ, और वो चीज आपकी कहीं ना कहीं बातचीत में नजर आ रहा है। क्योंकि अब छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल एड ब्रेक का वक्त हो गया है, आने के बाद हम आपकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, पत्रकारिता के बारे में, कि सब कुछ करने के बाद एट द एंड आप एक पत्रकार कैसे बने, कहां से सफर शुरू किया, सबसे पहले कौन सा काम किया पत्रकारिता में, और पत्रकारिता को ही क्यों चुना, ये सारी बातें करेंगे ब्रेक के उस पार। तो अपने लिसनर से कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286-9976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान। आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM। ये है गोंडा, शहर की धड़कन। और आज हमारे साथ में दैनिक भास्कर के रिपोर्टर मिस्टर दिवाकर प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। एक बार वापस से हम आपका वेलकम करते हैं।
5: थैंक यू।
4: और चूंकि हम जर्नी की बात आपकी कर रहे थे और जैसा कि अभी तक आपने बताया, मैं बहुत सारी चीजें अभी शायद बोल पा रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ से रिलेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई कोई पार्ट में मैं अपने आप को ही देख रहा था आपकी लाइफ में भी। और ये बहुत सच्ची बात होती है कि जब कोई अपनी लाइफ के बारे में बताया और आप खुद को वहाँ विजुलाइज करें, ये बहुत रियल होता है, बहुत जेन्युइन होता है। थैंक यू सो मच टू यू। तो अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि ये सारी पढ़ाई हो गई, अपॉर्चुनिटी आपकी आई, आप क्रैप नहीं कर पाए, कुछ आपके साथ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, लेकिन एट द एंड आपने कहीं ना कहीं तो शुरुआत की होगी, जॉब की होगी। तो पहली शुरुआत आपकी जॉब करने की, अर्निंग करने की कौन सी थी, कहाँ से थी?
5: पहली शुरुआत मेरी जॉब की हुई थी बनारस से, जिसमें मैं एक फार्मा कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुआ था। अब इसको लक कहें या कुछ और, पहली बार इंटरव्यू मैंने फेस किया जिंदगी में। और कंपनी का सेल्स मैनेजर बैठा हुआ था, मेरे साथ कम से कम 20 लड़के थे, मैं पांचवें या छठे नंबर पे गया था। उसके बाद उसने इंटरव्यू रोक दिया।
4: ओके।
5: कहा कि मुझे और लड़कों को देखना ही नहीं है। तो इलाहाबाद और बनारस का हेडक्वार्टर खाली था। बेटा कहाँ जाओगे? तो बनारस तो इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मैंने इलाहाबाद का नाम बहुत सुना था। तमन्ना भी थी इलाहाबाद में रह के पढ़ने की, लेकिन वो शायद इसमें तो नहीं लिखी थी। मैं सर इलाहाबाद कर दीजिए। कह नहीं नहीं मैं तुमको बनारस भेजूंगा। मैं कहियो ये क्यों सर? कह नहीं वो अच्छी जगह है, तुम्हारी जो एनर्जी है उसके लिए वो अच्छी जगह है। क्या ठीक है, कोई नहीं, काम करना ही है।
4: Exactly.
5: 100 किलोमीटर इधर 100 किलोमीटर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बनारस पहुंचे, काम किया। वो उस कंपनी का बहुत डल हेडक्वार्टर हुआ करता था, उसको 2 महीने के अंदर हमने निकाल के यूपी में टॉप पे लाया था।
4: ओके।
5: और एक क्वार्टर बीता तो उसके बाद पूरे यूपी में सेल्स में टॉप था मैं।
4: वाओ, क्या बात है।
5: हमारे साथ एक लड़का और था, तो सबकी सेल्स काउंटर टॉप पे हमारी सेल्स थी। तो मजा आया वहां से, काम करने का मजा तो आया, लेकिन वही पीछे की एक टीस बनी रही, वो चिंता नहीं छोड़ती थी। उसी के चलते फिर हमने एक साल बाद फिर MSc ज्वाइन किया।
4: ओके।
5: PG कंप्लीट किया, लेकिन फिर वो एक बार जब कमाना शुरू कर देता है आदमी, जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, आगे सपने देखना शुरू कर देता है, तो पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल होता है।
4: एग्जैक्टली।
5: और मुड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप मुड़ोगे तो आपको केवल रिग्रेट फीलिंग होगी, रिग्रेट की फीलिंग आएगी, को आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा।
4: एग्जैक्टली।
5: और आदमी को खुद मोटिवेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कहीं रील देख के, किसी का वो स्टेज शो देख के, इससे आप मोटिवेट नहीं होगे। आप जब तक जिंदगी में खुद मोटिवेट नहीं होगे, खुद के अंदर जज्बा नहीं रखोगे, तब तक नहीं होगे। खुद कभी नहीं हारना चाहिए। आदमी उसी दिन हारता है जब खुद शीशे के सामने खुद से हार जाता है।
4: एग्जैक्टली। और इसीलिए शायद कहते हैं भी हैं कि खुद को जीत लिया तो सबसे बड़ी बात,
5: बिल्कुल बिल्कुल,
4: खुद से हार गए तो फिर कोई जीत मायने नहीं रखती है। ये बिल्कुल सच बात है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि आपने उसके बाद जो है वो MRship के लिए अप्लाई किया, आपने उसमें परफॉर्मेंस भी दी, अच्छा किया। चूंकि किसी भी काम में टॉप को ले जाना आसान नहीं होता, लोग बहुत बहुत साल लगा देते हैं, नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि आपने कुछ स्पेसिफिक कोई चीज फॉलो की थी, या बचपन से आपके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है कि आप चीजों को जिसको भी करते हैं उस पे कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, है क्या? एक्चुअल में मैं जानना चाहता हूँ उसके पीछे की वजह क्या है।
5: होता क्या है कि जैसे हमारे अंदर उस काम को करने के लिए एक्साइटमेंट कितना है,
4: एग्जैक्टली
5: वो ज्यादा इम्पैक्ट देता है। तो जब मैं गया तो सबसे बड़ा अंदर से एक वो फीलिंग आ रही थी, नहीं यार मैं तो नौकरी करने लगा है नहीं कि नौकरी करने लगा। वो अंदर की फीलिंग जो आई पहली बार कि नौकरी करने लगा, पहली सैलरी जब आई हमारे अकाउंट में तो उसकी फीलिंग अलग थी। और उस बार जब पहली सैलरी मेरी आई थी, मैंने पहला काम यही किया था, एक साड़ी मम्मी के लिए मैंने खरीदी थी बनारस से, वो मम्मी आज भी रखी हुई है।
4: पहली सैलरी की साड़ी, क्या बात है।
5: और उसके वही कहना कि आपको आप खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, कोई मिलेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे अजनबी शहर था, अजनबी लोग थे, कोई समझने वाला था नहीं। आपको खुद सब कुछ करना है, आपको कैसे सुबह तैयार होना है, शाम को कैसे जाना है, कैसे आना है, सब कुछ मैनेज करना है खुद, और खुद को अपने लिए तैयार रखना है।
4: एग्जैक्टली क्योंकि मुझे भी ये अंदाजा इस बात का है कि जब आप अजनबी शहर जाते हैं और वहाँ अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इट मींस कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, आप बहुत कंसंट्रेटेड हैं, आप उस काम को करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, तभी वो पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि आप अपने शहर में तो आराम से, क्योंकि आपके इतने वैसे कॉन्टेक्ट होते हैं, आप लगा लेते हैं, बट अगर अनजान शहर में कर रहे हैं तो रियली अप्रिशिएबल है। बहुत सही बात है। अब चूंकि इसके बाद हम आते हैं कि भाई एक जहन में क्वेश्चन आया है कि कहां आप हेल्थ सेक्टर में, कहां पत्रकारिता, मतलब बहुत दूर दूर है, हालांकि दोनों ही समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक को कहते हैं कि भाई ये भगवान का रूप है, डॉक्टर्स होते हैं, जीवन की रक्षा करते हैं। दूसरे को कहते हैं कि समाज में जो फैली बुराइयां हैं उसको दूर करने का काम, निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में बोलने का काम। तो वहां से यहाँ का सफर, मतलब ये क्या जहन में आया, किसी चीज ने आपको इंस्पायर किया, किसी ने आपको कहा कि आप पत्रकारिता में आइए, या कोई ऐसी घटना जिसके बाद आप इस डायरेक्शन में आ गए?
5: वहाँ बनारस में ही जब मैं जॉब किया करता था उसी दौरान हमारे एक मित्र थे, तो वहाँ से एक सांध दैनिक मतलब इवनिंग न्यूज़पेपर निकलता है काशी वार्ता
4: जी,
5: तो उसमें वो थे, तो वहाँ एक उसमें लेख लाता है मेडिकल्स, तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आपको जानकारी काफी है तो क्या आप लिखना पसंद करेंगे? हमने क्या, तो उन्होंने कहा कि चिकित्सीय कॉलम आता है, तो हमने देखा तो इंटरेस्ट आया मुझको तो लिखने लगा। तो हर हफ्ते में एक दिन एक डॉक्टर से बातचीत करके, सारे डॉक्टर में कांटेक्ट के थे, बैठ जाता था उनसे, ये नहीं बताता था कि ये मैं आपको लिखूंगा, आप पढ़ेंगे, छपेगा, कुछ नहीं, मैं केवल उनसे बातचीत करता था आधा घंटे बैठ के, और उसी पे अपनी पूरी इंटरव्यू उनकी लिख के दे देता था, छपता था, तो काफी अच्छा लगता था। तो वहां से धीरे धीरे लिखने का जो जिज्ञासा थी वो जगी और उसको मजा आया फिर करने में। और घर वहां से लौटने का भी, मम्मी की तबीयत अचानक फिर खराब रहने लगी, बिगड़ने लगी, उनकी चिंता उनको ज्यादा बढ़ाने लगी, अकेला बच्चा था घर का। तो लास्टली 2008 में मैं वहां से घर आ गया। तो घर आ गया तो अब बीच में हमने 2006 में एक कंपनी में भरी मीटिंग में कुछ सेल्स डाउन हुई थी, कुछ 1.5 साल के अंदर मैंने प्रमोशन भी ले लिया था, ये सबसे बड़ी बात थी।
4: ओके
5: 2004 में ज्वाइन किया, 2005 के जुलाई के आसपास मैंने प्रमोशन भी ले लिया था। तो वहाँ पे एक बच्चे को, एक जो हमारा एमआर था उसके चलते सेल्स डाउन हुई थी, तो आगरा में मीटिंग थी, मैंने थोड़ी सी कड़वी जबान बोल दी, तो वहीं टेबल पे मैंने इस्तीफा फेंक दिया, चला आया था।
4: ओके
5: फिर वहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया मेडिकल में ही।
4: वहीं बिजनेस भी स्टार्ट किया, क्या बात है।
5: फार्मा कंपनी स्टेबल की रजिस्ट्रेशन कराया, फार्मा कंपनी का 2 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड कराए, और 2 हेडक्वार्टर भी शुरू किए आजमगढ़ और बनारस, लड़के भी अपॉइंट किए। फिर धीरे धीरे करते 2 साल और बीते, कमाई भी ठीक ही ठाक हो रही थी। उस दौरान भी अपनी एक गाड़ी, एक डेवो सीएलओ आती थी पहले, वो खरीद ली थी, सेकंड हैंड थी लेकिन अपनी थी, एक जमीन भी खरीद ली थी, लेकिन फिर वाइंड अप किया तो इधर उधर करते करते वहां उसको हटा दिया। और जब वाइंड अप करते हैं आप, कभी भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है या कोई आप सेटअप वाइंड अप करते हैं तो आपका नुकसान ज्यादा होता है।
4: एग्जैक्टली
5: क्योंकि लोगों को पता चल जाता है ये बंद कर रहे हैं तो
4: गर्ज है आपकी,
5: वो पैसा दबा देंगे आप। तो नुकसान हुआ, लेकिन अब मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता थी तो आ गए। अब यहाँ आए तो दिमाग में कीड़ा मेडिकल का ही था, तो यहाँ आए फिर हमने कहा कि अब इसको पूरा कैसे किया जाए, जो अंदर की खुन्नस लगी हुई है उसको पूरा कैसे किया जाए। तो यहाँ फिर आके हमने फिजियोथेरेपी शुरू किया।
4: ओके
5: डिप्लोमा किया फिजियोथेरेपी में। तो और फिर 2009 आते थे फिर शादी हो गई, तो मम्मी की मेन टेंशन वही थी कि लड़का बाहर है बिगड़ ना जाए, तो 2009 में फिर करके जल्द शादी हो गई, 2010 में फिजियोथेरेपी कंप्लीट हो गई, फिर हमने क्लिनिक स्टार्ट कर दी।
4: ओके
5: अपने गांव पे ही
4: एज ए फिजियोथेरेपिस्ट।
5: हाँ गांव पे ही, गांव पे क्लिनिक स्टार्ट कर दी। फिर 2011 में युवा, तब फिर जॉब की सीकिंग शुरू हो गई कि जॉब कैसे लगे, जॉब कैसे लगे। तो 2011 में फिर हमने बीएड भी किया 2011-12 सेशन में, लेकिन फिर उस टाइम थोड़ा सा वो था कि एक साल में लेट हो गया, नहीं तो जॉब लग जाती बीएड में प्राइमरी टीचर में। फिर यहाँ भी इंटरेस्टिंग है मीडिया में आने का, गोंडा में हमारी एक छोटी सी हमारे घर पे प्रॉब्लम थी, उसको वहाँ लोकल रिपोर्टर जो थे वहाँ पे हमने 10-15 दिन दिया कि भैया इसको छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप छाप दीजिए। रोज मैं देखता अखबार नहीं छपी, रोज मैं देखता अखबार नहीं छपी, रोज मैं देखता अखबार नहीं छपी। बस वहीं से दिमाग घूमा, पता किया हमने, तो पता चला कि हिंदुस्तान में उस पर्टिकुलर हेड उमरी बेगमगंज हेड हुआ करता था, अभी भी है, हिंदुस्तान में रिपोर्टर की जगह खाली है, यहाँ कोई नहीं। अब कोइंसिडेंट देखिए, मैं आया गोंडा, यहाँ पे हिंदुस्तान में जो ब्यूरो चीफ थे वो बनारस के निकले, मिस्टर आशुतोष पांडे जी, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने फिर जानकारी ली, मैं ये बताया कि मैं बनारस से आया हूँ, तो उनको इंटरेस्ट आ गया, तुरंत बिठाया, क्या कि अब एक पन्ना लिख के दो हमको, लिख के दिया। तो उन्होंने पूछा कहाँ इससे पहले कहीं लिखा है, तो उन्होंने बताया कि आपके वहाँ काशी वार्ता में। अच्छा अच्छा, उन्होंने कह दिया अब कल से तुम आपसे खबर भेजो वहाँ पे। शुरू किया, खबर जब शुरू हो गई छपने भी लगी, और जो खबर मैं लिख के आया था प्रैक्टिकल के तौर पे वो सुबह छपी मिली हमको, तो अच्छा लगा कि जो जो काम मैं 20 दिन से कर रहा था दूसरे को कह रहा था वो मैंने खुद किया और दूसरे दिन आ गया, तब इंटरेस्ट आया। लेकिन पत्रकारिता को लेकर लोगों के समाज में अभी भी जो है, जो छोटे शहरों में या छोटी जगहों पे बहुत ज्यादा
4: भ्रांतियां
5: हैं, अच्छी नजरों से नहीं देखते
4: जी।
5: तो पापा ने बहुत हम तो डांट पिलाई, ये क्या है अब पत्रकार बनोगे, ये करोगे वो करोगे। तो पहले गांव पे थे, हमको कोई पहचानता नहीं था क्योंकि बचपन से बाहर रहते थे, तो ये होता था ये उनके लड़के हैं, उनके पोते हैं, ऐसे लोग जानते। तो जब लिखना शुरू किया, दो चार दिन बीते, दो हफ्ते बीते, फिर एक एक खबरें निकलने लगी अच्छी अच्छी, तो ये लिख कौन रहा है, तो पता चला। फिर उसी दौरान हमने मई जून में शुरू किया था, जुलाई में बाढ़ आ गई, तो हमारा जो इलाका है उधर का वो बाढ़ से बहुत प्रभावित होता है, तरबगंज और करनेलगंज
4: जी।
5: तो हमारे गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर पे घाघरा है, तो बाल वहाँ बहुत बांधा कटने की ये सब बहुत होती दिक्कतें। तो उस दौरान हमने वो जो शौक था वो काफी चरम पे था, तो क्लिनिक भी करते थे, ये भी करते थे। अब आप सोच ली, शाम को मैं 5 बजे निकलता था बाढ़ पे जाके, बाढ़ के क्षेत्र में जाता था बाइक से, वहाँ बंधे पे पूरी फोटोज वगैरह जो हमको समझ में आती थी लेता था, और वहाँ से सीधी बाइक स्टार्ट होती थी 40 किलोमीटर दूर से, और यहाँ आता था, फोटो देता था, खबर देता था, और फिर पहुँच जाता था वापस घर 7:30 तक। तो अगस्त में लगातार 10 दिन हमारी खबर फोटो फ्रंट पेज पे आ दी, तो वो बड़ा मजा आया देख के। अगर खबर आई तो दिवाकर सिंह, खबर नहीं आई तो केवल फोटो है तो उसमें दिवाकर सिंह का नाम लगा हुआ है, तो वो देख के मजा आया। और उसी दौरान एक खबर हमारी फ्लैग छपी थी, जो जिसको आप लोग अखबार में ऊपर की लीड होती है फ्रंट पेज की सबसे ऊपर,
4: जी जी,
5: उसको फ्लैग बोलते हैं।
4: ओके,
5: वो फ्लैग की खबर छपी थी, एक स्कूल था वैसे बाढ़ के दौरान, कवरेज के दौरान हमको देखा छप्पड़ में चल रहा था बाढ़ बंधे के किनारे। तो उसने ऐसे पूछा बच्चों से, तो क्या प्राइमरी स्कूल है, हमने कहा प्राइमरी स्कूल छप्पड़ में चल रहा है। तो एक लड़का वहाँ पढ़ाता मिला, हम कहे आप कैसे, कहे नहीं वो हमको मास्टर जी ने रखा है यहाँ पे, महीने का 2000 देते हैं, हम यहाँ पढ़ाते हैं। हम कहे मास्टर जी कहाँ है, कहे वो तो फैजाबाद रहते हैं। तो हम कहे ये स्कूल कहाँ का है, कहे ये कोयलावर माझा जो नदी के उस पार वो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का था, और वो स्कूल चल रहा था गोंडा में। अब मैं आया, खबर लिखा, प्रभाजी को बताया, क्या खबर तो अच्छी है, खबर उन्होंने पढ़ी रखी, फोटो को सेव कर ली, 2-3 दिन खबर नहीं लगी, हमके लगता है हमसे कुछ गलती हो गई। तो हमने कहा सर क्या हुआ, खबर में कुछ कमी थी क्या, कि नहीं नहीं बेटा कमी नहीं है, काम हो रहा, संतुष्ट नहीं हुआ मैं। लेकिन फिर वही खबर जब अगले दिन हमने फ्लैग छपी देखी, हेडिंग उसकी थी फैजाबाद का विद्यालय चल रहा गोंडा के तटबंध पर, यही हेडिंग थी, इसी हेडिंग से खबर ऑल ओवर इंडिया छपी, मतलब हिंदुस्तान के जितने एडिशन होते थे और हिंदुस्तान टाइम्स जो इंग्लिश वर्जन है इसका, सब में छपी थी वो खबर।
4: क्या बात है।
5: अब सुबह हमारे फोन घनघनाने लगे मोबाइल, कहीं सहारा समय वाले का फोन आ रहा है, कहीं GTV का फोन आ रहा है, कहीं आज तक का फोन आ रहा है, भैया क्या छाप दिया है, क्या छाप दिया है। और जो टीचर वहाँ, मुझे नहीं पता था, 3 टीचर वहाँ पोस्टेड थे स्कूल में, तीनों नहीं आते थे, वो बच्चा रखा था उसको, वो पढ़ाता था 10th या 11th में, था बच्चा, वो पढ़ाता था। अब उनमें से एक टीचर था जो ठाकुर था, उसने रिलेशन निकाल के हमारे पास फोन किया। शुरुआती दौर का आदमी, मुझे क्या पता, भैया हमको तो नहीं पता, हमें तो खबर दिखी, हमने लिख दिया। पता चला 2 घंटे बाद कि वो तीनों के तीनों सस्पेंड, बीएस से भी सस्पेंड। जांच बैठ गई, जांच में ये पता चला वो विद्यालय का बजट 3 बार निकाला गया और कागज में बह गया। इतना बड़ा ब्लंडर था वो। मतलब खबर निकालते समय मुझे नहीं पता था कितनी बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर थी। वो प्रभारी जी ने, जो हमारे पांडे जी थे, उन्होंने पूरा पड़ताल कराई जब उसकी, तब पता चला बहुत बड़ी खबर है। तो वहां पे उसको स्टेट हेड ने उसको रोक लिया था कि इसको पूरी पड़ताल करके, क्योंकि 2 जिलों की खबर थी, तो पड़ताल करके तब लिखी जाएगी। तो वहां से तो बिल्कुल हमको जैसे टॉनिक मिलता है, मिल गया। ऐसे ऐसे 3-4 खबरें निकाली। फिर वहां जो लखनऊ में बैठे थे लोग, उनके नजर में थोड़ा नाम आना शुरू। तो उन्होंने कहा कि अब इस लड़के को जिले पे लाना है, लड़के में दम है। तो अब जिले, क्योंकि उस दौरान पैसा बहुत कम होता था, तो क्या सरवाइव कैसे करेंगे। तो आए यहाँ पे, आना भी था, मन भी था, सरवाइव कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा साइड में हमारा मेडिकल का काम है, क्लिनिक करते हैं, तो डॉक्टर साहब यहाँ आर्यन पांडे नर्सिंग होम है, डॉक्टर राजेश पांडे जी, उनसे बात हुई। तो फिजियोथेरेपी यहाँ उनको जगह खाली ही थी, अच्छा बंदा चाहिए था उनको। उन्होंने मिले हमसे, सेटिस्फाई हुए, उन्होंने मौका दिया। तो फिर हमने कहा अब इतना है, मिल जाएगा कि हमारा खर्चा चल जाएगा, परिवार हमारा चल जाएगा, तब आ गए गोंडा। लेकिन पत्रकारिता चलती रही, क्योंकि गोंडा इसने ही

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने स्पेशल शो गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपके होस्ट मौजूद है RJ अदनान और आज इस स्पेशल प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं दैनिक भास्कर के रिपोर्टर मिस्टर दिवाकर प्रताप सिंह जी। वापस से हम आपका वेलकम करते हैं इसी शो में। थैंक यू सो मच। और चूंकि मेरा अगला प्रश्न जो है वो मैं बोल के गया था ब्रेक पे जाने से पहले कि आपको आने के बाद ये बताने की कोशिश करना है कि भाई ये रिपोर्टर का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है।
2: बेसिकली रिपोर्टर का काम ये होता है कि आप कहीं भी, पहली चीज

0: अब देखिए कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, पॉजिटिविटी। जैसे कई आप ही देखिए अखबार भरे पड़े होते हैं, सुबह आप देखेंगे तो मर्डर हो रहा है, लूट हो गई है, रेप हो गया है, तो ऐसे अखबार खोलते हैं तो तबीयत अच्छी नहीं लगती।
1: बेशक।
0: तो मेरे ख्याल से तो अब जरूरत है इस टाइम को कि मीडिया को पॉजिटिव होने की, क्योंकि आप समाज में जितनी निगेटिविटी फैलाएंगे, मैं किसी से जितनी निगेटिव बातें करूंगा तो वो चीजें उसके ऊपर हावी होती जाएंगी।
1: बेशक।
0: तो अभी सबसे बड़ी जरूरी है कि समाज में पॉजिटिविटी हमारी जरिए किस तरह से फैले, ये हमारी जिम्मेदारी।
1: एग्जैक्टली।
0: प्लस जो हमारी जॉब है, हमारी जॉब है खबर करना, तो खबर में हकीकत क्या है, कहाँ तक उस हकीकत को सामने लाना है जिससे समाज का जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, वो बिगड़े ना, माहौल ना बिगड़े, ये भी जिम्मेदारी बहुत क्या बोलते हैं, बहुत संवेदनशील मसला होता है पत्रकार के लिए।
1: बहुत सेंसिटिव है, सही है।
0: तो उसको बहुत जिम्मेदारी के तौर पे करना चाहिए।
1: ओके। एंगल होता है बहुत जरूरी होता है किसी भी घटना को, अगर यूं ही तो नहीं देखते ना, एक एंगल तो आपको लेना पड़ता
0: है। बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये एंगल होता क्या है, और एक पत्रकार किसी भी घटना को प्रथम दृष्टया जब देखता है तो किस एंगल से देखता है?
0: उसमें देखता है कि पहले कि वो घटना सीधे सीधे है क्या।
1: ओके।
0: घटना है क्या और इसके पीछे कारण क्या है।
1: जी।
0: मान लीजिए कहीं कोई क्राइम हुआ है, तो प्रथम दृष्टया तो क्राइम सीन क्या है, क्राइम क्या है, वो तो बाकी सब पुलिस का काम है, लेकिन अपना है कि क्राइम की तह तक जाना कि ये हुआ क्यों है, किसने किया है, का कारण क्या है, आगे क्या कार्रवाई हो रही है। वही ना कि 5W, कब, क्यों, कहां और कैसे, ये सबसे जरूरी है। और इस बेसिक पे जब चलेंगे आप, तो आप गलती की संभावना बहुत कम,
1: 5W1H की अगर
0: बिल्कुल
1: फॉलो करते हैं।
0: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तब आप भी सेटिस्फाई होंगे और खबर तभी बनेगी।
1: Exactly.
0: खबर कंप्लीट तभी होगी जब ये पूरे कंटेंट उसके अंदर होंगे। क्योंकि जो सुबह खबर पढ़ेगा वो आपको, आपका जो खबर होगा उसको सही मान के पढ़ेगा, तो ये आपको खुद बिल्कुल पुष्ट होना पड़ेगा कि जो हम लिख रहे हैं वो सत्य है। 99.9% बिल्कुल पुष्ट हो गए तभी कलम चलनी चाहिए, अगर 1% भी उसने उसमें है दिक्कत तो उसको आपको नहीं लिखना है।
1: चलिए, ये तो आपने जो बात बताई ये बिल्कुल जायज मुझे लगी, क्योंकि शायद प्रिंट मीडिया के साथ प्रॉब्लम कह दे या उसकी स्ट्रेंथ कह दे कि एक बार जो छप गया सो छप गया, तो इसलिए गलती की गुंजाइश ना ही के बराबर होती है। लेकिन फिर भी मान लीजिए इंसान है, छप भी गया, तो फिर प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से अपने माफीनामा देता है या क्या प्रोसीजर अपनाता है प्रिंट मीडिया, अगर बाय चांस 0.1% ही हो गई गलती तो?
0: नहीं, गलती अगर हो जाती है तो चाहे वो हमसे हुई एक इंसान के तौर पे या संस्थान के तौर, क्योंकि संस्थान जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारे अगर अखबार में खबर छपती है
1: जी,
0: अगर वो गलत है कहीं से भी
1: जी,
0: वो प्रूफ नहीं होती कि सत्य है, संस्थान पूरी पड़ताल कराता है, अगर वो सत्य नहीं है तो माफीनामा जारी होता है, बिल्कुल जारी होता है, वो छपता है उसमें और उसका माफीनामा संस्थान के तौर पर छपता है।
1: यानी संस्थान भी मानता है कि उससे ये भूल चूक
0: हुई,
1: किस वजह से हुई।
0: हाँ।
1: लेकिन कहीं ना
0: कहीं कभी कभी होता है कई जगहों पे
1: जी
0: कि खबर भी सही होती है, पॉइंट भी सही होते हैं, आपका इनपुट भी सही होता है, सब कुछ सही है, लेकिन किसी की गर्दन फंसी होती है। मैं आपको बताऊं, मैं हिंदुस्तान के बाद अमर उजाला में रहा, अमर उजाला के बाद अब दैनिक भास्कर में हूँ, हिंदुस्तान में 10 साल हमने दिया
1: जी।
0: अब अखबार का नाम नहीं लूंगा, तीनों अखबार में से एक अखबार था, उसमें एक बड़ी खबर पड़ी छपी थी।
1: ओके।
0: तो यहाँ बालिकाओं को लेके, बालिकाओं के ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने छीटा कसी या छेड़खानी ऐसे कुछ किए थे, बड़ी खबर थी
1: जी।
0: तो जिले के एक जिम्मेदार अधिकारी की गर्दन फंस गई थी, खबर पुख्ता बिल्कुल सत्य थी, उसमें एक रत्ती भर भी गलती नहीं थी, उनकी पहुंच ऊपर तक थी, अखबार के मालिक तक कहीं से बाई पास उन्होंने पहुंचा, वो दबाव बनाया, लेकिन जब वहां पता लगे खबर बिल्कुल सही है तब उन्होंने बीट रिपोर्टर को बुलाया, क्योंकि उनकी नौकरी पे सवाल आ गया था, उनका सस्पेंड होने वाले थे, ऐसा कुछ था। तो फिर उसी खबर का अगला अंक जो जारी हुआ थोड़ा सा मोल्ड करके जारी की छापा गया, क्योंकि उनकी नौकरी पे
1: बात बनाई थी।
0: तो वहां गलती संस्थान की नहीं थी, रिपोर्टर की भी नहीं थी, लेकिन अब जिम्मेदारी वहाँ भी बनती है हमारी कि अगर आदमी को गलती का एहसास हो गया है, इवन भाई पुलिस तो गलती करती नहीं है या DM गलती करता नहीं है, प्रशासन गलती करता नहीं है, लेकिन अगर कहीं गलती होगी जिम्मेदार तो, जैसे घर का कोई परिवार गलती करता है तो मुखिया को जिम्मेदार माना जाता है।
1: एग्जैक्टली।
0: तो अब गलती हुई, उन्होंने एहसास किया, तो फिर उसको हटा देना ज्यादा बेटर है। तो कहीं कहीं करना पड़ता है, कोऑपरेट करना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है।
1: एग्जैक्ट, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस बात के मद्देनजर रखते हुए कि कोई ये जो मैसेज जा रहा है वो समाज की विपरीत नहीं जा रहा बल्कि किसी को सेव करने के लिए जा रहा है।
0: जैसे उस खबर के बाद छपा गया कि जब कार्रवाई क्या हुई
1: जी,
0: तो अब उनकी पॉजिटिविटी आ गई।
1: एग्जैक्टली,
0: अभी उनकी अगले दिन खबर कमी छपी थी, अब उनकी पॉजिटिविटी कार्रवाई क्या हुई।
1: एग्जैक्टली,
0: तो अब वहां से उनको बल मिल गया, तो उनकी नौकरी बच गई, उनकी पोस्ट बच गई, यहाँ जिला बच गया, सब कुछ बच गया।
1: तो भाई बड़ी बात अभी एकदम स्टार्टिंग में आप कही थी कि सेंसिटिविटी वाली जॉब है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है और बहुत सेंसिटिव होता है। यानी कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा आपको लॉयल होना है, ईमानदार होना है, आपको पक्षपात नहीं करना, अलग से आप बायस नहीं हो सकते, आप न्यूट्रल रह करके ही आप पत्रकारिता कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये आपकी बातों से एकदम फैक्ट समझ में आ रहा है। अब चूंकि ज्यादा वक्त तो नहीं बचा है, लेकिन मैं अपने श्रोताओं को हम ये भी बता दे कि दिवाकर जी जो है वो महज पत्रकार नहीं है, महज फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, महज MR नहीं रह चुके हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे और सफल बिजनेसमैन भी है, एंटरप्रेन्योर भी है। तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को नहीं पता है, तो प्लीज अपने बिजनेस के बारे में बताएं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उसमें क्या काम होता है, उसके बारे में थोड़ा सा।
0: जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हमारे पास अब पहले एक थी, अब दो फर्म हो चुकी हैं।
1: जी,
0: पहले शुरुआत में 2020 में कहते हैं ना कि कभी कोई लोग आपदा में टूट जाते हैं, कई लोग बंद, कभी कुछ लोग बन जाते हैं।
1: एग्जैक्टली,
0: तो कुछ में एक नंबर हमारा भी था।
1: ओके,
0: तो कोरोना का वही 2020 का दौर था, कोरोना के टाइम पे छटनी काफी हो रही थी हर जगह पे।
1: जी,
0: तो हमें संदेश अंदेशा आया कि दिक्कत होने वाली है, तो अचानक जहाँ हमारा ऑफिस था, ऑफिस के बगल ही एक जगह थी, तो जगह अच्छी लगी। तो अचानक दिमाग में आया, वो बिजनेस का वो सोच रहे थे काफी दिन से कि सही जगह मिले तो कर ले, टाइम नहीं सूट कर रहा था।
1: ओके,
0: तो उस टाइम पे आगे अपनी इनकम को जारी रखने के लिए भी सोचना था, क्योंकि परिवार बढ़ रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे,
1: बेशक,
0: और आगे सब कुछ अंधेरे में चल रहा था कि आगे होगा क्या, नहीं पता था,
1: नहीं पता था
0: हम सबको।
1: जी,
0: तो बस वहीं से एक स्टार्ट हुआ बिजनेस। तो होता क्या है, शुरुआत करता है आदमी तो थोड़ा सा लक और ये सब कुछ देखता है, तो पत्नी के नाम पे हमने स्टार्ट किया, पहली फर्म हमने डाली, तो उनको हमने आगे किया, फर्नीचर शॉप ही थी।
1: ओके,
0: फर्नीचर का काम शुरू किया रिटेल में। तो 2022 आते आते काम आप लोगों के दुआ से काफी ठीक चल निकला, मेहनत काफी हुई, और वहाँ भी जो पत्रकारिता के दौरान हमने नाम कमाया था उसका काफी लाभ मिला,
1: उस इमेज का।
0: और इमेज हमारी ऐसी थी कि पूरे जिले में आज तक कोई आपको हमारे पीठ के पीछे ये नहीं कहा कि ये बंदा बेईमान है या किसी को इसने गलत किसी के साथ किया, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो उसका काफी फायदा मिला, और अब जाके वो 2022 में फिर हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली फर्नीचर की, और नई फर्म भी डाली। अपने ब्रांड नेम हमारा डॉक्टर फर्नीचर वाला करके है, डॉक्टर कहीं छुटा नहीं,
1: वो कसक इस तरह से निकाली जा रही है।
0: तो हमने अपना ब्रांड नेम डॉक्टर फर्नीचर वाला किया।
1: क्या बात है,
0: उससे फिर अब उसी के बैनर के तले काम शुरू है, चल रहा है, और कभी 8,000 रुपए पे काम करने वाला बंदा आज तकरीबन महीने में 1,25,000 रुपए लोगों को बांट।
1: चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, ये चेंज आया, लेकिन ये सुन लेना तो आसान है, मुझे लगता है इसके पीछे एक पूरी यात्रा है, और वो यात्रा सीधी सीधी नहीं बल्कि बहुत उतार चढ़ाव वाली यात्रा है, तो उतना तो शायद बता पाना भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन हम ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग इस टाइम युवा हैं, बहुत सारे लिसनर्स इस वक्त भी आपको सुन रहे हैं और बिजनेस का आइडिया बहुत लगाते हैं, तो फर्नीचर ना सही कोई भी वो काम अगर स्टार्ट करते हैं, तो पहले बात तो मेंटल लेवल पे किस तरह की रेडीनेस होनी चाहिए, दूसरी बात है एक बिजनेस को चलाने के लिए किन किन चीजों की सच में जरूरत होती है, क्योंकि मैंने देखा युवा एट द एंड कैपिटल पे आके रुक जाते हैं, और जबकि कई सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, हम शायद उधर अप्रोच भी नहीं करते, हम देखते भी नहीं है, हम सीधे कहते हैं किसी दिन जब लाइफ में पैसा आएगा तो हम करेंगे। भाई जब पैसा आ जाएगा तो फिर और भी बहुत सारे काम हो जाएंगे, तो ये क्या है, मतलब इसको किस तरह से आप देखते हैं, इसके बारे में बताएं।
0: देखिए, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे, सेविंग्स के कुछ 50-60 हज़ार रुपए रखे थे, बोल रहा हूँ शायद आपको मजाक लगे, 50-60 हज़ार रुपए रखे थे, वो जहाँ शोरूम में स्टार्ट करना था वहाँ हमने उसको पहले 50,000 में से 25,000 हमने उसको टोकन मनी दी कि आपका शोरूम हम ले रहे हैं, जुलाई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पक्का नहीं था कि कोरोना चल रहा था, शायद मार्च में लॉकडाउन लगा था, 2 महीने लगातार लॉकडाउन था, तो फरवरी में हमने उसको टोकन मनी दी थी, फिर अब जब कोरोना लॉकडाउन लग गया तो पैसे की आमद और कम हो गई।
1: एग्जैक्टली,
0: तो लेकिन अब यह है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि काम होना था, इधर उधर से दोस्तों से रिश्तेदारों से खासकर दोस्त ही काम आते हैं, एक दो या फिर एक आध रिश्तेदार।
1: एग्जैक्टली exactly.
0: बाकी आप तकलीफ में हो ना तो सारे दोस्त रिश्तेदार सब करनी काट जाते हैं।
1: एग्जैक्टली exactly.
0: तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ पे अपना रिलेशन था पहले बैंक में जहाँ मेरा अकाउंट था, उन्होंने कहा कि आप अपना जीएसटी दीजिए। तो योजना उस समय चली थी केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, तो स्टार्टिंग फेज में ही वहाँ से हमारी फाइनेंशियल हेल्प हुई। वो फिर उसी से हमने डेवलप किया और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, वो पूंजी को कैसे डबल करना है, डबल को ट्रिपल करना है, उस पे दिमाग लगाया। आपको गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटी देती है, बस थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए।
1: Exactly. इवन
0: कभी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप आधे अधूरे में स्टार्ट कीजिए, ये नहीं कि हमने बस दुकान खोली सामान रखा स्टार्ट कर दिया। सिस्टम में आइए, पहले आप जीएसटी रजिस्टर्ड कराइए। आप जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होंगे तब तक आपको बैंक कैसे पैसा देगा
1: या गवर्नमेंट की जो
0: गवर्नमेंट कैसे मिलेंगे।
1: Exactly.
0: तो आप पहले जीएसटी लीजिए, जीएसटी के बाद अपना अकाउंट खोलिए, लेन देन कीजिए, या शुरुआत में ही आपको पैसा चाहिए, लेकिन जीएसटी सबसे जरूरी है। जीएसटी, आधार, पैन, अपने पेपर हमेशा 18 साल अगर आप पूरे हो गए तो सारे पेपर जरूर कम्प्लीट करिए। और मैं सभी को ये कहता हूँ, अगर आप साल का लाख रुपए भी कमाते हैं तो उसका रिटर्न आप फाइल कीजिए, आईटीआर फाइल कीजिए।
1: Exactly.
0: भविष्य में कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
1: एग्जैक्टली
0: Exactly. अपनी कमाई को छुपाइए मत, जो कमाते हैं उसको दिखाइए, बताइए कि मैं इतना कमाता हूँ। लोग क्या करते हैं कि अरे हमारी इनकम अगर हम बता देंगे, आईटीआर फाइल कर देंगे तो सरकार ये कर लेगी। कुछ नहीं करेगी, बल्कि आप सरकार के लिए नंबर एक के बंदे हो जाएंगे आप, क्योंकि वही पेपर आपसे मांगे जाएंगे, तब आप पीछे पीछे भागोगे तो होगा नहीं।
1: एग्जैक्टली जब लोन चाहिए होता है तो ये पेपर
0: बिल्कुल
1: बहुत जरूरी होते हैं, और सिविल भी इसीलिए चेक की जाती है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं आपको लीगल होना है पहली चीज, दूसरी बात है कि ये प्रोसीजर है, कहना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है।
0: और बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है कि आप सिविल जो कहते हैं, सिविल तो सरकार ने बनाई है, बाकी समाज में सिविल तो पहले से बनी।
1: एग्जैक्टली
0: लेन देन का तरीका आपका क्या है, आपको लायबल होना पड़ेगा, जुबान की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि आपको शुरुआती दौर में बैंक के पास जाने की जरूरत ही न पड़े।
1: एग्जैक्टली
0: Exactly. तो आपको बाहर से ही मदद मिल जाएगी, हो सकता है कोई होलसेलर आपको, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको माल दे दे लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, आप काम शुरू कर दें। बस ये डेडिकेशन होना चाहिए, किलर स्टिंक्ट जो होती है वो होनी चाहिए कि हमको करना है।
1: Okay.
0: तो जब आप उसके साथ काम करेंगे तो जीरो से आपको उठना जरूर है, उठेंगे जरूर, मेहनत करना पड़ेगा। मैंने शोरूम पे शुरुआत में एक महीने अपने शोरूम पे मैं खुद झाड़ू लगाया हूँ, कोई दिक्कत हमको शर्म नहीं आती थी। घर पे मैंने कभी नहीं लगाया लेकिन शोरूम पे लगाता था।
1: एग्जैक्टली तो इसी बीच में एक सवाल और जहन में मेरे आ रहा है कि आपने इतने काम किए, इतना अच्छा सब में किया
0: जी,
1: फिर पत्रकारिता से जब बिजनेस चुनने की बात आई तो आपने फर्नीचर को ही क्यों चुना? क्या पहले से कोई आपके कांटेक्ट में थे जिनसे आपका लेन देन आसानी से हो सकता था, या आपको लगा कि इसका काम अभी गोंडा में काफी एस्पिरेंट है, यहाँ बहुत जरूरत है?
0: जी जी,
1: क्या सोच के किया?
0: सबसे पहले तो आप बिजनेस जब शुरू करते हैं कोई भी
1: जी,
0: तो उसमें आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आपकी लोकेलिटी के मुताबिक जो बिजनेस आप चूज करने जा रहे हैं
1: जी,
0: उसकी लाइफ कितनी है पहले इसको ध्यान में रखिए।
1: मार्केट रिसर्च बोल सकते
0: हैं, मार्केट रिसर्च थोड़ी सी
1: जी।
0: तो उसमें हमको लगा कि जो फर्नीचर का सेगमेंट है वो लंबा चलेगा।
1: ओके
0: आदमी घर बनवाना बंद नहीं करेगा, कोर्स में फर्नीचर चाहिए होंगे, ऑफिस बंद नहीं होंगे, शोरूम्स खुलेंगे और उसमें फर्नीचर चाहिए होंगे, तो हर सेक्टर में फर्नीचर का जो सेगमेंट है ये चलेगा और ये लगातार चलेगा, बंद नहीं होगा। आदमी एक घर बनवाया है दूसरा बनवाएगा, एक फ्लोर बनवाया है दूसरा फ्लोर बनवाएगा, उसने पुराना फर्नीचर, अभी ये एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ अभी, इवन दो साल पहले जिसने मुझसे फर्नीचर लिया था वो फिर से फर्नीचर हमसे खरीद रहा है।
1: ओके
0: तब मैंने कहा ये सेगमेंट, हमने कहा कि एक्सीडेंटली मैंने सेगमेंट सही चुना।
1: ओके मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि प्रीडिसाइडेड, लेकिन आपने सोचा कि थोड़ा सा जब ठंडे दिमाग से सोचा कि लॉन्ग टर्म में मुझे फायदा क्या करेगा, तो आपको फर्नीचर जो है ये सस्टेनेबल बिजनेस दिखा।
0: मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि जैसे आज के टाइम में आपका फूड सेगमेंट यानी कि आपका रेस्टोरेंट
1: जी,
0: आपका ग्रोसरी, आपका रेडीमेड गार्मेंट्स, आपका फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर और बेकरी शॉप्स, ये जो है सेगमेंट ये लगातार चलेंगे, ये बंद नहीं होंगे।
1: नहीं होंगे एग्जैक्टली
0: और अगर किसी को करना है सही जगह सही समय सही टाइम पे आप करेंगे, इन बिजनेस में किसी में से हाथ डालेंगे आप, क्लिक कर रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्लिक कर जाएगा।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन नीड की चीजें हैं और ह्यूमन नीड हमेशा ह्यूमन नीड रहने वाली है। लेकिन एक बात जैसे आपने कहा कि प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च इस बात की भी करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या मिल सकता है, आपको लोकल लेवल पे क्या मिल सकता है, आपके अपने आपके दोस्त यार क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं, और आपने जो इमेज बनाई है उसका इम्पैक्ट तो होता है।
0: बस
1: आप अगर खराब इमेज बनाएंगे तो भले ही आपने सुधर जाने का प्रण भी ले लिया हो, चीजें करेंगे तो उसको भी टाइम लगता है।
0: उसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे मैं आज वो बेच रहा हूँ सामान, तो पहले आपको कस्टमर बन के सोचना पड़ेगा।
1: एग्जैक्टली,
0: जैसे मैं हूँ तो मैं सेल से पहले उस सर्विस को लेकर सोचते हैं कि इसकी सर्विस मैं कैसे दूंगा। मैं सर्विस को प्रायोरिटी देता हूँ। इवन आप गाड़ी खरीदने जाते हैं शोरूम में
1: जी,
0: तो आप पहले सोचते हैं कि फला कंपनी की सर्विस कैसी है, क्योंकि आपको गाड़ी तुरंत बेचनी तो है नहीं ना। आप आज खरीद रहे हैं, 10 साल 5 साल उसको रखेंगे, तो इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, सर्विस कैसे होगी।
1: एग्जैक्टली,
0: तो हम उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। और जब सर्विस आप अच्छी देंगे, वो सेल्स से ही आपकी सर्विस शुरू हो जाती है, आपकी कस्टमर डीलिंग, आपकी रिलेशनशिप, और आपके कस्टमर सामान बेचने के बाद उससे फिर आपका कैसा इंटरेक्शन है, तब तक की सर्विस आपको काम देती है, वो कस्टमर फिर रिटेन कर जाता है और एक कस्टमर की चेन फिर बनाता है वो।
1: ये बात बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कहा जाता है सबसे स्ट्रांग जो आपका प्रचार होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, वो लोगों के जरिए होता है, माउथ टू माउथ जो होती है, ये बहुत बड़ी प्रचार होता है। ये बात बिल्कुल सही है। एंड इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि ये सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स फॉलो करने पड़ेंगे, और ये बहुत अच्छी बात रही कि आपने इतने सारे काम चेंज किए, उसके बाद जिसमें भी आपने हाथ डाला उसमें डेडिकेशन दिखाया, उसमें रिसर्च किया, उसमें ईमानदारी से उस काम को किया, जॉब किया, बिजनेस किया, ये बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि हमारा चलने का वक्त हो गया है और जाने से पहले हमारे दो अंतिम प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि इनको बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आप बताएं, क्योंकि आपने इतना टाइम पत्रकारिता में दिया है, इतने लोगों से आप मिले हैं, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक समाज का व्यक्ति होने के नाते आपका क्या मानना है, कोई संदेश अगर आप हमारे सुन रहे लिसनर्स को देना चाहें।
0: अपने गोंडा के लिए सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं बात कर रहा था कि अपने यहाँ सबसे बड़ी चीज है जो आज के समय में मैं महसूस कर रहा हूँ, खास तौर पर समाज में अभी भी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं
1: जी,
0: उनके प्रति समाज और माँ बाप की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है।
1: ओके,
0: क्योंकि यही बच्चे आगे चल के इस समाज का अंग बनेंगे।
1: बेशक।
0: तो इनको मैं अपने सामने कमजोर होते देख रहा हूँ।
1: ओके,
0: क्योंकि सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से ये कमजोर हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इनको समाज से जुड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है।
1: तो मैं चाहूंगा कुछ शब्दों में आप सोल्यूशन भी बता दें कि क्या कर सकते हैं।
0: जैसे पहले होता था, हम लोग बच्चे थे
1: जी,
0: हम आप बच्चे थे अपने टाइम में, तो ओपन गेम्स होते थे, खुले में माहौल खेलते कूदते थे और बच्चों से इंटरेक्शन होता था। अब है कि स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है बस उसका नाम पता है, ना उसके मम्मी पापा के बारे में पता है। हम लोग क्या था कि हम लोग बच्चे पढ़ते थे, हम लोग उसके घर जाते थे, वो हमारे घर आता था, हमारे मम्मी पापा उसके मम्मी पापा से बात करते थे, पता होता था, सबके आपस में कॉन्टेक्ट होते थे, हंसते खेलते थे। वो चीज अब कहीं गुम हो गई। और इससे क्या है कि बच्चों में इनसिक्योरिटी, पेरेंट्स में इनसिक्योरिटी, सोसाइटी में इनसिक्योरिटी, आप गली में, अब यही गली में आप निकल जाइए, आप देख लिए कितने बच्चे सड़क पे अगर घूम रहे हो, कतई नहीं मिलेगा कोई बच्चा घर के बाहर।
1: एग्जैक्टली,
0: तब फोन में या टीवी में मिलेंगे आपको। कारण उसका है क्योंकि बच्चे अगर खेलेंगे, हम आप कहते हैं ना कि बच्चों को फोन नहीं देना है, टीवी नहीं देना है, लेकिन आखिर बच्चा करेगा क्या, 24 घंटे तो पढ़ेगा नहीं।
1: Exactly.
0: स्कूल से आके 10 घंटे तो पढ़ेगा नहीं। उसका मन भी मन है। और बच्चे को जो आप फ्री नहीं करेंगे, कोई आप माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल एकदम वो काट का उल्लू बन जाए, 99.9% लाए, कतई नहीं। आपका बच्चा स्टूडेंट बन सकता है लेकिन एक बेहतर इंसान नहीं।
1: क्या बात है। तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी इस तरह से, और इसके मायने बहुत है। शायद जितनी बात ये नॉर्मल और जनरल लग रही है, ये सही कहा कि बाद में यही समाज बनेंगे, यही समाज का मेन अंग होंगे। और अगर हम आज इन्हें कमजोर होते हुए देख रहे हैं, तो आज हमें चेतने का टाइम आ गया है, आज हमको जागने का टाइम आ गया, इनके लिए करने का टाइम आ गया। बेशक, आज का अंतिम सवाल है, क्योंकि आप रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के स्टूडियो में बैठे हैं, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला FM है।
0: तो मुझे बहुत मजा आया था जब पहली बार लॉन्च हुआ था ये
1: जी,
0: तो मोबाइल पे सुनता था, बड़ा मजा आता था।
1: okay. पहले
0: लखनऊ जाओ तो गाड़ी में जब एफएम बजता था तो यार गोंडा में अपने एफएम नहीं बजता है।
1: एग्जैक्टली लखनऊ लखनऊ नाम से सुनते थे उसमें। और अब क्या है ना कि गाड़ी में अगर आपने ऑन किया तो गोंडा शहर की तरह
0: बस मजा आ जाता है।
1: क्या बात है, तो ये फील ही काफी है अपने आपका। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है जो हम हर किसी के लिए लेके आते हैं। और जैसा कि आपका मानना है कि मीडिया का काम एक समाज का बेहतरी के लिए होता है, ऑफ कोर्स हम भी मीडिया के ही अंग हैं और हमारा भी कहीं ना कहीं वो जो वैल्यू है, जो आइडियोलॉजी है, वो समाज की बेहतरी को लेकर की है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मुझे नहीं, मुझे लगता है सुनने वाले हर शख्स को बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय भी किया होगा और बहुत कुछ उनको सीखने को समझने को भी मिला होगा आपकी लाइफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है वो हम सबकी लाइफ से बहुत मैच खाती है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत जेन्युइन बात।

0: तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM, और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
5: गोंडा शहर की धड़कन।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

सभी मेरे प्यारे लिसनर्स का सबसे पहले तो स्वागत है और आपके साथ लाइव हूँ मैं आपकी अपनी आरजुबीना आपके शो गोना मैं से मसाला आरजुबीना वाला के साथ। एंड शाम का समय है, कहीं बारिश की बूंदें तो कहीं बारिश की फुहार है और कहीं ठंडी हवा की बहार है। फिलहाल के लिए मैं आज बता दूँ आज का दिन बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही शुभ है, क्योंकि आज है उत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक पवित्र पर्व जिसका नाम है हल छठ या हल षष्ठी या ललही छठ इसे बोलते हैं। ये पवित्र व्रत जो है वो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को समर्पित है। इस दिन सब माताएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए निर्जला व्रत करती हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में एक दूध बेचने वाली ग्वालिन रहती थी। उसका प्रसव काल चल रहा था। प्रसव काल आप जानते हैं जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है। प्रसव पीड़ा के बावजूद लालच में आकर वो सिर पर दूध रख दही रखकर बेचने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे असहनीय पीड़ा होने लगती है। वह पास ही की एक झरबेरी यानी कि झाड़ी की ओट में बैठ जाती है और पुत्र को जन्म दे देती है। लोभ और स्वार्थ के कारण वह नवजात शिशु को वहीं छोड़ के झाड़ी के पास आगे बढ़ जाती है और गांव-गांव जाकर दूध दही बेचने लगती है। संयोग वश उस दिन हल षष्ठ थी। उस ग्वालिन ने गाय और भैंस के दूध को आपस में मिला दिया और केवल भैंस का शुद्ध दूध बताकर भोले भाले ग्रामीणों को बेच दिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार हल षष्ठी के दिन दूध में मिलावट करना, असत्य बोलना और छल करना सीधे तौर पर गौ माता और भगवान बलराम का अपमान माना जाता है। उसी समय पास में एक खेत में किसान हल चला रहा था। अचानक खेत जोत रहे बैल किसी बात पर बिदक गए और बैलों का हल दौड़ते हुए सीधे उस बालक के पेट में लग गया, जिसे ग्वालिन झरबेरी में छोड़ के चली गई थी। इस चोट से बालक की वही मृत्यु हो जाती है। जब ग्वालिन अपना दूध बेचकर वापस आती है तो देखती है बच्चा मृत पड़ा था। वो बुरी तरह चिक चिक के रोने लगती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि आज हल षष्ठ के पवित्र दिन उसने झूठ बोलने की कोशिश की, दूध में मिलावट की और पाप करने जैसा काम किया और इसी वजह से भगवान लग रहा है अनिष्ट हो गए। अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए तुरंत गाँव के में मतलब वापस गई और घर घर जाकर सब महिलाओं के सामने अपनी गलती स्वीकार करने लगी। उसने सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। गांव के पवित्र स्त्रियों ने उसके सच्चे प्राश्चित को देखकर उसे माफ कर दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद ग्वालिन दौड़कर वापस झरबेरी के पास पहुंची। वहां का चमत्कार देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मृत पुत्र पूरी तरह से जीवित और स्वस्थ था और वहीं खेल रहा था। तभी से ये मान्यता है कि हल षष्ठी के दिन सच्चाई और पवित्रता और धर्म का पालन करना चाहिए। किसी तरह का झूठ कपट ये सब नहीं करना चाहिए और मिलावट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो भी माताएं सच्ची श्रद्धा से ये व्रत करती है उनकी संतान पर भगवान बलराम और माता षष्ठी की कृपा बनी रहती है। तो ये छोटी सी कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने सोचा शेयर करी जाए। तो आज के पवित्र दिन मैंने सोचा कि ये कहानी सुनाऊं और कहानी सुनने के बाद आप सभी को मजा आएगा। तो चलिए आगे भी हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे और एक थोड़ा सा डिवोशनल सॉन्ग सुन लेते हैं, क्योंकि जो षष्ठी तिथि है हमारे देश में, चाहे वो ये वाली छठ हो, हल छठ हो या दूसरी हल छठ हो, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो एक गाना इसी तिथि को समर्पित। तो छठ से जुड़ा ये गाना आज के पवित्र दिन को समर्पित, चले सुनते हैं, एंजॉय करिए और बताइए कैसा है ये गाना।

0: कुछ भी नहीं तेरे हाथ में बंदिया।
1: अच्छा, ये गाना मैं आपको सुना रही हूँ आज, इसके पीछे बड़ी सारी बातें हैं जो सोच रही थी कई दिनों से करने के लिए।
0: गंगा,
1: मतलब मैं तो लाइन ही भूल गई।

तो एक बात ये समझिए कि लाइफ में कुछ मिले या ना मिले, पर आपको ये एक चीज़ पे बड़ा फोकस करना चाहिए, सुकून पे। यानी कि अगर आपके जीवन में सुकून नहीं है तो आपने जो कुछ भी पाया है वो आपके लिए वेस्ट है। और हाल ही में जो मुझे दिख रहा है कि जो नेपाल में तबाही हुई और फिर चित्रकूट में लगातार एक से एक, मतलब हमें डराने वाले जो इशारे दे रही है प्रकृति, वो हमें ये बता रही है कि बस बहुत भाग लिए, थोड़ा सुकून से जीने का समय है। कुछ भी हमारा हमारा नहीं है, सब उस प्रकृति का है। और जब भी चाहेगी वो प्रकृति हमसे ले लेगी। इसीलिए हमें पहली चीज तो हमें सारी चीजें भूल के सुकून से अपनी जो कीमती जिंदगी है उसको जीना चाहिए, अपने अपनों को टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बताइए क्या इस बात से आप रिलेट करते हैं कि नहीं। नेपाल में लोगों ने बहुत कुछ खोया। मैं तो ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के परिवार वाले ही नहीं मिले, किसी किसी परिवार का तो पूरा परिवार ख़त्म हो गया। ऐसे में हमारी ये भाग दौड़, एक दूसरे को समय ना देना, आई थिंक एक पछतावे से बढ़ के कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा चाहूँगी हम सभी हमेशा शांति से अच्छे से रहें, पर इस शांति से अच्छे से रहने के पीछे भी हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। हम चाहेंगे तो ही ये संभव हो पाएगा। सबसे पहले तो सेटिस्फेक्शन रखें, एक दूसरे के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको नज़रअंदाज करें, एक दूसरे के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जिस भी वजह से आप उससे मिले, वो वजह अगर बरकरार है तो उस वजह के साथ जीने की कोशिश करें, कमियों पे काम थोड़ा कम करें। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि क्रिटिसाइज़ करने से हम

उत्तराखंड से, देहरादून से, अलग अलग जगह से। तो ये सारे जो जुड़ाव हैं एक दूसरे के साथ जो हम समय बिता रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप रेडियो पे ही आके समय एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करिए, समय दीजिए एक दूसरे को। जो लिमिटेड रिलेशन है, हम हर किसी के साथ तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते, बचपन से लेके अभी तक बहुत लोगों से मिले होंगे, पर वो चुनिंदा लोग की संख्या मुझे लगता है 40 से 50 ही होगी जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो उनको टाइम दीजिए, अपने भाग दौड़ के चक्कर में अपने सुकून को मत भूलिए, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर हताश मत होइए। बहुत सारे लोगों ने शायद नेपाल में बहुत कुछ खोया होगा, तो कोई बात नहीं, जो गया वो गया, सांसें बची हैं तो इससे ज़्यादा कीमती क्या ही होगा। तो ज़िंदगी रिस्टार्ट हो सकती है, हाँ वो सुख सुविधाएं नहीं होंगी, लेकिन परिवार अगर साथ है तो मुझे लगता है कि सारी सुख सुविधाएं हैं। तो चलिए, आज की शुरुआत थोड़ी पॉजिटिव वाली हो गई। हाँ, और आज का दिन भी बड़ा खास है, हल छठ है, हमारे यूपी बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, आशीर्वाद दिए जाते हैं और आज के दिन तिन्नी के चावल खाए जाते हैं, और कहते हैं खेत में हल से बोई जोती चीज़ों को ग्रहण नहीं करते, और भैंस के दूध से बनी चीज़ें मतलब शायद कंज्यूम करते हैं, और क्या करते हैं, हाँ, और केरमुआ का साग होता है, पानी में उगता है, उसको खाते हैं, अच्छा होता है, मतलब अच्छा लगता है, एनर्जेटिक भी है। तो ये सारी चीज़ें हम सभी करेंगे, करते हैं, और मज़ेदार लगता है। घर में मम्मियाँ व्रत रखती हैं तो हम लोग को भी ये खाने को मिलता है, और इंतज़ार होता है हल छठ का, यार ये वो वाला साग बनेगा, और ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम लोग एक दूसरे को इतना इम्पोर्टेंट फील कराते हैं। मम्मी लोग मतलब पूरा दिन का व्रत रखती हैं और एक पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत होती है, और सालों से ये चला आ रहा है रिचुअल। तो बिना क्रिटिसाइज़ किए हर जिन मतलब जितने भी रूल्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको दिल से मनाना चाहिए बिना किसी तरह की टिप्पणी किए, क्या कहते हैं। मेरा तो मानना यही है, मैं हर मतलब किसी भी तरह के मतलब चाहे वो हमारा कल्चर हो या ना हो, इनफैक्ट मुझे ये जो ट्राइब्स हैं इनकी भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगती हैं। ये लोग बड़े अलग अलग ढंग से अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, और इस मामले में साउथ अफ्रीका की बात करूँ या अपना मतलब जितने भी ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं इन सब में मतलब बड़े अच्छे से अलग अलग कल्चर्स को मतलब मनाते हैं, और देख के अच्छा लगता है कि यार हम लोग तो मतलब इतने में ही पस्त रहते हैं, इन लोग के तो कल्चर्स, इन लोग के जो ट्रेडिशंस हैं, अरे बड़े खतरनाक खतरनाक होते हैं। तो ट्रेडिशन पे गर्व करिए और आराम से फॉलो करिए। तो जाते हुए लम्हों को रोक के रखिए, उनको जीने की कोशिश करिए, और लड़कियों की टीम से जो नहीं आई हैं उन लड़कियों को बुलाइए। तो आप सभी कैसे हैं भाई, सबके साथ शाम वेलकम किया धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी कैसे हैं, मोहन, धर्मेंद्र मोहन जी, आपका नाम बड़ा अच्छा है, मतलब दो नाम मिलके, पहले के ज़माने में क्या होता था, दो नाम रखे जाते थे, दो नाम मतलब कि फर्स्ट नेम सेकंड नेम एंड देन द टाइटल, लेकिन अभी क्या हो गया है मतलब सब एक नाम रखते हैं, एक मतलब कि जैसे किसी का नाम आरव है तो आरव है और ऐसे। लेकिन हम लोग के पापा लोग का देखो डबल नाम होते थे, डबल नाम मतलब कि डैश डैश डैश, जैसे राजेंद्र प्रसाद तिवारी एंड ऐसे करके, और इसका फिर शॉर्ट फॉर्म बन जाता था आर के तिवारी, पीएम तिवारी, या मैं तो अपना ही टाइटल चिल्लाए जा रही हूँ, जैसे पीबी सिंह, सबके नाम के साथ ऐसे टाइटल। देखिए अब इनका डीएम जो भी आगे इनका नाम होगा वो पूरा बन जाएगा, कितना अच्छा लगता है, पर अभी नाम छोटे हो गए। एनीवे, मतलब टाइम के साथ चीज़ों को मॉडिफाई करना चाहिए, नहीं थोड़ा ओल्ड साउंड करता है, और जब ओल्ड साउंड करता है तो हम लोग ही थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी में थोड़े अलग से नज़र आते हैं। क्लास में अगर किसी का भी थोड़ा अलग सा नाम हो तो उसको थोड़ा सा टॉन्ट करके दोस्त बुलाते थे। वेल, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना दौर होता है, अपना अपना टाइम होता है, और हर टाइम के साथ नए बदलाव देखने को मिलते हैं। आने वाले समय में नाम और छोटे हो जाएंगे, जे के एम करके लोग एक दूसरे को बुलाएंगे। एनीवे, चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग, और उसके बाद देखते हैं अंताक्षरी शुरू होती है या थोड़ा और डिले होती है। मैं तो बातें करने के लिए आज बहुत सारी लाई हूँ आप लोग के लिए, तो चलिए कुछ नए नए गाने सुनते हैं, और नए गानों के साथ नई बातें करेंगे, ठीक है। तो एक बड़ा सा मतलब बड़ा बढ़िया सा गाना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और सोचा आप लोग को भी सुनाऊं अंदाजे करम, एंजॉय करके बताइए, बड़ा पॉजिटिव सा लगा मुझे गाना ये। लेट्स एंजॉय।

बैक, आप सभी का इस सुहानी सी पॉजिटिव सी शाम में फिर से स्वागत है। और चाय की प्यालियां देने के लिए अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ दो अनिल जी हैं, एक तो अनिल वर्मा जी सईदापुर से, एक अनिल जी शास्त्री जी गोरखपुर से, धर्मेंद्र जी हमारे साथ आवाज़ विकास गोंडा से ही हैं, सबलू सामंत जी ये हमारे साथ मुंबई से हैं, अनु मिश्रा जी ही है हमारे साथ हमारे गोंडा शहर से ही हैं। तो चलिए सभी के साथ आज ये तो देख रहा है कि भाई लड़के यूनिटी के साथ अपने मतलब प्रेजेंस बनाए हुए हैं, पर लड़कियाँ उनका क्या, ये सब कहाँ चली गई हैं। मुझे लग रहा है सब लोग इंतज़ार कर रही हैं कि आज तो थोड़ा इंतज़ार कराना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इंतज़ार तो ज़रूरी है, पर मैं ये कहूँगी कि इस इंतज़ार का फल तब और मीठा हो जाता है जब इंसान एक दूसरे के साथ जो दिल है वो भी खेलने के लिए एकदम रेडी हो जाए। फिलहाल आप लोगों को बताऊँ, जो कहते हैं ना कि ये मौसम है, ये पूरा कोटा पूरा करने में लगा हुआ है। कोटा मतलब कि जो बारिश इतने दिनों से नहीं हो रही थी ना, ये पूरे होने को है। हाँ, ये बारिश जो है अब पूरी होने को है। फिलहाल उसे गुरूर था, यानी कि गर्मी को गुरूर था कि उसके चाहने वाले बहुत हैं। किसी को नहीं पता गर्मी को चाहने वाले कौन कहाँ है। परवीन शाकिर लिखते हैं कि उन्हें उसे गुरूर था कि उसको चाहने वाले बहुत हैं, मुझे सब्र है कि मेरे जैसा एक भी ना होगा। क्या बात है, ये सब्र के साथ बारिश आई हमारे पास। और हाँ, ये बात सही है। अनूप जी क्या गजब का आप गेस करते हैं, लेडीज़ की टीम की एनर्जी लॉस ड्यू टू फास्ट। ओहो, क्या कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी होंगी जिनका फास्ट नहीं होगा, जैसे कि मैं, मेरा फास्ट नहीं है क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ हमारे यहाँ कल्चर ये है कि आपको तब तक फास्ट नहीं रखना होता जब तक आपकी मदर इन लॉ फास्ट रखती हैं, तो इसीलिए मेरी एनर्जी फुल है, मैं खा पी के एकदम टाइट हूँ, तो मेरा फास्ट नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी का फास्ट है, तो मम्मी ने रखा है इसलिए मुझे नहीं रखना था, और मम्मी मुझे ट्रांसफ़र करेंगी तो व्रत मुझे मिलेगा और मैं फिर व्रत रखूँगी। मतलब सब जगह का ट्रेडिशन अलग अलग है, तो मेरे यहाँ का यही ट्रेडिशन है, तो मैं इस ट्रेडिशन को सम्मान करते हुए इन्जॉय कर रही हूँ। और ठीक है, मतलब सम्मान करना चाहिए जो भी कल्चर है, किसी भी चीज़ को टसल के साथ नहीं कर सकते। हाँ, अरे यार एक और लाइन याद आई मुझे इसी टसल के बाद, कि हमारे बाद ना आएगा तुम्हें चाहत का मज़ा। गौर फरमाइएगा हुजूर, हमारे बाद ना आएगा तुम्हें चाहत का मज़ा। फराज तुम लोगों से कहते फिरोगे चाहो मुझे उसकी तरह, फराज तुम कहते फिरोगे चाहो तुम मुझे उसकी तरह, उसकी तरह, उसकी तरह। तो फिलहाल आरजे बिना की तरह भी आपको चाहने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आरजे बिना आप लोग को बहुत सारा स्नेह करती हैं, ठीक है ना। तो ये स्नेह की जो पगडंडी है उस पर चलते चलिए, और एक दूसरे के साथ ये शाम सुरीली बनाते चलिए। और आज की शाम देखिए कैसे होने वाली है, लड़कियों की कमी दूर दूर तक नज़र आ रही है, और पाड़ी जो है हम लोग की शाम वाली वो जारी है। आगे देखते हैं क्या होता है, इसका इंतज़ार बना रहेगा लगातार। वैसे जब कहने चलो तो शब्द कभी कभी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो नाराज़ सावन है ये इस बार मान गया है, और अब ये भादों में पूरे सावन की जो कसर है वो पूरा करेगा। तो सावन के लिए कुछ कहने का मन कर रहा है, सावन के लिए नहीं, बारिश के लिए कुछ कहने का मन कर रहा है। तो चलिए आप भी वाह-वाह करिएगा और बारिश की क्वालिटी को फील करिएगा। भाई बहुत बारिश हो रही है, रात में काफ़ी बारिश हुई और सुबह मतलब लगा कि बहुत बारिश होगी, मौसम एकदम लाल था आज का। सुबह जो जल्दी उठते हैं उन्होंने देखा होगा, लगभग 5 बजे के आसपास मैंने देखा, इतना रेड था मौसम। और मैंने पढ़ा है कि सुबह जब आसमान लाल हो तो समझो बारिश बहुत होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं। फिलहाल बादल आज फिर कुछ कहने आए हैं, ध्यान से सुनिएगा कि बादल आज फिर कुछ कहने आए हैं, सूखी हुई ज़मीन को छूने आए हैं, लेकिन मैं इसको मॉडिफाई करूँगी, गीली ज़मीन को फिर से छूने आए हैं। बूंदों ने जब खिड़की पर दस्तक दी, यादों ने भी चुपके से आवाज़ दी, मिट्टी की खुशबू में बचपन सा एहसास है, भीगी हुई राहों में कोई अनकही बात है, छत पर गिरती बूंदों की वो मीठी सी तान, जैसे प्रकृति गा रही हो अपना कोई गान।
कभी बारिश चेहरे पर मुस्कान ले आती है, कभी पुराने किस्सों की याद दिलाती है, कभी मन को सुकून, कभी आंखों में नमी। बारिश के मौसम में हर भावना लगती है नई। ये बारिश भी बड़ी अजीब कहानी है, हर बूंद में छुपी कोई पुरानी निशानी है। गिरती है आसमान से मगर दिल तक जाती है, और बिन कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है, और कभी कभी परेशान भी कर जाती है। फिलहाल ये बताइए, अगर बारिश और इश्क का मेल हो जाए तो क्या होगा, या बारिश और बचपन का? मुझे लगता है बारिश और बचपन का मेल ज़्यादा, आप किसको सपोर्ट करेंगे? आपके लिए बारिश का ज़्यादा कनेक्शन बचपन से है या इश्क से है? मेरा तो भाई बचपन से है यार, मुझे बहुत मैं बहुत मिस करती हूँ यार बारिश को बचपन के साथ। मतलब छत पे जाके वो कूद कूद के नहाना, इंतज़ार करना बारिश होने का, और घमोरियाँ हो जाती थी हम लोग की गर्मियों में, तो बारिश में नहाते थे, घमोरियाँ सही हो जाती थी और बड़ा मज़ा आता था। फिलहाल चलिए हम बारिश को दोनों ही अंदाज में इन्जॉय करते हैं। आप लोग भी बताइए आप लोग को बारिश कैसी पसंद है। फिलहाल मुझे तो हर तरह की बारिश सुकून ही देती है। फिलहाल मैं सबकी बारिश को डेडिकेटेड ये गाना सुना रही हूँ।

फिलहाल मुझे बारिश में आप लोग को सुनना, आप लोगों से बातें करना पसंद है। और कॉन्ग्रेचुलेशन लड़कियों की टीम से, गीता जी, सविता जी सब साथ हैं और एक और सविता जी, तो लड़कियों की टीम भी भाई आज अवेलेबल दिख रही है। तो इस गाने के बाद हम रूल्स बता देंगे। और सच बताऊं तो मुझे बारिश में आप लोगों के साथ बारिश में चाय पीना और बातें करना पसंद है। और इश्क और बारिश का टूट रिश्ता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
8: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: तो इस पॉजिटिव से शाम में बारिश के गाने भी हो गए, लेकिन अब आपकी बारी है। तो चलिए आज की अंताक्षरी अब शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो मुझे नहीं लगता इस बार बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग राउंड्स ले पाएंगे। तो फर्स्ट राउंड जो होगा वो लेटर राउंड होगा, सेकंड राउंड जो होगा वो वर्ड राउंड होगा। तो हम ज़्यादा अब विलंब किए बिना सबसे पहले मैं लेटर दे देती हूँ। सबसे पहला लेटर जो है वो मैं देती हूँ सर से। गाना सुनाना है तो सर से गाना सुनाने के लिए जिसकी भी टीम पहले कॉल कर देगी फिर उसके बाद नेक्स्ट टीम को कॉल करना होगा। और फर्स्ट राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मौका दूं लड़कों को या लड़कियों को, जो पहले कॉल करता जाएगा उसकी टीम को पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो सर से गाने के लिए जिसकी भी टीम कॉल कर रही है उसको पॉइंट मिल जाएंगे, और जिसकी टीम आराम कर रही है उसको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले दावेदार बन के सामने आता है और आगे आके अपनी टीम को पॉइंट्स दिलाता है। तो कॉल आ भी गया है बिना देरी के, चलिए देखते हैं किसका कॉल है। हेलो हेलो
2: हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग, शुभ
2: संध्या। गुड इवनिंग।
1: सो आवाज से पहचान पा रही हूँ मैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति जी टीम ए से। तो स्वागत है प्रीति जी, कैसी हैं पहले तो आप?
2: गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग। तो आज आपका फास्ट है?
2: नहीं नहीं, मेरा नहीं होता।
1: ओह, मतलब आप एनर्जी के साथ भरपूर हैं। और आपको सुनाना है सा से गाना।
2: सा से? छोटे सा?
1: सा से सपेरा वाला।
2: अच्छा। सा समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से छोटी सी गुड़िया लाना लाना लाना पापा जल्दी आ जाना पापा जल्दी आ जाना।
1: क्या बात है, आपने मेरा फेवरेट गाना सुना दिया। बहुत बहुत खूब। पापा जल्दी आ जाना। चलिए ना देखते कौन गाता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाना। और इस गाने को मतलब मैं जितना भी सुनती हूँ मेरा बार बार सुनने का मन करता है। बहुत ही प्रीमियम टाइप का गाना है, बड़ा मज़ेदार है। तो चलिए अगले दावेदार का इंतजार करते हैं। ना से गाना सुनाना है, कौन आता है? लड़कियों से आता है, लड़कों से आता है। भाई इस बार मैं बता दे रही हूँ पहले ही कि पहले वाले राउंड में कोई बाउंडेशन नहीं होती, जिसकी भी टीम पहले पहले पहले पहले कॉल कर देगी उसको पॉइंट मिल जाएंगे। और नेक्स्ट राउंड में आपको एक दूसरे की टीम को वर्ड्स देने होते जैसे कि पिछली बार आपने दिए थे।

0: मैं भाई ना से गाना सुनने का इंतज़ार कर रही हूँ। और भाई आवाज़ देखते हैं किसकी है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ये क्या बात हुई। अच्छी सी गुड़िया लाना, मैं तो गाना ही नहीं गा पा रही हूँ। देखते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो
1: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
0: ओहो, बारी लगी हुई है, बहनें लगी हैं लाइन में। तो स्वागत है आशू जी आपका। ना से गाना सुनाना है।
1: नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओहो तुम।
0: थैंक यू सो मच।
1: नजर के सामने जिगर के पास,
0: आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट कर दिया एकदम, जिगर के पास। मैं महसूस कर रही हूँ खुद को। सर थैंक यू सो मच। तो चलिए सर से गाने के लिए देखते हैं कौन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, शुभ संध्या। आपका शुभ नाम?
2: अमित कुमार।
0: अमित कैसे हैं आप? सर से गाना सुना दीजिए, अपनी टीम का खाता खोल दीजिए।
2: मैं ठीक हूँ। ओके। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई।
0: क्या बात है, सात समुंदर पार पीछे पीछे आप जा रहे हैं किसी के लग रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए लड़कों की टीम ने भी खाता खोल लिया। बहुत तेजी से मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस आप लोग को गाने के लिए कहूंगी क्योंकि आप लोगों ने आज अंताक्षरी देर से शुरू की है। तो मेरा गाना ही अधूरा रह जा रहा है, मैं पीछे पीछे आ गई। इसे गाना सुनाना है। चलिए देखते हैं लड़कों की टीम से कोई आता कि लड़कों लड़कियों की टीम से। अब लड़कों को ये हो गया ना कि लड़कियों ने दो बार गा के पॉइंट बढ़ा लिए हैं, तो लड़के अब थोड़ा एक्टिवेट हो जाएंगे। देखते हैं कौन आता है। मैं गाना तब तक गा लेती हूँ अपना। अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना। हाँ मैं गाना गा चुकी हूँ और चलिए देखते कॉल किसका है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: वार्निंग।
0: क्या बात हो गई भाई, ये कॉल ही नहीं कनेक्ट हो रहे हैं आज तो। समय का जो अभाव चल रहा है। हेलो
3: कनेक्टेड।
0: हेलो
1: हेलो मैम।
0: वापस से हमारे साथ आशु जी हैं। ई से गाना सुनाना है आशु जी।
1: इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा।
0: प्यार हो जाएगा। चलिए हम प्यार ज़्यादा बाद में करेंगे, आज टाइम बहुत कम है। तो चलिए अगले कॉलर का इंतज़ार करते हुए ग से गाना सुनाना है। फिलहाल लड़कियों की टीम बहुत तेज़ी से पार्टिसिपेट कर रही है और वहीं लड़कों की टीम का भी मुझे लग रहा है कॉल आ रहा है। एनीवे सब अच्छा खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है मुझे। और हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, क्या बात हो रही है भाई, आप लोग का कॉल क्यों नहीं लग रहा है, क्या दिक्कत है? हेलो लड़कों की टीम क्या कर रही है? हेलो, वो मुझे लग रहा है ना कि एक साथ प्रेशर पड़ गया तो इसलिए सबके कॉल ही नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये सही है भाई, ये सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा गाना गाया था। ई से प्यार हो जाएगा, ग से हाँ प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन गाएगा गाना। हेलो
4: हेलो
0: हेलो, नमस्कार, शुभ संध्या। सबलू जी कैसे हैं, स्वागत है आपकी आवाज़ का।
4: बिल्कुल मैं ठीक हूँ मैम, आवाज अपने पहचान लिए इसके लिए दिल से धन्यवाद।
0: बिल्कुल, आप लोग की आवाज पहचानना मेरी एक जिम्मेदारी है, तीन तीन साल से आप लोगों से बात हो रही है। गा से गाना सुनाइएगा।
4: गोरे गोरे मुखड़ा पा काला काला चश्मा खूब है करी शर्मा गोरे गोरे मुखड़ा पा काला काला चश्मा।
0: क्या बात है, क्या बात है, माँ अक्षर देते हुए आप जा रहे हैं, क्या बात है, शुक्रिया। तो सबलू जी की आवाज़ में हमने सुना गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और करिश्मा तो है ही भाई अपने आप में, जब कोई चश्मा लगा के घूमता है। तो अगला कॉल देखते हैं किसका। हेलो
5: हेलो
0: हेलो,
5: मैं अमित बोल रहा हूँ।
0: अमित अगेन आपका स्वागत है, म से गाना सुनाइएगा।
4: मैंने प्यार तुझी से किया है, मैंने दिल भी तुझी को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं,
0: तुझी से मैं प्यार करूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो लड़कों की टीम भी लगातार है, अगले कॉल को मैं मौका देना चाहूंगी, बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, आप लोग आसपास रेडियो की आवाज़ थोड़ी कम कर दिया करें। हेलो हेलो भाई, आप लोग रेडियो बजा के रखते हैं और इस वजह से आप लोग की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। फिलहाल लड़के और लड़कियों की टीम बहुत बढ़िया खेल रही है, तो जिसे मैं प्यार करूँ रस से गाना गाना है, देखिए कौन सी टीम है। हेलो
6: बीना जी, शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या अनूप जी, कैसे हैं? र से गाना सुना दीजिए।
6: मैं बहुत अच्छा। रात से रुक रुक रुक लव लव लव लव लव तुमसे लव हुआ।
0: ओके
6: आते जी।
0: फिलहाल लड़कों के ऊपर भी स्ट्रेस दिख रहा है, बहुत तेज गा रहे हैं लड़के, क्या बात है। तो चलिए देखते हैं आज से गाने के लिए कौन आ जाता है हमारे साथ। और बस देखिए कुछ ही देर में मैं इस राउंड को कंप्लीट करते हुए आप लोग के बीच मतलब थोड़ी देर में हम जो है नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करेंगे। हेलो
7: हेलो मैम,
0: रात है। लव हुआ
7: किसके लिए, कौन से वाले?
0: आज से गाना है आपको।
7: करूँ मैं तुम्हें से प्यार करूँ?
0: नहीं।
7: हेलो
0: नहीं, लव लव लव लव लव लव तुमसे लव हुआ, इस पे इन्होंने शुरू किया था अनूप जी ने।
7: हुआ
0: एंड
7: अच्छा, तो कौन
0: से वाले? आज सुना दीजिए।
7: आज के साथ के ना, आज के साथ के ना,
0: आज की शाम आपके नाम। ओके तो चलिए आज की शाम आपके नाम कर दी और टीम ए बी दोनों बराबरी पे पहुंच गई है, क्या बात है, मज़ा आ रहा है यार। मतलब आप लोग बड़ी तेज़ी से कॉल कर रहे हैं और ये जो तेज़ी आपने बरकरार रखी है मज़ा आ रहा है। तो देखते हैं अगला कॉल किसका है। हेलो हेलो हेलो हेलो, तो फिलहाल दोनों की दोनों टीमें एकदम इक्वल इक्वल इक्वल पे चल रही हैं। और हेलो
6: जी मैम, कौन सा वर्ड था? प्रीति जी का,
0: आज की शाम आपके नाम, म से गाना है आपको।
6: म से मेरी मोहब्बत जमा रहेगी, सदा रही है सदा।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने मतलब सुना दिया, मज़ा आ गया। और इसी के साथ चलिए हम करते हैं शुरुआत अगले कॉल की। हेलो हेलो हेलो, क्या कहूँ मैं आज, मतलब जो इवनिंग है ना आज बड़ी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक टाइप की चल रही, ख़तरनाक मतलब मैं कहना चाहूँगी कि इतने सारे कॉल्स की क्या ही बताऊँ मैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो
1: हेलो, मैं
0: शुभ संध्या। शुभ संध्या, कैसी हैं हमारी ब्यूटी क्वीन गीता जी, क्या हाल है? मैंने देखी आवाज़ पहचान ली आपकी।
1: थैंक यू मैम, आपको इतने दिन बाद भी मेरी आवाज़ याद है।
0: मुझे सबकी आवाज याद आती है। मतलब एक आरजे के अंदर ये खूबी तो होनी चाहिए कि एक बार किसी से बात कर ले तो उससे दोबारा बात करे तो उसे याद रहना चाहिए। तो फिलहाल मैं देखती हूँ कि आप आ चुकी हैं। तो अनूप जी ने गाना गाया था मेरी मोहब्बत जमा रहेगी, जमा रही है, जमा रहेगी, गा से गाना सुना दीजिए।
1: मैंने हंसने का वादा किया था सभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो गीता जी ने गाना सुना दिया और दोनों टीम्स के पॉइंट जो है वो बराबर हो गए हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं बचे आप लोगों से कुछ कहने के लिए। आप लोग इतना तगड़ा गा रहे हैं, इतना तगड़ा गा रहे हैं कि मुझे सांस नहीं लेने दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। तो चलिए एक छोटा सा, एक छोटू सा छुटकू सा गाना प्ले करती हूँ मैं, और इस गाने के बाद आप लोग शब्द तैयार रखिए। और अभी जैसा कि गीता जी ने गाना गाया है, बारी है लड़कों की टीम की, तो जल्दी से चैट रूम में मैं लड़कियों की टीम से कहूँगी लड़कों के लिए एक शब्द तैयार कर दें। मतलब लड़कों के लिए एक वर्ड ढूंढ के चैट रूम में सबसे पहले जो भेज देगा उसी वर्ड से लड़कों की टीम को गाना गाना होगा। जैसे ही वर्ड आएगा मैं अनाउंस कर दूंगी, आप लोग तैयारी करके कॉल कर देंगे, ठीक है? तो चलिए एक छोटा सा गाना सुनते हैं और इस राउंड को यहीं खत्म करते हैं। मैं गाना इसीलिए सुना रही हूं जिससे आपको पता चले कि ये राउंड यहीं पे समाप्त हुआ है। तो बहुत छुटकू सा गाना मैंने ढूंढा है सुनाने के लिए जिससे कि कम से कम टाइम लगे, और इससे छोटा गाना मुझे अभी कोई दिखा नहीं। तो फिलहाल के लिए ये छोटा सा गाना लगभग 2-2.5 मिनट का ही है, एंजॉय करते हैं और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट राउंड की ओर जो कि मेरा फेवरेट राउंड है। तो लड़कियों की टीम फटाफट से एक शब्द खतरनाक सा तैयार करो और चैट रूम में भेजो। गुड इवनिंग शमा, कैसी हैं आप, स्वागत है आपका। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: पूछे।
1: हाय गाइस, दिस इज
2: सूट पट्टे आला तेरा, जूती अंबर सरिया, दिल कमजोर है मेरा। फिलहाल मेरा दिल कमजोर हो गया। तो शब्द आप लोग को मिल चुका है और शब्द से गाने के लिए मजा लग रहा है। कोई लड़का कॉल भी कर रहा है या कोई लड़की कॉल कर रही है तो पता ही चलेगा सुनने के बाद। हेलो
3: हेलो
2: हेलो, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
3: शुभ संध्या मैडम, मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
2: मुमताज जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? सबसे पहले अपना हाल चाल बताइए।
3: जी ठीक है, बस आप लोगों की दुआ है, ऊपर वाले का करम है।
2: तो शब्द है मजमा, इससे गाना सुनाना है।
3: माँ से?
2: नहीं, माँ से नहीं, मजमा एक शब्द है, मतलब अक्षर से नहीं सुनाना है, शब्द से सुनाना है। शब्द है मजमा, मजमा से गाना सुनाना है।
3: मजमा से और कोई शब्द दे दीजिए।
2: नहीं, ये शब्द लड़कियों की टीम से मिला है आप लोगों को, लड़कों की टीम को, तो इसीलिए मजमा मिला है। मजमे से गाना सुनाइए।
3: चलिए अगली बार कॉल करते हैं।
2: ठीक, इंतजार करते रहिए शब्द का और ध्यान से सुनिए। तो भाई मजमा से गाना गाने के लिए देखते कौन कॉल करता है। और मैं तो भाई बड़ी एक्साइटेड हूँ आप लोग की, मतलब क्या कहने, देखते कौन जीतता है आज। तो ओए, मतलब दिल मेरा मतलब पहले से ही धक धक धक धक धक धक कर रहा है। तो चलिए देखते हैं मजमा से गाना कौन गाएगा। अरे यार, आप लोग ऐसे खतरनाक वर्ड दे देते हैं जैसे लगता है अंताक्षरी में खत्म ही हो गई। गुड इवनिंग शिल्पी जी, कैसी हैं? ओह, हमारी प्यारी सी शिल्पी जी, बहुत प्यारी सी आवाज़ के साथ। और पहला शब्द मजमा आया है तो मैं मजमे को कंसीडर करूँगी। चलिए देखते हैं कौन है जो आगे इस, जो कहते हैं ना कि गाने को दिल से वो करेगा, शोकेस करेगा। मुझे नहीं आता, ओ अनूप जी ने लिख दिया मुझे नहीं आता, तो बाकी सोचो भाई। ये शब्दों के वो हैं, कारखाने हैं, गानों के कारखाने। तो फिलहाल देखते हैं कौन गाएगा मजमा से गाना। हेलो
4: हेलो मैम।
2: हेलो गीता जी, जैसा कि शब्द आपने दिया है तो मैं चाहूंगी गाना आप ही सुना दें। आपकी टीम को इसके बोनस पॉइंट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप गाना सुना दीजिए।
4: नहीं मिलेंगे
2: नहीं।
4: क्योंकि
2: वर्ड आपने खुद ही दिया है तो ऑब्वियसली आपको गाना आता होगा।
4: अच्छा, वो ये तो, लेकिन मतलब वो अगर लड़के लोग नहीं गा पाए ना।
2: नहीं तो लड़के लोग नहीं गा पाए, ये बात तो सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप इसमें बता तो सकती हैं, लेकिन जैसे शब्द किसी और ने दिया होता तो जरूर आप गा के मतलब पॉइंट्स ले जा सकती हैं।
4: सब हमने दिया तो लड़कियों में भी बहुत कमी किसी को आता भी होगा।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, अगर किसी को आता है तो वो कोई और सुना सकता है आपके अलावा लड़कियों की टीम से, लेकिन आपने ही वर्ड दिया तो आप गाएंगे तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा।
4: तो मैं, मुझे लगता भी नहीं कि कोई गा पाएगा क्योंकि बीच पे शब्द है।
2: खतरनाक शब्द है फिलहाल तो लग रहा है।
4: अरे तो मैं सुना दे रही हूँ।
2: स्वागत है।
4: ये परियों की बस्ती, सितारों का मजमा, यहाँ गूंजता है मोहब्बत का नगमा, यहाँ प्यार की है दीवाने सभी, चाहत ही सब कुछ यहाँ, चाहत ही सब कुछ यहाँ, परियों की दुनिया के मेहमान हो, चलो हम तुम्हें सैर कराए, कहाँ है वो सपनों का सौदागर, चलो हम उसे ढूंढ लाए, उम्मीद सपनों की सौदागर, मुझे ऐसी जगाने चल।
2: क्या बात है, मजा आ गया सुन के, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं लड़कों की टीम आप लोग को कौन सा शब्द देती है। तो लड़कियों के लिए टीम से मतलब शब्द आ गया है हबीबा। मुझे लग रहा है आज कोई गाना ही नहीं गा पाएगा। हबीबा से गाओ भाई, मुझे हबीबी से आता है थोड़ा बहुत, लेकिन हबीबा से नहीं आता। तो वो कौन सा गाना है, वो हतूबा है ना, हतूबा तूबा ऐसा करके गाना मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये हबीबी है हबीबा है अलग अलग जब मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, एक दूसरे की टीम को हराना ही है ना, तो पहले ही बोल दो कि हरा देंगे, ऐसे ही वर्ड दे देंगे। चलिए लेकिन मज़ा आता है यार आप लोग के शब्द देख के ना, मतलब आप लोग के दिमाग की खतरनाक सोच के बारे में पता चलता है कि आप लोग एक दूसरे की ऐसी की तैसी कर देते हैं शब्द देके, मतलब किसी को जीतने नहीं देंगे, वाओ क्या बात है। एनीवे हम इंतज़ार करते रहेंगे आप लोग के ऐसे खतरनाक शब्दों का और ऐसे खतरनाक दावेदारों का। लेट्स एंजॉय। फिलहाल के लिए लड़कियों की टीम से भी किसी का कॉल नहीं आ रहा, ऐसा ना हो अनूप जी खुद ही सुना के खुद ही की टीम को पॉइंट दिलाने की कोशिश करें, पॉइंट मिले ही ना कोई बात नहीं, चलिए ये सब चलता रहेगा, इंतजार का फल मीठा होता है। कौन है भाई, कौन है क्या, मतलब मुझे लगता है कि हर किसी को मतलब मौका मिलना चाहिए, और इस मौके का जो असली मज़ा वो यही है कि हम एक दूसरे को टाइम दें बहुत सारा, तो ये टाइम देना ही है। हबीबा से गाना सुनाइए लड़कियों की टीम, प्लीज प्लीज हबीबा। खतरनाक सोच की लड़कियों गाना सोचो प्लीज प्लीज। प्लीज़ कोई गाना ही नहीं सुनाएगा भाई, क्या है ये सब सुन के मुझे बहुत मतलब दुख हो जाता है, कभी कभी दिल भर आता है, और समय भी कह रहा है मैं जाने को हूँ, बहुत लिमिटेड टाइम है।

0: अरे वाह, कॉल आ गया। हबीबा से गाना सुनाने के लिए देखते कौन है।
1: हेलो मैम।
0: हेलो गीता जी। हाँ क्या बात है, क्या बात है। हबीबा से गाना सुनाइए। हबीबा बी नहीं होना चाहिए
1: मैम, वो गाना ए हबीबा कुछ लग

0: बहुत तारीफें हो रही है अनूप जी की, क्या वर्डी है, लेकिन लड़कियां गा के चली गई। वो हतुबा वाला तो मुझे याद था, हतुबा हतुबा हतुबा, बड़ा खतरनाक सा गाना है, मैं तो गा ही नहीं पाती उसको फिलहाल। चलिए कोई बात नहीं, तुम मेरी दिल रुबा, लेट्स सी मगन। ओह इतना आसान शब्द दे दी हैं। नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं लड़के सोचेंगे कि मैम तो लड़कियों की टीम को वो कर रही है। वैसे मैंने लड़कों की बारी भी बोला था कि खतरनाक वर्ड मत दीजिए। मगन से गाना सुनाइए। बहुत सारे गाने हैं अनूप जी, बहुत सारे गाने हैं। धर्मेंद्र जी, महेंद्र जी, सब लोग दिमाग लगा लीजिए और मगन से गाना सुना दीजिए। मुझे तो याद आ गए 5-6 गाने भाई, आप लोग गा लो फिर मैं गाऊंगी। बहुत सारे लड़के एक साथ हमारे साथ हैं और चलिए देखते कौन गाना सुनाता है। मगन, मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके कोई बात नहीं, आपकी पूरी टीम बिल्कुल सॉलिड तरीके से ऐसे बहुत तेज दौड़ रही है, जैसे लग रहा व्रत के साथ साथ कुछ और तिन्नी के चावल मिला हुआ था, वो सब खा वा के एकदम एनर्जी फुल है। तो चलिए देखते हैं कौन है जो आके अपनी टीम को सपोर्ट करेगा। फिलहाल जो मुकाबला है आमने सामने का चल रहा है और इस आमने सामने के मुकाबले में मुझे लड़कियों की टीम लड़कों को टीम को टक्कर देती हुई महसूस हो रही है। चलिए देखते हैं मगन से गाना गाने के लिए कौन सा मगन लड़का आ रहा है। हेलो, तो आ गए हमारे साथ अनूप जी। क्या बात है अनूप जी, मगन से गाना सुनाइए।
1: मगन अपनी धुन में रहे मोरा सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। हम कहे तोरी सजना, ये तोरी सजनिया।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा सा।
1: नेक्स्ट वर्ड जो है वो है निर्माण।
0: निर्माण, बाकियों को भी मौका दीजिए, आप ही देंगे।
1: मैम एक्टिव ही नहीं है ना कोई।
0: नहीं, कितने सारे लड़के एक्टिव ही एक्टिव दिख रहे हैं,
1: तो वर्ड नहीं दे रहे ना कोई।
0: चलिए ठीक है, निर्माण शब्द लड़कियों के लिए और चलिए देखते हैं लड़कियों की टीम निर्माण से गाना कौन सा गाती है। सो उम्मीद करेंगे अगली बार शब्द अनूप जी की तरफ से नहीं और किसी की तरफ से भी आएगा, क्योंकि लड़कियों की टीम से सब मिलजुल के वर्ड्स दे रहे हैं, तो ऐसे ही लड़कियां लड़के भी करें। निर्माण से गाना सुनाइए। निर्माण अधीन बिल्डिंग ही मुझे दिखती है, गाना तो कोई नहीं दिख रहा है फिलहाल। चलिए देखते हैं कौन गाता है भाई, मतलब आप लोग बड़े खतरनाक खतरनाक गाने दे देते हैं। तो चलिए मुझे गाना याद आ रहा है, मैं ही गा लेती हूँ तब तक। निर्माण से गाना तो मुझे लगता है मिलने से रहा, बड़ा प्यारा सा गाना है और ये मैं अपने लिसनर्स को डेडिकेट करना चाहूंगी। देखते हैं मेरे डेडिकेट करने के पहले कोई निर्माण से गाना निर्माण कर पाता है कि नहीं, नहीं तो ये गाना निर्माणाधीन रह जाएगा। चलिए इंतजार करिए।

0: कोई भी मतलब आज नहीं सुनाने वाला है ना निर्माण पे गाना, ये गलत बात है, ये गलत बात है भाई। निर्माण से सविता जी गाना सुना दीजिए, आपकी टीम को पॉइंट मिल जाएगा। तब तक चलिए मैं दूसरा स्टैंजा गा लेती हूँ, नहीं तो मेरा स्टैंजा ही छूट जाएगा। तो लग रहा है निर्माण से गाने के लिए कोई नहीं आने वाला, मैं नेक्स्ट स्टैंजा बाद में गाऊंगी। एक कॉल आ रहा है, उस कॉल को कनेक्ट करते हैं। हेलो
1: हेलो।
0: ओ अनूप जी, निर्माण से गाना आपने दे दिया, किसी को आता ही नहीं है।
1: देशभक्ति गाना है, इतना आसान गाना है, पहले डीडी वन पे बहुत आता था ये।
0: सुना दीजिए, पॉइंट नहीं दूंगी आपको। चलिए
1: कोई बात नहीं। नव भारत का सबको मिलकर करना है निर्माण, जिसकी माटी सोना उगले वो है हिंदुस्तान। नव भारत का सबको मिलकर करना है निर्माण, जिसकी माटी सोना उगले वो है हिंदुस्तान। जी मैम।
0: क्या बात है, फिलहाल बहुत अच्छा शब्द दिया आपने। अब बारी है लड़कियों को आपके शब्द देने की। चलिए देखते हैं आपकी टीम को क्या शब्द मिलता है। तो लड़कियों, फटाक से एक वर्ड दे दो लड़कों को और बता दो कि लड़कों के पास शब्द जितने नहीं होंगे उससे ज़्यादा लड़कियों के पास हैं। मंदिर निर्माण वाला गाना है। अरे कोई सुना दिया होता टीम को पॉइंट तो मिल जाते एटलीस्ट। मतलब कम नहीं है आप लोग, कम नहीं है। क्या कह रहे। चलिए कोई बात नहीं, चलता रहेगा ये सब चलता रहेगा। वेल, मेरी तरफ से तो भाई यही शुभकामनाएँ आप लोगों को कि आप लोग शब्द एक दूसरे को बढ़िया दीजिए। ऐसे खतरनाक शब्द देंगे ना तो मैं ऐसे ही गाते हुए आप लोग का एंटरटेन करके अंताक्षरी रुमाल, फिर आसान शब्द मिल गया। चलिए रुमाल से गाइए लड़कों की टीम, रुमाल से। मुझे तो रुमाल आसान थोड़ा सा लग रहा है, मुझे बहुत सारे गाने आ गए यार रुमाल से। मतलब क्या है, लड़कियां चाहती हैं लड़के जीत जाएं? ओह ऐसा भी है क्या। चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका। हेलो
1: जी, मीना जी।
0: जी अनूप जी, रुमाल।

0: आपका आपका हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुमाल से गाना गाने के बाद अब मैं लड़कों की टीम से बोलूंगी, लड़कियों को शब्द दें बहुत अच्छा सा, और देखते हैं लड़कों की टीम से कौन सा शब्द मिलता है। किसी ने कोई शब्द दिया था, किसी लड़के ने ही शायद दिया था, कौन सा शब्द दिया था, देखते हैं किसका है शब्द। किसका है ये तुमको इंतज़ार में हूँ ना। फिलहाल आरजे बीना के साथ आप सभी लाइव हैं, सुन रहे हैं गुंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला, लेकिन शब्द कौन देने वाला है ये नहीं मुझे पता चला। क्या बात है, कौन गाएगा, मतलब मेरी आवाज़ को मत अप्रिशिएट करिए भाई, आज मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। कौन सुनाएगा, शब्द दीजिए भाई लड़कों की टीम से, जल्दी से कोई वर्ड दीजिए। इस बार अनूप जी नहीं दे पाएंगे क्योंकि अलग अलग लोगों को देना है शब्द। शब्द कौन देगा लड़कियों की टीम को, राजू सीतापुर से। जल्दी से शब्द दें, जल्दी से। इसके पहले भी किसी ने कोई शब्द दिया था, कौन लड़का दिया था शब्द, नटखट भी चलेगा। चलिए नटखट से सुना दीजिए लड़कियों की टीम को, मैं शब्द दे देती हूँ नटखट, जो कि सबलू ने दिया, सबलू जी ने दिया था। तो चलिए सुनाइए नटखट से गाना, और फिलहाल टाइम हो चुका है, लड़कियाँ अगर नटखट से गाना सुना देती हैं तो ये गेम यहीं पर टाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सुनाएगा नटखट, बहुत सारे गाने हैं। नटखट, एक खाने वाली नमकीन भी आती थी नटखट से, है ना। मुझे याद है, चलिए देखते कौन सुनाएगा गाना। हेलो
2: हेलो हेलो
1: हेलो, सविता जी स्वागत है आपका, क्या हाल है, कैसी हैं?
2: मैं ठीक हूँ, बहुत टाइम से जो फोन लगा दी पर लग ही नहीं रहा था।
1: नटखट से गाना सुना दीजिए, नटखट।
2: जी जी जी, बड़ा नटखट है रे किसने कन्हैया का।
1: हेलो सविता जी,
2: बड़ा नट है रे। हेलो,
1: आवाज आ रही है आपकी, बीच में कट रही थी, फिर से सुनाइए एक बार।
2: बड़ा नटखट है रे किसने का
1: घरे यशो। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच सविता जी, और आपकी वजह से आपकी टीम बढ़ गई है थोड़ा और आगे, और थैंक यू सो मच, फाइनली आपका कॉल लगा, काफ़ी देर से आप कॉल ट्राई कर रही थी, और आज का दिन थोड़ा सा बिजी होता है, और बहुत बढ़िया सा गाना सुनाया, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं दोनों ही टीमों को अप्रिशिएट करूँगी, और आज दोनों ही टीमों को टाई कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था और सब लोग अपना 100% नहीं दे पाए। मैं जानती हूँ सबको बहुत सारे गाने आते हैं, बहुत सारे शब्दों पे गाने आते हैं, और टाइम कम होने की वजह से देखिए डिमांडेड का टाइम भी हो चुका है, और मैं 2-3 मिनट ले भी चुकी हूँ, इसीलिए मैं दोनों ही टीमों को आज विजयी घोषित करती हूँ। सच्ची बताऊँ इतने कम टाइम में आगे क्या मन लगा के पार्टिसिपेट किया, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने यार, लेकिन अगली बार से 6 बजे एकदम, 6 बजे तो नहीं, एटलीस्ट 6:15 बजे तो आप लोग टाइट होके आ जाना, दोनों टीम के मुझे मैसेजेस दिख जाने चाहिए कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। और भाई एक आध मेंबर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैट रूम में नहीं आते हैं, लेकिन एक आध मेंबर आके अपना मतलब अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए आ सकता है, बाकी सारे लोग गाने के लिए ज्वाइन करते जाएंगे। तो उम्मीद करूंगी ऐसे ही आप लोग गुनगुनाते रहेंगे, अंताक्षरी में 4 चांद लगाते रहेंगे। सच्ची बताऊँ मुझे बड़ा मज़ा आया आप लोग को सुन के, बड़ा मज़ा आया, और खासतौर पर वो मजमा वाला शब्द और वो हबीबा वाला शब्द, ये दोनों बड़े अच्छे थे, मज़ा आ गया। तो ऐसे ही खतरनाक शब्दों को अगली बार चुन के आइएगा, और मैं ज़्यादा टाइम दूंगी वर्ड राउंड के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है, इसमें कॉम्पिटिशन एक्चुअली में दिखता है। तो हम अगली बार नेक्स्ट टाइम जो है वो लेटर राउंड थोड़ा छोटा कर देंगे और वर्ड राउंड थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, आप सुन रहे थे आरजे बीना के साथ शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला, एंड थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट जिन्होंने मेरी आवाज़ को दी, ये सब मेरी आवाज़ नहीं है, आप ही किया, आप लोगों से रिफ्लेक्शन मिला है, जैसे सूरज से रिफ्लेक्शन मिलता है तो उजाला हो जाता है, वैसे आप लोग की सुरीली आवाज़ों को सुन के थोड़ा सा मुझे भी रिफ्लेक्शन मिल गया, और मैं भी थोड़ा थोड़ा सुरीला गाने लगी हूँ। सो अभी के लिए बाय-बाय, टाटा, टेक केयर, और एक बढ़िया सा लेटेस्ट वाला गाना सुनाते हुए मैं लेती हूँ विदा, कल फिर मिलेंगे भोजपुरी अंदाज में।

पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

सो हम मिलेंगे इस छोटे से बहुत ही खूबसूरत से गाने के बाद में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ये है मेरी आज की फरमाइश।

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है दोस्तों। सो मुझे महंगा लहंगा कौन दिला रहा है चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन इसके पहले महेंद्र का कहना है राजस्थान से कि आपकी मीठी आवाज में ऐसा जादू और असर रहता है, आपकी मीठी आवाज में ऐसा जादू और असर रहता है, हर एक लफ्ज के साथ खुशियों का सफर रहता है, दिल से स्वागत है आपका आरजे सिंपल मैम, आपके आते ही रेडियो का ये सफर खुशनुमा रहता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सबलू सावंत मुंबई से, अनुष्का श्रावस्ती से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, सोनिया तिवारी गोंडा से, उषा कश्यप गोंडा से, निधि सीतापुर से, नाजिया अंसारी, गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से नमस्ते, और राजेश कुमार जी सिंचाई विभाग से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, रूपाली इंदिपाली गोंडा से, महेंद्र राजस्थान से, सविता शास्त्री जी आपका भी स्वागत है स्टेट यून, शमा लखनऊ से स्टेट यून एंड वेलकम इन योर शो। इसी के साथ में मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, उत्कर्ष कश्यप गोंडा से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो में, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से आपका भी स्वागत है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। पहली फरमाइश जानते हैं किसकी है, जग्गू दादा की, और हमारे 89.6 FM के जग्गू दादा को सुनना है गाना तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर। सो एंजॉय करते हैं सुपर डुपर डुपर हिट नगमा हीरो मूवी कानू राधा जी की और मनहार जी की आवाज में, हाउ लवली सॉन्ग से पर्सन जग्गू दादा की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, डाउनलोड करिए।

मेरा जानू है तू मेरा दिलबर। हमने एंजॉय किया है जग्गूदाता की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हीरो पिक्चर का। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। क्या आप सभी तैयार हैं? हाँ हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अगर मैं तैयार हूँ और अगर रेलगाड़ी की सीटी बोल चुकी है, हॉर्न बज चुका है, तो इसका मतलब है गाड़ी चलने वाली ही है ना दोस्तों स्टेशन से। और वैसे भी क्रॉसिंग पर रुकने की आदत नहीं है, क्योंकि क्रॉसिंग वाली गाड़ी ये अपनी नहीं है, ये अपनी एकदम रॉचिक एकदम चकाचक रेलगाड़ी है ना फरमाइशी महफिल की। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से स्वागत है आपका। और अगली फरमाइश है अनुष्का की श्रावस्ती से, उनको सुनना है गाना स्वीट हार्ट है। सो एंजॉय करते हैं केदारनाथ का, सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सिर्फ और सिर्फ हमारी स्वीट हार्ट अनुष्का की फरमाइश पर, जो कि है श्रावस्ती से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हार्ट है, हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अनुष्का जी की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले क्या, उसके पहले कुछ भी नहीं, उसके पहले यही इतना कि सबके अपने अपने स्वीट हार्ट्स होते हैं ना, कोई ना कोई ऐसा होता है जो किसी का स्वीट हार्ट होता है। आपके स्वीट हार्ट्स कौन कौन से हैं मुझे जरूर चैट बॉक्स में बताना, मुझे बहुत मजा आएगा जानकर। फिलहाल एंजॉय करते हैं अब अगली फरमाइश है उषा कश्यप की गोंडा से, उनको सुनना है गाना बता दूं क्या लाना तुम लौट के आ जाना। सो एंजॉय करते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में पत्थर के सनम पिक्चर का ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा उषा कश्यप की फरमाइश पर। Stay tuned.

लगे कि भूल जाओगे हमने एंजॉय किया है। पत्थर के सनम पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उषा कश्यप जी की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना दिल ना किसी का जाए। तो एंजॉय करते हैं लता मंगेशकर और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में ये सदाबहार नगमा सिर्फ और सिर्फ सोनिया जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सोनिया तिवारी की गोंडा से। और सोनिया तिवारी का कुछ कहना भी है दोस्तों, इनका कहना है कि दिल ना किसी का जाए, बस यूं ही प्यार बना रहे, हर धड़कन में खुशियों का एहसास सजा रहे। और इतना प्यारा गीत सुनाने के लिए दिल से शुक्रिया आरजे सिंपल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और अब चलते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है निधि की सीतापुर से। निधि को सीतापुर से सुनना है गाना मत पूछ मेरे महबूब सनम। सो एंजॉय करते हैं फिर से सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा, लेकिन इस बार निधि की फरमाइश पर।

मत पूछ मेरे महबूब सनम, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और वैसे इश्क प्यार मोहब्बत को नापना तोलना काउंट करना शायद इम्पॉसिबल है, या फिर ये जो लोग पूछते हैं ना दोस्तों की वो पहले कि हम बताओ, नहीं आज ही क्लियर बताओ। भाई काय को क्लियर बताना, आपकी अपनी जगह है दिल में, उसकी अपनी जगह है दिल में, आपकी आपसे अपनी ज़रूरतें हैं, उससे अपनी अलग ज़रूरतें हैं। क्या पता वो इंसान मुझे सिर्फ सुकून देता हो और सामने वाला इंसान मुझे शांति देता हो, है ना, समझ लीजिए ना। तो वो तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो या फिर तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो, ऐसे बहुत लोग होते हैं करने वाले। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और प्यार का कोई कंपैरिजन भी नहीं होता। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश कुमार की, सिंचाई विभाग से उनको सुनना है गाना आपके करीब हम रहते हैं, दिल का नसीब हम सहते हैं। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

बातचीत तुम्हें कहते हैं। हम एंजॉय कहे ये नगमा राजेश की फरमाइश पर जो की है सिंचाई विभाग गोंडा से। और अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से। आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है ओल्ड स्कूल वाला नगमा, हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा है रोटी कपड़ा और मकान का सुपर डुपर हिट नगमा, सिर्फ और सिर्फ आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

ये मजबूरी हमने एंजॉय किया है आश्रम मिश्रा जी की फरमाइश पे, ये बहुत खूबसूरत सा नगमा। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकर। और इनका पूछना ये है कि अच्छा ये बताओ, मजबूरी अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? अब इन्होंने किससे पूछा है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला सवाल है। फिलहाल मेरा भी आप लोगों से सवाल है कि भूख अच्छी चीज़ होती है कि बुरी चीज़ होती है, प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बताना। फिलहाल इंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की, राजस्थान से। उनको सुनना है गाना क्या तुम्हें पता है गुलशन, मेरे दिलबर आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। स्टे ट्यून है, एवरीवन एंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा नगमा महेंद्र की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

है गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं। दिल है बेताब मूवी का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमने इंजॉय किया है। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी हमारे पास में महेंद्र की राजस्थान से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है नाजिया अंसारी की। और नाजिया अंसारी को सुनना है गाना हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। और इसी के साथ में चलते हैं एंजॉय करते हैं ये वाला फरमाइशी गीत, मींस नाजिया अंसारी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: गोल्ड वाले नगमे की लता मंगेशकर जी की आवाज में हम इंजॉय करेंगे गाना। कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर चुकी हैं गोंडा से, लेकिन उसके पहले दोस्तों सबलू सावंत का मुंबई से कुछ कहना है। और सबलू सावंत का क्या कहना है गौर फरमाइएगा। इनका कहना है कि मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए हैं होश तो फिर होश में आऊं कैसे, सीने में जलन आंखों में धुआं सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। बहुत ही उम्दा। और इसी के साथ में महेंद्र का कहना है राजस्थान से, तेरे ख्याल से ही महक उठती है जिंदगी मेरी, तू वो दुआ है जो बिना मांगे ही मिल गई, धड़कनों को अब भी अब बस तेरी ही आदत है, तू मुस्कुरा दे तो समझो मेरी दुनिया खिल गई। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, मींस उत्कर्ष कश्यप की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा।

लता और लता मंगेशकर जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है बड़ी बहन का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उत्कर्ष की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना दिल देके दर्दे मोहब्बत लिया है। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो पेट पूजा करके जरूर आना एवरीवन, और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा, ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशुल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का ये सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
5: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
6: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बम्बई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जाँच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
8: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ही पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक $136 अरब का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनक बार, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी शुपरमाइशी में, आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइशी गीत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, कहे नहीं। लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी कि अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। शहर के बीच शीशे का मकान बनाया गया, शहर के बीच शीशे का मकान बनाया गया, और पत्थरों को ही दरबान बनाया गया। सारे जुबां वाले खामोश खड़े रहे, क्योंकि बोलने वालों को ही बेजुबां बनाया गया। हाथी, घोड़े, ऊंट, वजीर सोचते ही रहे कि कैसे एक प्यादे को सुल्तान बनाया गया। गरीब हमेशा से सीढ़ी ही रहा अमीरों का, उसी के कंधों को पायदान बनाया गया। सो एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में धर्मेश त्रिपाठी की, उनको सुनना है गाना जब जिद पे आ गई पार्वती। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर ट्रेंडिंग सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

मिलता है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर? ये भक्ति करनी है ना तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा अतरंगी सा और बहुत ही रियलिटी भरा हुआ नगमा सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले फरमाइश की तरफ दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से, उनको सुनना है गाना आज दिन चढ़िया। और उसके बाद में फरमाइश है मुमताज अंसारी जी की जो कि है गोंडा से और उनका गाना है मत कर इतना गुरूर। सो एंजॉय करेंगे ये दोनों नगमा और दोस्तों आज इसी वक्त लेना चाहती हूँ अलविदा। सो हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि मैं कल फिर आऊंगी, कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बे इंतहा बेतहाशा प्यार आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल फिर से, बाय बाय। ये है निशा की फरमाइश पटेल नगर से, अगली फरमाइश होगी मुमताज अंसारी जी की गोंडा से।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स, और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9286-9976-9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी हाँ, तो आज का दिन हमारे लिए बड़ी उम्मीद का दिन होता है, बड़ी चाहत का दिन होता है, और क्योंकि इस दिन बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है और बहुत सारे श्रोता सुनते हैं भाई। तो जी, कालीन शो का करते हैं शुभारंभ, और क्या बात है, स्वर कोकिला हमारे साथ उपस्थित जी हो चुकी हैं। शिल्पी जी प्रणाम करते हैं आपको, और कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी होंगी। काका जी कहते हैं शुभ रात्रि, अब बताइए आए, अभी आए अभी बैठे, अभी दामन संभाला है तुम्हारी, जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। अरे काका जी शुभ रात्रि हमको करने दीजिए, शुभ रात्रि आप मत कहिए, और देखते हैं कौन हमारे साथ भाई, देखते हैं पहले शो का कौन। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर
0: जी, नमस्कार।
1: कैसे हैं आप?
0: आपकी मुस्कुराहट बता देती है कि आपका नाम क्या है।
1: जी तो बताइए कौन बोल रहे हैं
0: आप? जी आप वही बोल रहे हैं जिस दिन हमने रक्षाबंधन मनाया था।
1: बिल्कुल सही जवाब,
0: बिल्कुल सही जवाब, और इस जवाब पर आपको देने चाहिए आपको 5,000 रुपए।
1: तो बिल्कुल मिल जाएंगे। बहरहाल मेरे हिसाब से आज आपको मोमोज खाने को मिल जाते।
0: अच्छा, मतलब मोमोज क्या होता है?
1: जी, आज एक्चुअली हमारी बिटिया ने ना मोमोज बनाया था खुश होकर, क्योंकि आज मौसम बहुत खूबसूरत था।
0: हाँ, मौसम बहुत खूबसूरत था।
1: एक घंटे का काम उसने 4 घंटे में किया, बट सीरियसली सर बहुत गजब का बनाया उसने।
0: क्या बात है, मतलब आप हमारे मुँह में पानी लाने की पूरी कोशिश और आप उसमें कामयाब भी हो चुके।
1: हाँ, बच्चे ने बहुत अच्छा बनाया, तो मौसम अच्छा था तो उसने कहा क्या बनाए। वो दोपहर से एक्चुअली प्लानिंग कर रही थी और जाके बना 6 बजे, 3 बजे से वो बनाने के लिए रेसिपी की तैयारी कर रही थी, सारी चीजें इकट्ठा कर रही थी, और शाम को 6 बजे जाके उसका मोमोज तैयार हुआ।
0: मतलब शायद इसी को कहते हैं देर से है लेकिन दुरुस्त है।
1: दुरुस्त है
0: जी। हाँ, तो भाई आज आपने बोहनी करनी है आज आपको।
1: जी जी, क्योंकि मैंने चूंकि वादा किया से कि हम अगले बुधवार को एक गीत सुनाएंगे जो कि मुझे बहुत पसंद है
0: जी,
1: और हाँ तो वो मैं आज सुनाती हूँ आपको।
0: क्या बात है, बिल्कुल
1: पसंद को बताइएगा कि गीत कैसा है।
0: अरे आपने चुना है तो आपको।
1: जी, सलमा आगा का गाया हुआ है, साथ में नीलम कपूर है, मूवी है निकमा। नहीं नहीं नहीं नहीं, ये मेल और फीमेल दोनों ना ड्यूट है।
0: अच्छा ड्यूट है, जी जी
1: बस, जी ड्यूट है।
0: अब हम समझ गए, हम समझ गए
1: जी। तो इजाजत है सर
0: जी, अरे निवेदन निवेदन है।
1: जी तो शुरू करते हैं
0: जी।
1: दिल

नसीब के तुम हमसे आ मिले, देखे हमें नसीब से अब अपने क्या मिले। अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। आँख

की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिली, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिली, हमने

0: के जख्म कोई फिर नया मिले, ऐसा ना हो के जख्म कोई फिर नया मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिल रुबा मिले। और सर आखिरी स्टेंजा इसका जो मुझे बहुत पसंद है
1: जी,
0: कल

0: तेरी का कुछ तो सिला मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिल रुबा मिले, लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले, लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले, देखे हमें नसीब से अब अपने क्या मिले, अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, दिल के ये आरज़ू थी कोई दरुबा मिले। थैंक यू सर।
1: बात है भाई, सलमा आगा के साथ शायद महेंद्र कपूर है इस गजल में।
0: जी जी, महेंद्र कपूर है। और चूंकि गीत तो सर मुझे बहुत, मतलब इसका स्टैंजा जो है बड़ा ही खास लगता है मुझे, एक एक स्टैंजा एक एक लाइन बड़ी खूबसूरत है इसकी।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
0: मैंने शायद उतने अच्छे से गाया नहीं है, कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी, लेकिन लाइन बड़ी खूबसूरत थी तो मैंने सोचा आज आपको ये सुनाते हैं।
1: ये गजल हमको भी बहुत पसंद है,
0: है ना सर? बहुत प्यारा है,
1: बहुत प्यारी है सर, बहुत।
0: और इसमें सर एक सॉन्ग और है जो शादी के दौरान होता है कि चेहरा छुपा लिया है किसी ने नकाब में,
1: क्या
0: इसमें कवाली, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है कि जिस रोज से

0: तुम्हें जुल्फों में गिरफ्तार किया है, ये वाली लाइन।
1: क्या बात है जी, हाँ जुल्फों में गिरफ्तार कर दिया है, क्या बात
0: जी।
1: बहुत प्यारा गाया आपने, और प्यारी सी बहुनी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद सर, नमस्कार
1: जी। नमस्कार जिया भाई, और वर्सेटाइल सिंगर हमारे साथ उपस्थित है, जो कुछ भी गा जाए तो अच्छा लगे जी। हाँ शिल्पी बनर्जी जी हमारे साथ है, कुछ भी गा देती हैं तो अच्छा ही लगता है। और अब देखते हैं, शुभ संध्या आपको भी, और इसके पश्चात भाई बहुत दिनों के बाद मैं देख पा रहा हूँ सविता शास्त्री जी को संस्पर्श, और धर्मेंद्र मोहन जी और नवीन कुमार जी को तो बहुत दिन के बाद देखा भाई, कहाँ गए अब थे। और चलते हैं भाई अपने अगले श्रोता के पास। हेलो,
2: नमस्कार मनु भाई, नमस्कार।
1: अरे क्या बात है,
2: अगर रोमांटिक कुमार,
1: अच्छा आज आप रोमांटिक कुमार होने वाले हैं। अच्छा कि मतलब दर्द कुमार होने वाले हैं।
2: और कैसे आप?
1: आशीर्वाद आपका,
2: चलो भगवान करे खुश हो जाए। सभी लिस्टर को मेरा नमस्कार है
1: जी। फिलहाल आप गोंडा की सरजमी पर हैं या उत्तर प्रदेश की राजधानी में है? हेलो,
2: हाँ
1: हमने कहा फिलहाल आप गोंडा में हैं या उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं?
2: बस आपके गोंडा में आ गए।
1: क्या बात है, ये मतलब गोंडा को बहुत खल रहा था। तो आज क्या सुनने वाले हैं आपसे?
2: चलो बस छोटा छोटा है, दो एक जो लता रफी के आवाज में है, एक ये गीत तो सुना रहे हम। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या कहूँ मैं अपनी निगाहों की पसंद को, हो जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। ओ, ओ, ओ, ओ, आ, रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को, हो जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। ओ, ओ, ओ, आ, माना मेरा आंचल तेरी दूर है, बाहों में उठा लूं के अर मगरूर है। माना तेरा आंचल हाथों के अभी दूर।

0: बाहों में उठा लूं, ए अर मगरूर है, मानो न मानो दीवाना बेकसूर है, रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को, हो जाने जा तू ही मेरे प्यार का जान है, ओ
1: लता जी।
0: देखी तेरी सूरत मैं इतने करीब से, घिर गई मैं तो ख्यालों में अजीब से, देखी तेरी सूरत मैं इतने करीब से, घिर गई मैं तो ख्यालों में अजीब से, मानो न मानो न पूछो ये गरीब से, रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को, हो जाने जा तो ही मेरे प्यार का जान है, ओ
2: क्या बात है भाई, आज तो दर्द कुमार जी रोमांटिक कुमार हो गए, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, और बहुत अच्छा गाया। हमारे साथ राजेश सिंह जी भी हैं, कहते हैं बहुत अच्छा गाया भाई आपने, और धर्मेंद्र जी ने पूर्णिमा जी को कहा भाई बहुत अच्छा गाया। मोहसना अंसारी जी, हाँ गुड इवनिंग, आदाब आपको, मैं अच्छा हूँ, और बताइए। और राजेश जी ने आपको भाई नमस्कार कहा है, आप नमस्कार का जवाब दे दीजिए।
1: अच्छा, नमस्कार राजेश बाबू।
2: उन्होंने लिखा है क्या बात है, सुना जी। हाँ, उन्होंने कहा भाई रफी का गुड सॉन्ग है, नाइस नाइस।
1: एक छोटा सा और है वो सुना देते हैं
2: जी।
0: इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदा, कितना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार, कितना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार, तेरे सिवा किसी को ना लाया निगाह में, लाखों हसीन आए जवानी की राह में, सदियों से कर रहा था तुम्हारा ही इंतजार, कितना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार, कितना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार, बेखुद बना दिया है तेरे सलाम ने, जन्नत भी मिले तो न दूं मैं तेरे सामने, ये प्यार वो नशा है के जिसका नहीं उतार, कितना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजद्वार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार।
1: थैंक यू सर।
2: क्या बात है, क्या बात है भाई, आज तो दो के दोनों गीत आपने लाजवाब सुना दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भाई, और 100 में से 100 नंबर दिए गए हैं श्रेष्ठ कुमार जी को इस गीत के लिए। और अब चलते हैं भाई अपने अगले श्रोता की तरफ, जो आज तो वक्ता बने हुए हैं। जी हाँ, सविता शास्त्री जी ने भी बहुत ढेर सारा कॉम्प्लीमेंट्स दिया है, भाई क्या बात है, और आपने बहुत अच्छा गाया। और इसके पश्चात भाई अब आपका दूरभाष क्रमांक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अरविंद जी लिखते हैं मनकापुर से, वाह वाह वाह क्या बात है। और वास्तव में क्या बात है, मतलब जितनी भी बात की जाए उतनी बात कम है। फिलहाल 63-93-31-64-29 ये आपका अपना ही नंबर है, और फिलहाल देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो
3: हेलो
2: हेलो,
3: अरे नमस्कार।
2: अरे दादा चौर स्पर्श,
3: खुश रहिए सर,
2: कैसे हैं आप?
3: बस जैसे आप बना दे हमें वैसे ही
2: है। अरे हम चाहते हैं कि एकदम हमारे दिल में बस जाइए।
3: अरे मैं बसा हुआ हूँ।
2: हाँ नहीं, उसको गाना आ गया ना, दिल में तुझे बसा के कर लूंगी बंदा के पूजा करूंगी।
3: क्या बात है,
2: तो मतलब
3: क्या बात है?
2: और किसी को देखने नहीं देंगे हम आपको।
3: मैं एक एक्चुअली क्या है, अभी हमारा कंकाल होगा
2: जी,
3: मतलब ऑफिशियल
2: जी।
3: तो मैंने कहा, मैं भी लगा रहा था बड़ी देर से, तो अभी हमारे पास टाइम था, हमने कहा लगा ले बात कर ले और एक आज छोटा सुनाई दे।
2: जी बिल्कुल सुना दे।
3: तो मैं आज गाना गाता हूँ छू लेने जो नाजुक हो।
2: हाय हाय, फिल्म काजल मोहम्मद रफी
3: जी। हाँ, और राजकुमार।
2: हाँ राजकुमार
3: और मीना कुमारी।
2: क्या जोड़ी।
3: तो कोशिश कर रहा हूँ ना।
2: अरे वो हम जानते हैं कि 100% है।
3: छू लेने दो नाज़ुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाज़ुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसी नाम है। छू लेने दो ना।

बेताब धड़कते सीनों का और मान भरा पैगाम ये छूले में दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जाम ये कुदरत ने जो बख्शा

0: हेलो।
1: हाँ दादा, हाँ।
0: अरे होल्ड पे आ गया था सर।
1: हाँ, वो पता नहीं हाथ लगता है मेरा कहीं लग गया।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: मैं शुरू करूँ?
1: अच्छों को पूरा जी, शुरू करें दादा।
0: हाँ एकदम एकदम।
2: अच्छों को बुरा सा मिट करना, दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा सा मिट करना, दुनिया की पुरानी आदत है। इस उम्र को मुबारक चीज समझी, इस उम्र को मुबारक चीज समझ। माना के बहुत बदनाम है, छूले में तो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम ये, छू लेने दो नाजुक होठों को।
0: धन्यवाद सर।
1: क्या बात है दादा, एकदम डिट्टो उतार दिया आपने, और वर्सेटाइल सिंगर शक्ति बनर्जी ने दिया है। क्या बात है दादा,
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत आभार और चल स्पर्श आपको
0: जो आपने मौका दिया है।
1: अरे नहीं, ये हमारी खुशनसीबी थी कि आप जैसे लोग हमारी महफिल में शरीक होते हैं।
0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है, और पंक्ति बहुत अच्छी है, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, ये पंक्ति बहुत खूबसूरत है।
0: जी हाँ,
1: आप देखिए, आपके बाद आपकी बहन जी का नंबर हमको लगता है आप ही के बाद है।
0: हमारे ख्याल से
1: जी
0: होना चाहिए,
1: हमारे भी ख्याल से होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं।
0: ओके
1: दादा, चौर स्पर्श
0: खुश रहिए सर।
1: जी हाँ भाई, तो ये अनिल बनर्जी जी हमारे साथ गोरखपुर से, क्या मतलब रफी जी की आवाज़ को क्या कॉपी करते हैं, और कुछ पंक्तियाँ तो वास्तव में ऐसी हैं जो दिल को छूती हैं। देखते हैं कौन हमारे साथ।
3: हेलो,
1: चौर स्पर्श
3: सर जी, कैसे हैं आप?
1: आशीर्वाद है आपका,
3: वो तो हमेशा बना रहेगा सर।
1: जी बस उसी की तमन्ना है, इच्छा है।
3: और कैसे हैं?
1: बस जैसा ऊपर रख लिया।
3: गाने तो बैक टू बैक बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं
1: जी। अब तो लगता है कि इस खूबसूरती में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है।
3: अरे कोशिश है सर।
1: वो तो मतलब आपकी कोशिश तो क्या बात,
3: वादे के हिसाब से हम वादा रहा सनम गाना चाहते हैं।
1: हाँ क्या बात है, क्या गीत सुना आपने, आज तो आप सविता शास्त्री जी हो गए।
3: अच्छा,
1: अरे उनके गीतों का चयन बहुत अच्छा होता है।
3: थोड़ा बहुत अंश आ ही जाता है परिवार का।
1: हाँ बिल्कुल, मतलब उनका सिलेक्शन जो लगता है, ऐ मेरे दिले नादा, जब उन्होंने पहली बार गाया तो कई सालों के बाद मैंने इस गीत को सुना, और मुझे उन्हीं के मुंह से अच्छा लगा। मतलब ये मैं
3: मुझे भी उनके मुंह से ये गाना बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ कुछ गीत होते हैं जो कुछ लोगों के मुंह से बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनके मुंह से बहुत अच्छा लगता है
3: जी।
1: तो चलिए अब अपने इस महफिल में चार चांद नहीं बल्कि 8 चांद लगाते हैं आपके कंठ से,
3: देखते हैं सर कितने खरे उतरते हैं।
1: 100% गारंटी हम पहले लिख कर देते हैं।

0: चाहे जमाना। थैंक यू सर।
1: क्या बात है, अरे वाह, हमको फिल्म याद आ गई, शायद ये खिलाड़ी फिल्म का गीत है।
0: जी जी, खिलाड़ी फिल्म का है।
1: और फीमेल वाइस को मैं जहाँ तक गेस कर रहा हूँ तो अलका याग्निक है, लेकिन मेल वाइस को गेस नहीं कर पा रहा हूँ।
0: ये फीमेल वाइस ही है सर, उदित नारायण है शायद।
1: उदित नारायण है?
0: हाँ, नहीं ये फीमेल वॉइस में ही है, अलका ही जी गाई हुई है इसको।
1: एक अलका जी गाई है और एक दोनों मिलकर भी शायद गाया है,
0: डुएट भी गाया है सर। हाँ,
1: डुएट भी गाया है ना, उसकी आवाज नहीं
0: जी जी उदित नारायण ही गाया है सर।
1: उदित नारायण जी की आवाज मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, हो सकता है हम घर में
0: हूँ, हो सकता है। हाँ, मैं भी कंफर्म नहीं, लेकिन कुमार सानू होंगे सर।
1: नहीं, कुमार
0: अब बता नहीं, देख करके बता सकते हैं सर, कंफर्म नहीं है एक्चुअली।
1: मतलब वही मैं भी बड़ी देर से सोचा था कि एक आवाज तो मुझे आप कंफर्म मिल गई आपसे कि अलका याग्निक है फीमेल।
0: हाँ,
1: ये मेल वाइज में भी है, लेकिन मुझे नहीं है उदित नारायण लग रहे हैं।
0: अभिजीत भट्टाचार्य सर, अभिजीत भट्टाचार्य
1: जी जी, वही मैं सोचा था कि इन दोनों की आवाज तो नहीं है, लेकिन क्या निभाया है आपने भाई। 90s आप 60s के दौर में जाती हैं तो गजब का गाती हैं, और आज आपने मतलब 90s के गीत उठाए और क्या गजब का गाया, मतलब एकदम लगा ही नहीं कि अलका याग्निक नहीं गा रही है। बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत, वास्तव में चार चांद नहीं मतलब 16 चांद लग गया। और इतने ही हमारे दादा लिखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुरीला गाया शिल्पी। मैं आपको प्रणाम करूंगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ शिल्पी लिखा है और सरिता जी ने आपको प्रणाम भेजा है और कहा लिखा है वाह शिल्पी दी। और नागेश्वर जी पूछ रहे हैं कि ये प्यारी सी आवाज किसकी है। जी हाँ, ये हमारी शिल्पी जी की आवाज है भाई, इतनी प्यारी आवाज और किसकी हो सकती है, आसान है गेस करना। बहुत प्यारा,
0: ठीक है, धन्यवाद सर।
1: दो लाइन आप वो गुनगुना दीजिए, तुम मिले गुल खिले और जीने को क्या चाहिए।
0: जी अच्छा गाते।

0: है क्या बात है भाई, ये है अलका याग्निक और कुमार सानू का प्यारा सा कॉम्बिनेशन जो आपसे बेहतर शायद ही कोई गा पाए।
1: अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: बहुत प्यारा, मतलब ये गीत मतलब एकदम आप गाती है तो लगता है उत्तर गया सीधे दिल में।
1: मतलब सर मुझे बहुत पसंद भी है ये गाना, बहुत पसंद है।
0: मतलब मुझे भी
1: क्रिमिनल फिल्म का गाना है ये।
0: जी हाँ, वो नागार्जुन शायद एक्टर है ना
1: जी, मनीषा कोरेला नागार्जुन।
0: मतलब आपके कंठ से ये गीत बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा।
1: ओके सर, ओके थैंक यू सर।
0: अच्छा चलो स्पर्श आपको प्रणाम। जी भाई अब देखते हैं हमारे साथ फिर कौन जुड़ चुका है। हेलो,
2: हेलो नमस्कार।
0: जी नमस्कार
2: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
0: जी राकेश जी प्रणाम।
2: जी प्रणाम आपको भी।
0: जी तो क्या सुनने वाले हैं हम आपसे? पहली बार तो शायद मुझे लगता है आपसे पहली मुलाकात है मेरी।
2: जी आप मेरी पहली बार बात हो रही है।
0: जी और कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या कुछ अपने बारे में बताएं?
2: जी मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश शिमला से।
0: हिमाचल प्रदेश से बात कर रहे हैं, और आपने अपना नाम क्या बताया?
2: राकेश।
0: राकेश जी क्या बात है भाई, तो क्या जी, सुनने जी, वाले हैं आपके मधुर कंठ से हम?
2: जी तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब शिमला का मौसम जो है अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम जो है जो होता है पर्यटक वाला जो मौसम होता है। अगर आप भी शिमला में आइए घूमने तो बहुत अच्छा लगेगा आपने आपको देख के।
0: बिल्कुल हम आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ हमारा आरजे वाला काम आप संभाल लीजिए, हम शिमला घूम आए। थोड़ा सा हमारे लिए आप कर दीजिए तो हम बिल्कुल शिमला घूमने के लिए एकदम तैयार है।
2: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी बिल्कुल, कभी मौका मिले तो आइए पधारिए हमारी गली में, और फिर फिलहाल तो हम आपके गले की ओर चलते हैं, गली में फिर कभी आएंगे।
2: जी तो मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ।
0: जी
2: अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ये तो मिल जाएगा, ढूंढिए ये तो मिल जाएगा, देगी तो मिल जाएगा, देगी तो मिल जाएगा, अच्छे पूरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, बस यही बात याद रखना, अपनी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ये तो मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा, प्यार किया है तुझसे प्यार करेंगे, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा फूल बागों में खिला कहीं ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना, ओ जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना, बस यही बात याद रखना, ओ अपनी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेगी तो मिल जाएगा, तुझे तो मिल जाएगा, ओ तुझे तो मिल जाएगा, तुझे तो मिल जाएगा। जी
0: आप बिल्कुल ढूंढेंगे और मिल जाएगा, और ढूंढने से तो भगवान मिलता है भाई, तो खुशियों के पल जरूर
2: मिलेंगे। जी जी
0: बहुत
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। जी हाँ, हमारे साथ ये हिमाचल प्रदेश थे और मतलब नाम सुशील था, और इसके पश्चात चलते हैं भाई, अब देखते हैं हमारे साथ तो फिर कोई और आते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
3: हेलो, हाँ जी सर नमस्कार।
0: ओहो, ये आवाज तो दुनिया के सबसे गहरे सागर की लगती है, यानी प्रशांत कुमार सागर जी। कहाँ थे भाई इतने दिनों, आपको नाराजगी हो हमसे?
3: सर हम नाराज हो गए, कहाँ जाएंगे, दरअसल इतनी व्यस्तता हो गई है
0: जी।
3: कि मैं क्या बताऊँ, तो अभी सर मैं जस्ट घर पहुँचा हूँ 5 मिनट पहले।
0: क्या बात है, मतलब
3: लेकिन आज हमने कहा कि आज कुछ भी हो, आज हम प्रोग्राम में शरीक जरूर होंगे।
0: बिल्कुल, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़े सुख की बात है।
3: और कैसे हैं सर आप?
0: जी आशीर्वाद आपका। हमारी बिटिया रानी कैसी है?
3: हाँ वो भी ठीक है, आज तो फिलहाल सो गई है वो।
0: हाँ नहीं नहीं भाई, सुबह उठना रहता है,
3: थोड़ा सा लेट हो गए।
0: जी कोई बात नहीं, शनिवार को हम देर आएंगे लेकिन दोस्त आ जाएंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल।
0: तो आज उदित नारायण जी ही है या कोई और है?
3: हाँ सर, आपको एक मोहम्मद रफी का गाना सुनाते हैं।
0: हाँ क्या बात है, क्या बात है।
3: मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन।

0: मेरे दुश्मन। थैंक यू सर।
1: क्या कहूँ भाई, क्या कहूँ आपको, वास्तव में बहुत दिल से गाया आपने और हिंदी फिल्म जगत के इतिहास में मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बद्दुआ किसी गीत में नहीं दी गई।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: जहाँ तक मतलब मुझे लगता है कि मैंने, हो सकता है ऐसे गीत हो जिसको हमने न सुना हो, लेकिन इतने प्यार से रफी साहब ने शायद ही किसी नायिका को बद्दुआ दी हो।
0: नहीं नहीं बिल्कुल सही, रफी जी का बहुत अच्छा गाना है।
1: हाँ।
0: और इसको आपको सही बताएं, मैंने ये गाना मैंने रफी जी की आवाज से ना सुन के सबसे पहले मैंने अर्जुन जी की आवाज से सुना था।
1: ओहो क्या बात है।
0: और उसके बाद मैंने ये जो है गाना फिर जो है रफी जी को मैंने बाद में सुना।
1: जी उस फिल्म में शायद धर्मेंद्र लीड रोल में, और मतलब इससे ज्यादा बद्दुआ किसी गीत में दी ही नहीं गई। और शिल्पी जी ने लिख दिया है भाई, बहुत दिल से गाया प्रशांत जी आपने।
0: थैंक यू सो मच।
1: मतलब एकदम एहसास करके गाया। आप अकेले हैं या कोई अगल बगल भी है आपके पास?
0: नहीं, हमारी पत्नी भी है।
1: अच्छा, तब नहीं पूछने लेकिन मतलब क्या इस गीत को याद करते हुए कोई चेहरा तो आंखों के सामने नहीं था?
0: नहीं सर, ऐसा कोई चेहरा ही नहीं।
1: मतलब जितने दिल से गाया आपने, लगा कि मतलब वास्तव में किसी को बद्दुआ दे रहे हैं कि जाओ हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, हे खुदा वो जिसे भी चाहे वो चाहे किसी और को। लेकिन ये वाला मामला यहाँ नहीं था।
0: नहीं था, ऐसा कुछ नहीं।
1: वाह क्या बात है, लेकिन बहुत प्यारा गाया आपने दिल वास्तव में। शरीक हुआ कीजिए हमारी महफिल में साहब।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो मतलब पलक बिछाए इंतजार करते रहते हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी जो है ये प्रोफेशनल जो प्रोफेशनलिज्म है ये आड़े आ जाता है, ये हम कह सकते हैं।
1: देखिए जैसे मैं भी पेशे से एक छोटा सा अध्यापक ही हूँ, लेकिन अपने जीवन की खुशी कहीं ना कहीं इंसान को अपने लिए कुछ लम्हे जीने चाहिए।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: और इंसान जब करना चाहता है तो वक्त निकाल लेता है, मुझे लगता है।
0: हाँ
1: मतलब बहुत सारे लोग व्यस्त हैं, लेकिन इच्छा भी रहती है आपकी कि हमारे गोंडा के उदित नारायण जी अभी आए नहीं।
0: नहीं सर, बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। लेकिन एक गीत आपने बहुत अच्छा गाया, दिल से गाया। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। जी हाँ भाई, तो ये फिलहाल तुम्हारे गोंडा के उदित नारायण है, लेकिन आज उन्होंने बता दिया कि नहीं, ये रफ़ी साहब के गाने भी उतने ही खूबसूरती के साथ गा सकते हैं जितनी खूबसूरती के साथ उदित नारायण जी के गाने गाए जा सकते हैं। जी हाँ, तो भाई चलते हैं, देखते हैं फिर कौन हमारे साथ। जी हाँ, लगता है कि किसी बहुत ही प्यारे श्रोता का फ़ोन आ चुका है। जी हाँ, तत्काल फ़ोन कीजिए 6393-3164-29 पर, यह दूरभाष क्रमांक कर रहा है आपकी प्रतीक्षा। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, वास्तव में मतलब क्या एहसास छुपा होगा इस गीत में। और अब देखते हैं भाई कौन है हमारे साथ।
2: हेलो।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: जी नमस्ते
2: सर, मैं अर्चना।
1: हाँ अच्छा, हमारे ब्रेकफास्ट का आखिरी हिस्सा, क्या बात है, और कैसे हैं आप अर्चना जी?
2: मैं तो ठीक हूँ सर।
1: मतलब
2: अपना बताइए,
1: काफी इंतजार कराया आपने।
2: हाँ।
1: और कैसी हैं आप?
2: तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए।
1: बस मुझे वो 25% चाहिए आपसे, वो होता ना रक्षाबंधन में जो है वो जितना मिलता है उसका 25% टीचर्स को दान करना पड़ता है, नहीं तो जो है वो नरक भोगती हैं लड़कियाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप नरक न भोगें। और जो
2: लेकिन मैंने किसी को दान नहीं किया सर।
1: हाँ तो मतलब अब हमसे बड़ा मतलब पात्र आपको नहीं मिलेगा। तो आज क्या सुनने वाले हैं आपसे नजरिया?
2: मैं सुनाऊंगी सुखविंदर सिंह का गाना। लाइव ही ना गई।
1: क्या बात है
2: सर, स्टार्ट करें।
1: निसंदेह।
2: हाँ।

तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, जिवे टूटे अंबर तो तारा। तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, जिवे टूटे।

लाई भी न गई तेली भाई भी न गई मैनू मारदा जहान मैनू सारा तेरी मेरी ओ टूट गई सोनी है जिवे टूटे।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर।
0: अरे मतलब खत्म हो गया
1: जी।
0: अरे दूसरी ही दुनिया में पहुंचा दिया आपने। क्या गीत चुना और क्या निभाया भाई अर्चना जी। वास्तव में
1: थैंक यू सो मच सर।
0: मतलब एक पंजाबी शब्द को गाने के लिए जो उसका एसेंट होता है, जो उच्चारण होता है, वो आसान नहीं होता। और आपके लिए तो सुजीत जी लिखते हैं सुपर स्टार, अनिल शास्त्री लिखते हैं भाई बहुत सुंदर, सविता जी ने आपको बहुत सारे स्टार दे दिए, जो खुद अपने आप में बहुत बड़ी गायिका है। शिल्पी जी ने उन्होंने 100 में से 100 नंबर देने के बाद भी आपको बहुत ढेर सारा प्यार दिया। और धर्मेंद्र मोहन जी लिखते हैं बहुत गजब गाया आपने।
1: तो
0: क्या
1: so much,
0: क्या गाया है, क्या भाई मजा आ गया। मतलब क्या बात।
1: थैंक यू सर। शुभरात्रि सर।
0: जी जी जी प्रणाम शुभरात्रि। ये भाई तो ये अर्चना जी। और जी और देखते हैं भाई अब कौन है हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं। हेलो
2: हेलो।
0: अरे चरण स्पर्श। जी चरण
2: स्पर्श। अरे सर मेरी आवाज आ रही है।
0: अरे आपकी आवाज आ नहीं रही है सर, आप गूंज रही है।
2: मेरे पास आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी
0: जी। नहीं
2: तो मैं अभी, अरे टाइम वाइम तो हो गया, अभी तो मैं घर में घुसा हूँ, उसके से 2 मिनट हुआ है
0: बस। अभी 5 मिनट बाकी है मेरे पास, 10 मिनट हुआ है।
2: नहीं अच्छा अच्छा अभी है टाइम है।
0: अरे बहुत टाइम है मतलब।
2: चलिए चलिए जल्दी से करना, हम जो है एक लाइन गा देते हैं।
0: पूरा गाना सुनाइए, पूरा गीत सुनाइए।
2: पूरा तो याद भी नहीं है, चल मैं थोड़ा अभी आए हैं बैठते पुरा से तो एक दो लाइन लिख लेते हैं
0: जी।
2: चलिए एक लाइन दो लाइन जो भी गा पाते हैं, ठीक है जी। चलिए आज लता जी की दो चार लाइन,
0: मतलब गोंडा के लता जी हो चुके हैं।
2: नहीं किसो, अरे यार ये तो आपका बड़प्पन है वैसे, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप किसी की भी आवाज का कोई भी गाना कहेंगे मैं गा दूंगा। आप तो हमें फेसबुक पे बराबर फॉलो करते हैं।
0: जी जी बिल्कुल, मतलब आप करने के योग्य है तो मैं करता हूँ।
2: चलिए
0: जी।
2: मेरा

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है, और आज मैंने देखा है भाई फेसबुक पर आपने मेरे महबूब कयामत होगी का एक स्टैंजा गाया है, तो मैं चाहता
0: हूँ। हाँ, मैं अरे आप लोग उससे जो है, अब मैं आपको बहुत जल्दी कहीं और मिलूंगा, बताया है
1: जी जी।
0: और हमारी रिकॉर्डिंग हो गई है सेकंड वाली
1: जी।
0: आप देखिए आगे क्या, आप लोग आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी कुछ कुछ खबरी आएगी
1: जी। हाँ, श्रीमती बनर्जी जी ने आपको प्रणाम भेजा है और सविता जी भी आपको प्रणाम कह रहे
0: हैं। श्रीमती तो हमारी बहन है भाई, छोटी बहन है वो।
1: हाँ,
0: सुन ही नहीं पाए, एक्चुअल में बहुत देर हो गई मनु जी
1: जी।
0: हाँ, चलिए, एक हम आजकल जन्माष्टमी कल है या परसों है
1: जी? जन्माष्टमी परसों है।
0: देखे गा पाते हैं, आज मैंने इसको रिकॉर्ड उसे कर लिया था
1: जी,
0: लेकिन प्लेन में गा पाते हैं कि नहीं, अगर गड़बड़ाएगा तो उसके लिए माफी
1: जी।
0: चलिए, दो ही लाइन का है, तीन लाइन का
1: जी।
0: बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है ढूंढे री एक बार सब भूल गए, इसकी लाइनें नहीं याद है। चलिए नेक्स्ट टाइम इसको सुना देंगे।
1: नहीं तो वो हम मेरे महबूब सुनना चाहते थे आपसे भाई।
0: तो मेरे महबूब असल में याद तो रहता नहीं, हम स्क्रीन पे देखा करते हैं, मोबाइल तो उसी पे गाते हैं।
1: अच्छा।
0: और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो खैर वैसे गाते हैं ना, वहाँ को देखते हैं। चलिए मेरे महबूब की दो लाइन में सुना देता हूँ।

ये सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब, तेरी गली में आता सनम नज्म वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना चाहता सनम।

0: रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब।
1: यूं ही मैं आपको गोंडा का किशोर कुमार नहीं कहता, देखिए।
0: अरे नहीं सब लोग अच्छा गाते हैं। अभी देखिए छोटा सा झलक, इससे पहले कोई लड़की गाई थी
1: जी।
0: और वो जो है पंजाबी टच में था
1: जी जी,
0: मैं जरा सा ही सुन पाया था लेकिन बहुत अच्छा लगा था
1: जी।
0: और जो है क्योंकि अभी मैंने आईडी अपनी वो सेपरेट नहीं की है तो मैं खाली सुन पाया था, लेकिन बहुत अच्छा गाया था। और उनको मैं बधाई देता हूँ कि आप ऐसे गाएं, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने गाया था,
1: एक
0: ही लाइन सुन पाए थे। चलिए बॉस
1: जी, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्षण स्पर्श,
0: खुश रहिए, मस्त रहिए, और सभी को हमारा शुभ रात्रि
1: और आशीर्वाद। जी भाई, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि वापसी अनुमति लेने का वक्त आ चुका है जी। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम बहारे गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी हाँ, फिलहाल लेकिन देखते हैं कोई है हमारे साथ। हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो नमस्कार सर।
1: जी जी, चरण
2: स्पर्श,
1: जी मैं आपकी आवाज़ को पहचान गया।
2: जी, आज तो आपके कार्यक्रम में मजा आ गया, जितने सारे पुराने नगीने थे सब आए हैं आज।
1: हाँ देखिए, बस एक की कमी थी वो भी पूरी हो गई।
2: तो आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा
1: जी।
2: तो ये बताइए आपके कार्यक्रम में समय होगा तब
1: जी,
2: तो
1: जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपके लिए इसमें बढ़ाता हूँ, आप बिल्कुल सुनना शुरू कर दीजिए।
2: तो आज मैं आंधी फिल्म का तुम आ गए हो, नूर आ गया,
1: नूर आ गया,
2: तुम आ
1: गया
2: जी, जी जी। तो शुरू करें
1: जी जी।

0: एकदम लगता है कान में मिश्री सी घुल गई।
1: धन्यवाद। वैसे आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाया श्रीवास्तव जी ने भी, बहुत अच्छा गाया है।
0: आप सभी और हमारे की शान है
1: जी। आज मैं अर्चना जी से सोच रही थी नजरिया वाला फिर से सुने, लेकिन उनके मूवी पे मुझे बहुत अच्छा लगता है नजरिया वाला।
0: लेकिन इस बार शनिवार को जरूर सुनाएंगे आपसे। वो विद्यार्थी है मेरी, तो मेरी बात नहीं टालेंगे।
1: जी
0: जी
1: जरूर सुनवाएगा।
0: धन्यवाद जी जी। अच्छा क्षण
1: स्पर्श
0: जी। हाँ मित्रों, अब 10:38 हो चुके हैं और अब आपसे अनुमति लेते हैं। शुभरात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, रिश्तों की मिठास। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को आदर्श मानकर जाने अनजाने उसी को मानो घोल कर पी जाते हैं। शादी करके शुभा जब अपने पति के घर आई तो उसके पति के प्रथम शब्द यही थे, शुभा मेरी एक मामी है, वो बहुत अच्छी हैं। हमारे घर में सब उनकी तारीफ करते हैं। मैं चाहता हूँ भविष्य में तुम भी उनकी जगह लो। सब कहें कि बहू हो तो शुभा जैसी। मैं चाहता हूँ जैसे वो सबको पसंद है ना, वैसे ही तुम भी सबकी पसंद बन जाओ। पति ने अपनी धुन में बोलते बोलते एक आदर्श उसके सामने प्रस्तुत कर दिया था। वास्तव में शुभा को भी पति की मामी बहुत पसंद आई थी, मृदुभाषिणी और दीर्घगंभीर। वो बहुत प्यार से शुभा को खाना खिलाती रहती थी, उसका ख्याल रखती रहती थी, नई वधू को क्या क्या चाहिए सब उनके ध्यान में था। सच है अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही लगते हैं, उन्होंने सबका मन मोह रखा था। वक्त बीतता गया और शुभा दो बच्चों की माँ बन गई। मामी से मुलाकात होती रहती थी, कभी शादी ब्याह पे तो कभी किसी और अवसर पर। शुभा की सास अक्सर कहती, देखा मेरी भाभी को, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। शुभा अक्सर सोचती, 2-3 साल के अंतराल के बाद जब कोई आदमी किसी सगे संबंधी से मिलता है तब भला उसे ऊंचे स्वर में बात करने की जरूरत भी क्या होगी। कभी कभी वो इस प्रशंसा पर जरा सा चिढ़ भी जाती थी। एक शाम को बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसने जरा डांट दिया तो सास ने कहा, कभी अपनी मामी को ऊंचे स्वर में बात करते सुना है? अरे बच्चों को पढ़ाऊंगी तो क्या चुप रहकर पढ़ाऊंगी? क्या हमेशा आप लोग मामी मामी की रट लगाए रहते हैं? अपने घर में भी वो क्या ऊंचे आवाज में बात नहीं करती होंगी? बरसों की कड़वाहट सहसा निकली तो बस निकल ही गई। अपने घर में भी मुझे कोई आजादी नहीं है, आप लोग क्या जाने अपने घर में वो क्या क्या करती होंगी। दूसरी जगह जाकर तो हर इंसान अनुशासित ही रहता है। शुभा, पति ने बुरी तरह डांट दिया था। ये पहली बार था जब उसकी मामी के विषय में शुभा ने कुछ अनकहा कह दिया था।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है रिश्तों की मिठास। अब तक आपने सुना, शुभा जब से शादी करके आई थी उसे बस एक ही बात सुनने को मिलती, मेरी मामी देखो कितनी अच्छी हैं, कितना मीठा और धीमा बोलती हैं, उनके जैसी बनो। पर एक दिन जब वो बच्चों को पढ़ाने में डांट रही थी, तब भी सास ने उन्हीं का एग्जाम्पल देके टोक दिया तो उसे बुरा सा लगा और उसने भी पलट के दो बातें बोल दी। अब आगे, कुछ दिन सास का भी मुंह चढ़ा रहा, उनके मायके के सदस्य का अपमान उनसे सहा नहीं गया। ले देकर वही तो थी जिनसे सासू माँ की पटती थी। धीरे धीरे समय बीता और मामा जी के दोनों बच्चों की शादियां हो गईं। शुभा उनके शहर नहीं जा पाई क्योंकि उसे घर पर ही रहना था। सासू माँ ने महंगे उपहार देकर अपना दायित्व निभाया था। ससुर जी की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी शुभा के कंधों पर आ गई थी। सीमित आय में हर किसी से निभाना बहुत मुश्किल था, फिर भी जोड़ जोड़ कर शुभा सब निभाने में जुटी रहती। पति एक बार श्रीनगर गए तो उसके लिए महंगी शॉल ले आए। इस पर शुभा बोली, इतनी महंगी शॉल की क्या जरूरत थी, अम्मा के लिए क्यों नहीं लाए? अरे भाई, इस पर किसी का नाम लिखा है क्या? दोनों मिलजुल कर इस्तेमाल कर लिया करना। शुभा ने शॉल सास को थमा दी। कुछ दिनों बाद कहीं जाना पड़ा तो शुभा ने शॉल मांगी तो पता चला कि अम्मा ने मामी को पार्सल करवा दी है। ये सुनकर शुभा अवाक रह गई, इतनी महंगी शॉल आपने? अरे मेरे बेटे की कमाई थी, तुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? सासू माँ बोली, अम्मा ऐसी बात नहीं है, इतनी महंगी शॉल आपने बेवजह ही भेज दी, कितने चाव से लाए थे ये। शुभा बोली, बस बस मुझे हिसाब किताब मत समझा, अरे मैंने अपने बेटे पर हजारों खर्च किए हैं, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं जो अपने किसी रिश्तेदार को कोई भेंट दे सकूं? सास का भी गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अम्मा ने भू की नाराजगी जब बेटे के सामने प्रकट की तो वो भी हैरान रह गया और बोला, अम्मा मैं पेट काट काट कर इतनी महंगी शॉल लाया था पर तुमने बिना वजह उठाकर मामी को दे दी, कम से कम हमसे पूछ तो लेती। इस पर अम्मा ने इतना हो हल्ला मचाया कि घर की दीवारें तक हिल गईं। शुभा और उसके पति मन महसूस कर रह गए, पता नहीं अम्मा को क्या हो गया है, हमेशा ऐसी जलीकट्टी सुनाती रहती हैं। इतनी महंगाई में अपना खर्च चलाना मुश्किल है, उस पर घर लुटाने का तुक मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता। शॉल का काटा शुभा के पति के मन में गहरा उतर गया था।
1: ना ना ना ना ना ना ना ना ना

मर सैया रे सैया जी मर खूब कमावे सैया जी मर सैया रे। अरे कमा कमा के मर गए सैया, पहले तगड़े तगड़े थे अब दुबले पतले हो गए सैया। अरे कमा कमा के मर गए सैया, मोटे सैया पतले सैया।

0: खाया जात है।
1: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है रिश्तों की मिठास। अब तक आपने सुना, शुभा जब से शादी करके आई बस मामी की ही तारीफें सुनती रही और ये सीख कि उसे भी मामी जैसा ही बनना है। धीरे धीरे उसे थोड़ी सी चिढ़ भी होने लगी। उसे लगता कि अपने घर में वो भी जरूरत पड़ने पर गुस्सा करती होंगी, तेज बोलती होंगी, लेकिन यहाँ तो कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था। ऊपर से माँ का मामी को लेकर मोह इतना कि अपने घर का बजट तक नहीं देखती। शुभा और उसका पति मन महसूस कर रह जाते। अब आगे कुछ समय बीता और एक शाम मामा की मृत्यु का समाचार मिला। रोती पीटती अम्मा को साथ लेकर शुभा और उसके पति ने गाड़ी पकड़ी। बच्चों को ननिहाल छोड़ना पड़ा था। क्रियाकर्म के बाद रिश्तेदार विदा होने लगे। मामी चुप थीं, शांत और गंभीर, सदा की भांति रो भी रही थीं तो चुपचाप। शुभा को पति के शब्द याद आने लगे, हमारी मामी जैसी बनकर दिखाना, वो बहुत अच्छी हैं। शुभा के पति और मामा का बेटा अजय अस्थियां विसर्जन करके लौटे तो अम्मा फिर बिलख बिलख कर रोने लगी, कहां छोड़ आए रे मेरे भाई को। शुभा खामोशी से सब कुछ देख सुन रही थी। मामी का आदर्श परिवार पिछले 20 वर्षों से कांटे की शक्ल में उसके हलक में अटका था। उनके विषय में जानने की मन में गहरी जिज्ञासा थी। मामी की बहू मेहमान नवाजी में व्यस्त थी और बेटी उसका हाथ बटाती नजर आ रही थी। एक नौकर भी उनकी मदद कर रहा था। बहू का साल भर का बच्चा बार बार रसोई में चला जाता, जिसके कारण उसे असुविधा हो रही थी। शुभा बच्चा लेना चाहती थी मगर अपरिचित चेहरों में घिरा बच्चा चीख चीख कर रोने लगता। बहू, तुम कुछ देर के लिए बच्चे को ले लो, नाश्ता मैं बना देती हूँ। शुभा के अनुरोध पर बीना बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई। जब शुभा रसोई में जाने लगी तो बीना ने रोक लिया, आप बैठिए, छोटू है ना रसोई में। मामी की बहू अत्यंत प्यारी सी गुड़िया जैसी थी,

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है रिश्तों की मिठास। अब तक आपने सुना जिंदगी भर जिस मामी की तारीफ शुभा ने सुनी और ये लेक्चर कि उनके जैसी बनो। उनके घर जाने का अवसर उसे पहली बार मिला। मन में बहुत जिज्ञासा थी ये देखने की कि आखिर उनके घर में वो सब किस तरीके से रहते हैं। अब आगे मामी की बहू बैठकर बच्चे को फुसला रही थी कि तभी कहीं से मामी का बेटा अजय चला आया और गुस्से में बोला, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो मुझसे मिले बिना ही चले गए। उन्हें इतनी भी तहजीब नहीं है क्या? आप हरिद्वार से 2 दिन बाद लौटे हैं, वो भला आपसे मिलने का इंतजार कैसे कर सकते थे? बीना ने धीमे से कहा, उन्हें मुझसे मिलकर जाना चाहिए था, अजय ने उसी तेज आवाज में बोला। वो 2 दिन और यहां कैसे रुकते? आप तो जानते हैं ना, वो बेटी के घर का नहीं खाते। बात को खींचने की क्या जरूरत है? कोई शादी वाला घर तो था नहीं जो वो आपका इंतजार करते। मीना ने समझाने की कोशिश की, बकवास बंद करो, अपने पिता की ज्यादा वकालत मत करो। अजय दिल मिला गया। तो आप उन्हें लेकर इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? क्या आपको बात करने की तमीज नहीं है? क्या मेरे पापा आपके कुछ नहीं लगते? बीना रुआसी सी हो रही थी। चुप, अजय ने बहुत तेज कहा। तो बीना ने धीमे से बोला, आप भी चुप रहिए और जाइए यहां से। शुभा अवाक रह गई। उसके सामने ही पति पत्नी भिड़ गए थे। ज्यादा दोषी उसे अजय ही नजर आ रहा था। खैर, अपमानित होकर वो बाहर चला गया और बहू रोने लगी। जब देखो मेरे मम्मी पापा को अपमानित करते रहते हैं, मेरे भाई की शादी में भी यही सब करते रहे, वहां से रूट कर ही चले आए। एक ही भाई है मेरा, मुझे वहां भी खुशी की सांस नहीं लेने दी। सबके सामने ही बोलना शुरू कर देते हैं, इन्हें कोई मना भी नहीं करता, कोई समझाता ही नहीं। मीना बड़बड़ाए जा रही थी। शुभा क्या कहती? फिर जरा सा मौका मिलते ही शुभा ने मामी की समझदार बेटी से कहा, जया जरा अपने भाई को समझाओ, क्यों बिना वजह सबके सामने पत्नी का और उसके माता पिता का अपमान कर रहा है? तुम उसकी बड़ी बहन हो ना, डांट कर भी समझा सकती हो। कोई भी लड़की अपने मम्मी पापा का अपमान नहीं सह सकती। उसके मम्मी पापा को भी तो अपने दामाद से मिलकर जाना चाहिए था ना। बीना को भी समझ से काम लेना चाहिए। क्या उसे पति का ख्याल नहीं रखना चाहिए? वो भी तो हमेशा अजय को जलीकटी सुनाती रहती है। बहन ने भी भाई का ही पक्ष लिया। शुभा चुप रह गई और देखती रही कि बीना रोते रोते हर काम कर रही है। किसी ने उसके पक्ष में 2 शब्द भी नहीं कहे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है रिश्तों की मिठास। अब तक आपने सुना, शुभा ने हमेशा मामी को सबके मन में एक आदर्श के रूप में देखा। वो धीमे बोलती हैं, प्यार से बोलती हैं, कभी गुस्सा नहीं करती, सबसे अच्छा व्यवहार करती हैं। तुम भी उनके जैसी बनो। धीरे धीरे शुभा के मन में ये आने लगा कि दूसरे के घर आकर कभी कभी मिलने पर तो सभी अच्छे से रहते हैं, पर अपने घर में तो कभी ना कभी सबको अपने व्यवहार को सख्त करना ही पड़ता है। पर उसकी बात मानने को कोई तैयार नहीं था। और फिर एक बार उसे उनके घर जाने का मौका मिला और वहां जाकर उसने देखा कि उनका बेटा बहुत ही गलत लहजे में अपनी पत्नी से बात करता है और उनकी बेटी भी भाई का ही साथ दे रही थी। अब आगे खाने के समय सारा परिवार इकट्ठा हुआ तो अजय फिर भड़क उठा। अपने पिता को फोन करके बता देना कि मैं उन लोगों से नाराज हूं, आइंदा कभी उनकी सूरत नहीं देखूंगा। तभी शुभा के पति ने उसे बुरी तरह डपट दिया, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? पत्नी से कैसा सुलूक करना चाहिए ये क्या तुझे किसी ने नहीं सिखाया? मामी, क्या आपने भी नहीं? लेकिन मामी सदा की तरह चुप थी। शुभा के पति बोलते रहे, हर इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। पत्नी का हर पल अपमान करके, वो भी 10 लोगों के बीच में, भला तुम अपनी मर्दानगी का कौन सा प्रमाण देना चाहते हो? आज तुम उसका अपमान कर रहे हो, कल वो भी करेगी, फिर कहां चेहरा छुपाओगे? अरे, इतनी संस्कारी माँ का बेटा ऐसा बदतमीज। वहां से घर लौटने के बाद भी शुभा मामी के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में ही सोचती रही कि अजय की गलती पर वो खामोश क्यों बैठी रही। गलत को गलत ना कहना कहां तक उचित है? एक दिन शुभा ने गंभीर स्वर में पति से कहा, मैं आपकी मामी जैसी नहीं बनना चाहती। जो औरत पुत्र मोह में फंसी, उसे सही रास्ता न दिखा सके, वो भला कैसी मृदुभाषिणी? क्या बहू के पक्ष में वो कुछ नहीं कह सकती थी? ऐसी भी क्या खामोशी जो गूंगेपन की सीमा तक पहुंच जाए? ये सुनकर भी शुभा के पति और सास दोनों ही आज खामोश रहे। उन्हें शायद इस समय कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। कुल मिलाकर सबको ये बात समझ में आ गई थी कि हमें मिठास रिश्तों में रखनी है, जुबान पे नहीं। कभी कभी जीवन की परिस्थितियां ऐसी होती हैं या हमारे सामने कोई व्यक्ति ऐसी गलत राह पर चलने लगता है कि उसे

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो, लेकिन अगर मेड इन इंडिया की बात हो तो वो अपने आप में एक अपनी पहचान बनाते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है कि हमारे भारत में ही जन्मी और पढ़ी हुई और उसके बाद में वहीं पर रमी हुई। आपने शायद सुना होगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत की ही बहुत सारी ऐसी पहचान को अपने मुकाम पर पहुंचाना। मेड इन इंडिया यानी कि मुझे तो कुछ याद आ रहा है भाई मेड इन इंडिया से। शायद आपने ये वर्ड अपने आप ने कई बार सुना होगा, कई बार गानों के रूप में सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ऐसे गुनगुनाता हुआ सुना होगा। यस ऑफ कोर्स, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेड इन इंडिया हमारी अलीशा चेन्नई का, क्योंकि अलीशा चेन्नई का ये गाना मेड इन इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद, हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं अलीशा चेन्नई। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में अलीशा चेन्नई के बारे में। आपने खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। अलीशा चेन्नई का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी अलीशा चेन्नई। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए। धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप, यानी हमारे इंडिया हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं अलीशा चेन्नई। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक्स को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे अलीशा चेन्नई के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

एलिशा चनाय उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया 1995 था, जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था अलीशा चेन्नई ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ अलीशा चेन्नई की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो अलीशा चेन्नई भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर अलीशा चेन्नई को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी को सुनाती है। वे बॉलीवुड में तो करती, लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपने गीतों में आवाज दी। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, जैसे बंटी और बबली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कजरारे गाना सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन अलीशा ने अपनी आवाज को एक अलग तरीके से उसमें पॉप म्यूजिक को मिक्सचर कर दे करके इसकी आवाज को नए गीतों में तराशा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को, जो कि अलीशा का एक दूसरी एल्बम से है।

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजय पथ, तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो सिर्फ अलीशा चना ही थी। रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में संगीतकार भप्पी लहरी के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए।

गंभीरता रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका जो कि करम मूवी 2005 में सुपरहिट से भी सुपरहिट हुई थी। अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद में उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने उनकी

फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चिनायत। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चिनायत था जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही यानी कि मदन चिनाय से मिली। मदन चिनाय ने भी कई बार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद और कहते हैं ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चिनाय का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि विजयपथ की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजयपथ मूवी का रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2005 में कजरारे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका को के रूप में उन्हें दिया गया, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप की उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय पॉप को मुख्य धारा में लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ में कजरारे जो कि सिंपल से गाने को भी उन्होंने अपनी शैली में गा करके आज भी सभी को मुग्ध करने वाली ये गाना हम सभी के जहन में है, इसीलिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार की हकदार तो वो बनती ही हैं। अलीशा का संगीत भारतीय और पारसी पॉप धुनों का एक मिक्सचर भी है। उनके गीतों में मॉडर्न बीट्स, डिस्को रिदम और कैची मेलोडी होती है जो हम सभी को एक तरह से मनमुग्ध कर देती है। उनकी आवाज नाजुक, स्टाइलिश और यूथफुल मानी जाती है। यूथफुल इसीलिए क्योंकि आज के नौजवान भी या पहले में भी सभी लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। अलीशा जब ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी तब भी उनके शोज उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखते थे। कभी कभी एक्टिवेट शो में भी वो दिखाई देती थी। वे सोशल मीडिया पर मौजूद तो हैं, इंस्टाग्राम पर अपने पुराने और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तैयारी भी करती हैं और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने बात भी करी। लेकिन कहा जाता है कि हर एक पर्सनालिटी के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर कंट्रोवर्सीज तो होती है। वो कहते हैं ना, जिनके पीछे उपलब्धियां होती हैं, जिनके नाम होते हैं, उनके साथ में कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी होती हैं। सब बताएंगे लेकिन एक प्यारे से खूबसूरत सॉन्ग के बाद।

कहते हैं ना कि जब कोई उपलब्धि हो जाती है तो उसको छूने के लिए कई बार ऐसे होता है कि हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन पीछे पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा साया और साथ नहीं छोड़ती हैं। बस ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज भी अलीशा चनाय के साथ थी, लेकिन कहते हैं कि जो सरल और जिनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है वे भी अपनी बात से लोगों को मनवाने के लिए अपनी बात को मनवाई लेते हैं। वैसे ही लाख कंट्रोवर्सीज क्यों न हो, लेकिन अलीशा ने अपनी प्यारी सी आवाज को लेकर के कई ऐसे मामलों को, कई ऐसे मुद्दों को पीछे छोड़ा और साथ ही साथ ऐसे कई संगीतकारों के साथ भी बैठ कर के जिनके साथ उनका कभी विवाद भी हुआ होगा पर उनके पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलना। साथ ही साथ जब उनके साथ में बैठ कर के वो रिकॉर्डिंग करती थी, उनके जाने के बाद भी जिनसे उनका विवाद हुआ होता था वे भी उनकी तारीफ किया करते थे, कारण उनका सरल और प्यारा सा नेचर, उनकी प्यारी सी आवाज। तो ये होता है जो कि उपलब्धियों को छूने के बाद भी किसी के अंदर कोई घमंड बिल्कुल ना आए। और साथ ही साथ अब मैं आप सुनाऊंगी एक प्यारा सा गाना जो कि डॉन मूवी का है 2006 में, आज की रात, जो कि अलीशा चनाय की आवाज में। आइए सुनते हैं।

तो आज के सफर में अलीशा चनाई के इस प्यारे से बहुत से संगीत के सफर को हमने आपके साथ में शेयर किया, जिसमें म्यूजिकल स्टाइल के साथ में कंटेंट स्टाइल, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अवार्ड्स, रिकॉर्डिंग्स, हर एक के बारे में हमने आपको बताया। कहते हैं कि प्लेबैक सिंगर का जो करियर होता है वो सिर्फ यूं ही कह देना आसान नहीं होता है। कई ऐसी चीजों के साथ में उन्हें सफर करना पड़ता है जो कि उनकी समझ से कभी कभी परे हो जाती हैं। लेकिन उनका जो भी करियर रहा, राइज इन हिंदी टॉप में यानी कि राइज इन इंडी पॉप से बनने का सफर उनके लिए बहुत ही प्यारा रहा। मैं मिलूंगी अब एक नए सफर में, यानी कि फिर से एक नए सिंगर्स के साथ में। तब तक के लिए आपकी अपनी आज ख्वाहिश को दें इजाजत। शुभ रात्रि।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696746006। कपड़ा फैक्ट्री